ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए। अल्लाह

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

बिग गुड मॉर्निंग टू यू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मेरा नाम है हैबी और मैं आपके साथ रहूंगा 11 बजे तक. आई होप इस संडे के ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत आप इंजॉय कर रहे हैं. अगर आप अभी अभी उठे हैं देन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. कुछ ब्यूटीफुल से गाने मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून विथ मी. आई विल बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: कफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
3: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
2: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
3: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network.

व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज आल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: The classic hit, Flashback. Flashback, as we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

Welcome back after this beautiful and classic flashback only on Sonar Radio 103.2 FM. और मुझे लगता है कि जरूर कुछ पुरानी यादें ताजा हुई होंगी इस गाने के साथ साथ. Well, right now मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार. After the news, the been beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. तब तक enjoy कीजिएगा इन ब्यूटीफुल गानों को और एंजॉय कीजिएगा इस ब्यूटीफुल स्टार्ट संडे मॉर्निंग की. आई सी यू ऑन द अदर साइड. वंस अगेन वेलकम बैक इन द सेकंड आवर ऑफ दिस शो एंड वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर. सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. दिस इज एबी दिस साइड और आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूंगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now specially dedicated to you.

Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abby This Side और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now specially dedicated to you.

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: जुतियां भी कसी गई पर सस्ता सोना नहीं मिलिया। ओहो, ते तुसा चाचे कोल जाओ ना। चाचा केड़ा चाचा? चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले। जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी, नक्के नतीला है सिर्फ दो पौंडना। कान सलाने ना ही कपाउंड, छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने। एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता। चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274 4883।

वेलकम बैक आफ्टर अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग विलियम सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सनराइज रेडियो आप सुन सकते हैं मैनचेस्टर में भी डैब के द्वारा। सो अगर आप मैनचेस्टर में हैं तो आप डैब रेडियो ऑन कर सकते हैं और सुन सकते हैं। और हमारे ऐप के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि ऐप स्टोर नहीं तो गूगल प्ले पे जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप एंड देन दुनिया के भी किसी भी कोने में आप हमें सुन सकते हैं। सो गो अहेड डाउनलोड द ऐप एंड ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

Welcome back after the classic flashback, Williams and Rise Radio 103.2 FM. What a beautiful classic song here. Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तब भी beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. Stay tuned till 11 o'clock.

welcome back after yet another beautiful hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abhi This Side. 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और once again a big good morning to you. और आशा करता हूँ कि इस दिन की आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से प्यारी तरह से जा रही है. इस आवर में भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई बी राइट बैक. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड

व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज आल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

0: गलियां गलियां घूमी ते पैरें दी जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
3: ਕਹਿਣ ਲੋ ਆਰਾਸ਼ ਕੋ ਚੇਂਦਾ ਜੀ ਪੰਡਤ ਕਾਲੀਦਾਸ ਉਹ ਕਥਾ ਲਿਖਦਾ ਲਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਸਰਾਇ ਆਲਮ ਗੀਰ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦਾ।

once again, welcome back after the hit of the hour, only on Sunrise Radio 103.2 FM. And once again, a big good morning to you. मैं आशा करता हूँ कि इस दिन की शुरुआत आपकी काफी अच्छी तरह से जा रही है. इस शो के मेरे आखिरी आवर में आपका स्वागत है. जैसे मैंने कहा कि 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन सनराइज रेडियो 103.2 FM. काफी ब्यूटीफुल गाने आपके लिए हाजिर हैं इस आवर में भी. सो स्टे ट्यून्ड.

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: पैरन या जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

for a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है Abby and guess what? 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं आप उन्हें कॉल करते हैं वीडियो कॉल करते हैं उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ़ यू हैवन डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू. उनको भी अच्छा लगेगा आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

बैक ऑफ द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम टू गो। मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, लव्ड वंस, बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव एंड टेक केयर।

0: है जनाब, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं आज सुबह उठा हूँ और मुझे नींद में ही मैं चलता हुआ आया हूँ। वो ज़ोंबीज़ होते हैं ना, पता नहीं होता किधर जा रहे हैं। तो हालांकि मैं कॉफ़ी भी मैंने रास्ते से मैंने उठाई है, लेकिन फिर भी मेरी आंखें अभी भी बंद हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, उस रेडियो के साथ साथ हैं जिसे आप सुनते हैं DAB पर भी, इन लॉट ऑफ प्लेसेस, ब्रैडफोर्ड, कीफ्ली, Ilkley, Skipton, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burnley, Darwin, Nelson, Eckington, Milton Keynes, and launching very soon in Derby. Why I'm saying this launching very soon in Derby? You know, this needed to be updated. I need to check with Raj actually, because I thought it's already been launched in Derby. But there you go. You can listen to us in Derby as well now. और आप हमें हमारे जो एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से भी, हमारी ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड के भी आप हमें सुन सकते हैं। ऑनलाइन हमें सुन सकते हैं www.sunrise.fm, एंड ऑफ कोर्स आप हमें 100.6 FM पर भी सुन सकते हैं, एंड 103.2 FM अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर, एंड ऑब्वियसली 100.6 FM इन कोल्डरडेल। तो जनाब, मुझे कहते हैं कामरान, और मेरा और आपका साथ जो होता है आज का दिन बिल्कुल नहीं होता है। इट्स आई एम जस्ट ओनली सेइंग हियर फॉर आमर भाई, क्योंकि आमर भाई इज़ नॉट हियर फॉर सम पर्सनल रीजंस, लेकिन उनकी जगह जो है वो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए ठीक दिन के 2 बजे तक। कितना अच्छा हूँ। जी जनाब, अगर तो आपका आज का दिन अच्छा गुजरा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छा नहीं गुजरा तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि आज का दिन वैसे भी है सुहाना, मौसम है सुहाना, आशिकाना, दिल बराना, क्योंकि धूप निकली हुई है और इतनी सर्दी भी नहीं है। तो इन्जॉय करने की कोशिश करें और मेरे साथ साथ इन्जॉय करना है, यानी कले कले, ठीक है, कले कले आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि 2 बजे तक मेरे और आपका साथ है, 2 बजे तक आपने मेरे साथ रहना है, और इस साथ को आपने कैसे खूबसूरत बनाना है, आपने मुझे कॉल करनी है। ये नंबर है हमारा 01274306666। आई एम सो सॉरी, जो लोग मुझे कॉल करें उनकी कॉल मैं अभी भी उठाऊँगा, 2 मिनट में उठाऊँगा, लेकिन मैं जरा जल्दी जल्दी बोल लूँ। है आपने मुझे कॉल करनी है 01274306666, मुझसे अच्छी अच्छी गप्पे लगानी है, हंसना है, खेलना है, ठीक है, और 2 बजे तक ये हमारा साथ रहेगा। फर्स्ट आवर में हम लोग जो हैं, अगर आपने किसी को सलाम देना है, किसी को आपने ताने देने हैं, किसी को आपने खड़ी खड़ी सुनानी है, तो बिल्कुल इस आवर में मुझे आप कर सकते हैं, खुली छुट्टी है। जो सेकेंड 2 आवर्स होते हैं हमारे, उनमें आपकी होंगी लाइव कॉल्स, लाइव कॉल में आप आएंगे, आप हमारे साथ करेंगे बातें, जिसमें आप अपनी शायरी, शायरा होने का सबूत देंगे, मुसन्निफ़, मुसन्निफ़ा होने का सबूत देंगे, गायक, गायिका होने का सबूत देंगे। तो सेकंड 2 आवर्स जो होते हैं वो आपको इस हवाले से हम नॉमिनेट करते हैं, आपको एलोकेट करते हैं, आपको देते हैं, आपके नाम हम करते हैं, ठीक हो गया। तो जनाब, आप मुझे सुन रहे हैं, एंड अभी हमारे पास एक छोटी सी चुनी मुनी सी ब्रेक, ठीक है, रहिएगा मेरे साथ साथ।
1: This is Sunrise Radio on FM, DAB, online and mobile.
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2 or 3 bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord Lord you can trust. Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 69 23788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Hi, this is Bobby Deol, and you're listening to Sunrise Radio, Yorkshire.

0: This is Sunrise Radio on FM, DAB, online and mobile.
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

कुछ गाने बहुत खूबसूरत होते हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उनकी खूबसूरती में जो वो दाग लगाऊं। ओके जनाब, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया, आप सभी की कॉल्स का बेहद शुक्रिया। आप सबके नाम जो हैं वो मैं ले देता हूं। कुछ कॉल मिस भी हो गई हैं जिसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माजत भी करता हूं। हमें कॉल किया था दीपा बाजी ने, हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अयूब चौहान साहब, आपने हमें कॉल किया, आपकी कॉल का बेहद शुक्रिया। वाजिद भाई, आपने हमें कॉल किया था, आपकी कॉल का बेहद शुक्रिया, लेकिन आपकी प्यारी प्यारी आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाई। हीरा खान साहब, आपने भी हमें कॉल किया था। वैसे आप कौन मैन तो नहीं है हीरा खान साहब, आपने भी हमें कॉल किया, बेशुक्रिया आपकी कॉल का। आशा जी, आपने हमें कॉल किया, आपकी कॉल का भी बहुत। आशा जी, देखो मैंने आशा जी ऐसे कहा जो आशा भोसले मेरे जहन में आ गई, रेस्ट इन पीस। आयशा जी ने हमें कॉल किया था, एक्सक्यूज मी। उसके बाद हमें कॉल किया था सायरा जी ने, हमें कॉल किया था, आपकी कॉल का भी बेहद शुक्रिया। अली साहब, आपने भी हमें कॉल किया था, आपकी कॉल का भी बेहद शुक्रिया। मंसूर साहब, आपने भी हमें कॉल किया था, आपकी कॉल का भी बेहद शुक्रिया। तो मुझे लगता है कि मैंने सभी के नाम ले दिए हैं, अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं तहे दिल से जो हूँ वो माजरत करूँगा। और जो है अभी 5 मिनट रहेंगे, 5 मिनट बाद हम जो है वो ब्रेक पर जाएंगे। हम ब्रेक में होगी कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक में फिर हम खबरें भी सुन लेंगे लगे हाथ, और उसके बाद फिर होंगी हमारी लाइव कॉल्स। तो अच्छा, मैंने क्या बात करनी थी, यार कोई बात करनी थी मुझे भूल गई है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग मुझे कॉल कर रहे होते हैं और मुझसे इतनी फनी फनी बातें करते हैं, ऑनेस्टली मुझे बहुत मज़ा आता है, इतनी फनी फनी बातें करते हैं। अभी हमारी एक कॉलर आई थी, उन्होंने एक बात की, कहती है कि मेरी शायरी, उनको इतना दुख है कि उनकी शायरी जो है वो लोग चोरी करके टिकटॉक पे लगा देते हैं। तो गलत बात, बहुत गलत बात, मारेंगी वो आप सबको जो जो करते हैं मतलब इस तरह के काम। तो कहती हैं कि मुझे कहती हैं कि क्या करते हैं कि लोग ये तो पार्क की तस्वीरें लगा के, पीछे पार्क की तस्वीरें लगा के ऊपर मेरी शायरी लगा देते हैं। मुझे इतनी हंसी है, मैंने कहा शायरी के ऊपर पार्क की तस्वीर क्या मतलब, शायरी के ऊपर पार्क की तस्वीर। हाँ, पार्क में जा रहे हैं, टाउन में जा रहे हैं, पीछे मेरी शायरी बोल रही है, खुद जल्दी हुए पार्क जा रहे, टाउन जा रहे। और यार ये तो बहुत गलत बात है, अगर शायरी की लगानी भी आपने तो को मतलब कोई कहीं पे ऐसे फूल खिल रहा हो, ऐसे कोई झरना गिर रहा हो नीचे, कोई ऐसे सब्जाजार खेत दहला रहे हो, कोई इस तरह के काम करें। ये क्या होता है, पार्क में जा रहे हैं, टाउन में जा रहे हैं, पीछे शायरी हो रही है। तो खैर, ये सब तो हमारी गप्पे हैं, हमारी फजूल की जो है वो बातें हैं। तो ऐसा करते हैं कि छोटा सा गाना हम सुनते हैं, आपको सुनाते हैं, एंड उसके बाद जो है कमर्शियल ब्रेक आ जाएगी। कमर्शियल ब्रेक के बाद आप सबकी कॉल्स होंगी। जी जनाब, आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो अभी से मुझे जो है कॉल करना शुरू कर दें। कुछ कॉलर ऑलरेडी हमारे साथ होल्ड पे मौजूद हैं, और कुछ का जब आप मुझे कॉल करेंगे तो हम आपको ऑन एयर लेंगे। तब तक हम जो है ये गाना सुनते हैं, कलंदर, मस्त कलंदर। कभी कलंदरों वाली जिंदगी गुजारी है आपने, किसी ने गुजारी मुझे बताएं।

जी जनाब, बिल्कुल थोड़ी देर में हम कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैंने आते हुए एक वीडियो बनाई थी, सोचा था क्या क्या नहीं सोचा था। वैसे मैंने सोचा कि मैं टिकटॉक पे लगाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा, मेरे फॉलोअर होंगे, पर पता मेरे कितने फॉलोअर हैं टिकटॉक पे, मैं ना ही बताऊं तो बेहतर है। अच्छा, लोगों के पता नहीं कैसे फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो जनाब, वो टिकटॉक पे मेरी वीडियो नहीं लगी अभी तक, चढ़ी नहीं है। कितने अनुमान लेके आया था मैं स्टूडियो में। दी जनाब, अगर आप टिकटॉक पे जो है फेमस होना चाहते हैं ना, तो मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। आपको भी शौक है ना कि लोग आपको फॉलो करें, लाइक और कमेंट करें, तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है।

0: get the new fix and fall tariff from British Gas, where prices can only slide down. If energy prices climb up, no worries, you'll be fixed for 2 years. But if later the market falls, so will your tariff. Mm. A win-win, sorted automatically by us. Price cap? Taken care of. Fix your prices today. Search British Gas Fix and Fall. T's and C's eligibility and limitations apply. Price review based on the Ofgem price cap after 12 months. See britishgas.co.uk/verify for more. Sunrise Radio.
1: Sunrise Radio. Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.
3: राइट जनाब, हम वापस आ चुके हैं अपने सेकंड आवर में और इस आवर में आपकी लाइव कॉल्स होती हैं, आप मुझे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं और इस वक्त मैं आप सभी को जो हूं वो लाइव लेके जाने वाला हूं।
4: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
3: एंड द टाइम ऑन द डायल इज 3:12। वेरी गुड आफ्टरनून। और देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन सी हस्ती मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम
3: जी। आयशा इस वक्त लाइव ऑन एयर हमसे बात कर रही हैं। आयशा कैसी हैं आप?
5: अल्लाह का
3: करम है, कमरान
5: आप बताओ कैसे हो?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आप
5: वीकेंड कैसा गुजरा आज? तो माशाल्लाह बड़ी धूप निकली हुई है।
3: हाँ जी, वीकेंड बिल्कुल हम भरपूर तरीके से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबसे बहन भाइयों से दुआएं भी ले रहे हैं और गपशप भी हो रही है। आप बताएं, आपका वीकेंड कैसा गुजरा?
5: अल्लाह के करम से बहुत अच्छा गुजरा है, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने रेडियो ऑन किया तो मैंने सोचा कि आप ऑनलाइन गए हुए, तो मैंने सोचा चलो आज देखते हैं क्या मौजूद लेके आए हो, क्योंकि आपका यूजुअली प्रोग्राम कभी कभार होता है, मगर जब होता है तो बड़ा अच्छे सम टाइम मौजूद लेके आते हो जो किसी को मालूमात दे या किसी की नॉलेज में इजाफा करें।
3: जी, हम मौजूद
5: मेरी कोशिश होती है कि पहली कॉल मैं लूं, क्योंकि फिर मुझे मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने जो बात की है उसमें लोग एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
3: हाँ जी, आपकी कॉल नहीं, थैंक यू सो मच। मौजूद भी हम लोग ऑफ एयर भी इस वाले से बात कर रहे थे और हमें पता है कि हमने कौन सा मौजूद भी डिस्कस करना है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप हमेशा इनकरेज करती हैं कि किसी टॉपिक पे बात की जाए। और कॉल बिल्कुल जनाब आपकी और अयूब चौहान साहब की हमेशा से जो है वो टक्कर हो रही है कि किसने पहले ऑन एयर जाना है, लेकिन इस दफ़ा बाजी आप ले गई हैं क्योंकि मुझे पता है आप काफ़ी देर से आप होल्ड पे थी, तो अयूब चौहान साहब भी होल्ड पे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन थैंक यू सो मच, आप वक्त निकालती हैं और बहुत अच्छा करती हैं कि आप अच्छी बातें लेके आती हैं हमारे सुनने वालों के लिए। अच्छा, बात हो रही थी
5: कामरान मेरे भाई, एक्चुअली जिस प्लेटफॉर्म पे आप उन्हें, तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मालूमती प्रोग्राम होता है, कभी कभार होता है, तो इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम जिस तरह आप जिस प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हो ना, तो कुछ लोग अभी तो रेडियो लोग सुनते नहीं है, अगर कुछ सुन रहे हैं पाकिस्तान में या इधर में, तो अगर किसी को हमारे जरिए या कोई अच्छी बात पहुंच रही है या किसी के इल्म में इजाफा हो रहा है, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है।
3: बेशक बेशक, ऐसा ही है। अच्छा, कुछ हस्बैंड वाइफ के हवाले से बातें हो रही थी कि बाज़ुकात जो शादी होती है, शादी कुछ अर्सा तो शादी का हनीमून पीरियड जब चल रहा होता है तो अच्छा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन कुछ चीज कुछ टाइम के बाद चीज़ें मांद पड़ जाती हैं, मुरझा सी जाती हैं, रिलेशनशिप्स वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं।
5: शायद वो आई थिंक एक दूसरे की वो आदत हो जाती है।
3: नहीं नहीं, आप बिल्कुल, मुझे पता है आप किस बात पे हंस रही हैं, क्योंकि आपने ये ऑफ एयर भी बात की थी कि कहना तो नहीं चाहिए, हमें डांट भी पड़ सकती है और हमें क्योंकि हम सब घरों वाले हैं, घर को भी जानना है वापस।
5: हाँ, ये बात तो है ना, घर भी घुसाने हैं। कमरान है, इस बारे में बहुत सारे सवाल है और कई जवाब है। एक्चुअली पहले जो रिश्ता मीनिंग नहीं बनता तो उसमें एक डिफरेंट कशिश होती है, जब रिश्ता बन जाता है फिर उसमें डिफरेंट है, फिर जब कुछ वक्त गुजरने के साथ एक जिम्मेदारी आ जाती है
3: जी।
5: ये जिम्मेदारी को मर्द और दोनों मिल के निभाते हैं, तो मैं ऊंच नीच हो जाती है, पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मर्द देखो बाहर काम पे होंगे, बड़े फ्रेंडली होंगे, औरतें भी बाहर अपनी नेबरों से बातें करेगी, खिल खिल के बातें करेगी, खूब हंसेगी, शुक्र है मर्द क्या है, चलो हम बातें चार कर लेंगे, और आपस में वो इस तरह वो मीनी के एक हाथ में रह के बात करते हैं। फिर उनमें झगड़ा बन जाता है. तो मैंने बहुत सारे इस तरह देखे हैं कपल जो मीनिंग आपस में फ्रेंडली नहीं है.
3: ऐसा बिल्कुल है.
5: मेरे ख्याल में जितनी फ्रेंडशिप हम बाहर बनाते हैं, बाहर लोगों को वक्त देते हैं या बाहर खुल के बात करते हैं, इतनी अगर फ्रेंडशिप मियां बीवी के दरमियान हो तो रिश्ता मैं समझी ना ही कभी कमजोर हो और ना ही तलाक तक बात आई.
3: बिल्कुल सही बात है. अच्छा एक और बात बड़ी
5: मेरे जहर अगर मैं निकाब करके ना निकलूँ तो मैं किंग लोगों से मार खाऊं. क्योंकि मेरे जब शॉपिंग के लिए निकलूँ या बार दफा जाती हूँ ना तो मैं जाती एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा एक एक्स मेजर होता था तो वो काम पे बड़ा फ्रेंडली बातचीत आराम से बात सुनता था इस तरह. तो जब वो बीवी बच्चों के साथ आपको मैं कहने काम छोड़ दिया है उधर से दो पाँच छह साल हो गए हैं, मगर जब वो मैंने बीवी बच्चों के साथ कभी देखा है ना तो इस तरह देख रहा हो इस तरह वो आगे पीछे नहीं देखता और इस तरह होता है कि जिस तरह मुजरम नहीं होता जा रहा होता है पुलिस वालों के साथ.
3: अच्छा मैंने
5: तो मुझे बड़ी इस तरह मैं देखती हूँ ना जो मर्द इस तरह मिनी जकड़े हुए इधर उधर नहीं देखना हाँ. मारना पड़ जाए तो मैं बड़ी मुझे हंसी आती है. अगर मैं निकाब ना पहना हो तो मुझे रोज मार पड़े मैं निकाब के अंदर बड़े हंस रही होती हूँ किस तरह जा रहा है जिस तरह ये कैदी नहीं होता है वो जिसे फांसी हो चुकी होती है
3: वो फांसी
5: का कैदी जा रहा होता है. मगर डर हकीकत ये देखने से कुछ नहीं होता कि डर रहे होते हैं कि हाँ हमारी बीवी हमें कैच ना कर ले. बीवी में अल्लाह ताला ने बहुत इस तरह की चीजें रखी हैं औरत में जो मर्द को नहीं महसूस होती. औरत मर्द की चाल लबो ले जा तौर तरीके से पहचान लेती है कि मेरा मर्द किसी और के साथ मिनी कन्वोल है, वो इसके दिल में कोई औरत आ चुकी है.
3: बिल्कुल सही कहा आपने.
5: मर्द का बनना संवरना मर्द का लबो ले जा और मर्द सोचा कि हाँ इसे क्या पता है मैं तो नॉर्मल हूँ. मगर औरत ने अल्लाह ताला ने बड़ी इस तरह की उसके बात करने का अंदाज. अगर वो शावर भी करे ना तो औरत को ये भी पता होता है कि ये जो कपड़े इसने पहने या मेरे लिए पहने या किसी और के लिए पहने.
3: बिल्कुल सही
5: तो बहुत सारी चीजें होती हैं औरत
3: मुशाहिदात है. मैं समझता हूँ कि जो भी आपका मियां बीवी का रिश्ता होता है वो कभी आइडियल बहुत मुश्किल से आइडियल होता है, होता भी होगा, लेकिन उसमें कहीं पे कभी गर्म सर्द और चलता रहता है. कहीं पे आपके मेरा जो मुशाहिदा है कि आपके मोमेंट्स होते हैं, आपके दिन होते हैं, कुछ दिन आपके बड़े अच्छे गुजरते हैं, कहीं पे कुछ दिन ऐसा होता है, एक दो दिन आता है जहाँ पे वो इतना आइडियल नहीं होता है. तो ये चीज़ हमें एक एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए. और दूसरी चीज़ जो आपने कही है कि मर्द के बारे में कहा जाता है कि वो घर में बीवी भी है तो जब बाहर जब भी उसको कहीं पर मौका मिलता है तो वो कोशिश करता है कहीं ना कहीं पर. ये बात भी काफ़ी हद तक मेरे यहाँ से ठीक है, लेकिन हर मर्द हम जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, हर मर्द ऐसा नहीं भी होता है. मेरा अपना मानना है कि जब आप किसी के साथ हैं तो फिर आप उसी के साथ रहें. हाँ जब नहीं है किसी के साथ तो फिर आप जो मर्जी करें.
5: हाँ अगर शादी करनी है तो एक डिफरेंट टॉपिक है क्योंकि मर्द एक औरत पर इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया ही ऐसा है. तो वो एक टाइम चार औरतें भी मिनी चार बीवियां भी रख सकता है. मगर तेरे वाली बात है कि अगर एक औरत ईमानदार है वफादार है अल्लाह ताला ने औरत को बड़ा ईमानदारी जो मियां बीवी का रिश्ता है ना इसमें वो बड़ी मुखलस होती है. अगर कोई औरतें बेवफाई कर रही है ना उसमें 75% कसूर मर्द का है. वक्त नहीं देते वो उसे तवज्जो नहीं देते वो उसे मर्द सोचते हैं कि हाँ हमने कमाई कर लिया है घर दे दिया है रोटी अच्छी दे रही है. नहीं औरत वो देखिए आपने बहुत सारी देखी होंगी कि अमीर अमीर घराने होते हैं शायद वो उनको ठोकर मार देती हैं गरीब के साथ शादी कर रही है. औरत चाहती है मेरे जज्बा को अंडरस्टैंड करे.
3: सही
5: और जितना रिश्ता मर्द आशिक नहीं होता मर्द जब शादी नहीं होती तो उस वक्त अगर आशिक है जब शादी हो जाती है तो फिर वो औरत आशिक होती है मर्द उसकी अपनी बीवी है.
3: सही
5: तो ये मैं आम बातें नहीं बता रही ये मैं अपनी एक्सपीरियंस की बातें बता रही हूँ जो मेरी नॉलेज में है.
3: ऐसा है बिल्कुल ऐसा है.
5: मर्द इन चीजों को महसूस नहीं करते. मर्द कहते हैं बच्चे हम बच्चे हो गए हैं घर दे दिया है कपड़ा दे दिया है अब इसे और क्या चाहिए. नहीं औरत चाहती है मुझे कुछ सुने मुझसे कुछ डिस्कस करे
3: ठीक है
5: मेरे जज्बात को समझे।
3: Attention
5: तो ये चीजें बहुत सारे मर्द है जो नहीं समझते तो फिर उधर से इख्तलाफ शुरू हो जाते हैं। बाहर तो बड़े फ्रेंडली होंगे, काम पे हैं बड़े फ्रेंडली, जब घर आ जाएंगे बीवी को ये तसर देंगे कि सारा जमीन आसमान मैंने एक टांग पे उठा रखा है पूरा दिन।
3: सही हो गया।
5: तो अब जो बीवी है तुम्हारी जिंदगी भर की लाइफ पार्टनर शायद उसे दो, बाहर औरतों को देने का कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हें क्या देंगी। अपनी बीवी को स्माइल दो, सलाम दो, जितनी भी टेंशन है वो पीछे छोड़ के आओ। तो अगर उसके बीवी की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो वो आगे 100 कदम बढ़ाएगी मोहब्बत का। अगर आप उसे नजरअंदाज करोगे तो वो पीछे बैक चली जाती है। आगे से मेरे जज्बात की तो एहसास है नहीं है, मैं अपना वक्त इस पे क्या करूँगी। वो करते करते करते रिश्ता कमजोर हो जाता है।
3: ठीक हो गया, यानी 75% जो है वो कसूर मर्दों का होता है, और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अगर आपकी ज़िंदगी में जो है वो 100% लाइफ नहीं चल रही है मियां बीवी की, तो मजीद एफर्ट पुट करें।
5: बहुत अच्छी बात है। हमारी बीवी झगड़ा करती है, झगड़ा बीवी उस वक्त करती है जिसे उसे त्वजा नहीं मिलती, बिला वजह उसे काले कुत्ते ने काटा है।
3: अच्छा सही है, ठीक है।
5: झगड़े में वो त्वजा मांग रही होती है। अल्लाह ताला ने औरत को बनाया ऐसा कि वो मुंह से बोल के अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करती, वो अपनी त्वचा देगी, कपड़े ठीक करेगी, कपड़े सही करेगी, खाना बना के रखेगी। जैसे औरत का होता है कि जो औरत मर्द का मिनी केयर करती है वो खाना अच्छा बना के देखती है मर्द को, बंदी समझती है। कुछ मर्द होते हैं नुकदा चीनियां निकालना शुरू कर देते हैं, वो दूसरी दफा नहीं बने संवरेगी। दिमाग देख लो, अगर आपने बोला ना कि ये लिपस्टिक तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, वो जिंदगी भर वो लिपस्टिक नहीं लगाएगी। तो ये मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि क्योंकि मर्द जब औरत को टोकते हैं ना तो तवज्जो नहीं देते हैं ना, तो वो पीछे होना होना होना वो उसकी जज्बात मर जाती है। आप उसकी तारीफ करो, उसके साथ अच्छे रहो, तो वो मोहब्बत बार बार के आपको देगी।
3: बहुत खूबसूरत बात।
5: अगर मियां बीवी का रिश्ता मजबूत है तो बच्चे हेल्थी हैं। अगर मियां बीवी का रिश्ता मजबूत नहीं है ना तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं ना वो सोचते हैं कि माँ बाप ने लड़ लड़ के जिंदगी गुजारी, अब हमने भी यही आगे करना है। तो वो अपने जो लाइफ पार्टनर होते हैं उन पर बड़ी बच्चे जो समझाने से समझे नहीं है, कहते हैं बच्चे अगर किसी को समझाया नहीं है, नहीं वो बच्चे वो करते हैं जो वालदेन को देखते हैं।
3: सही हो गया, यानी
5: बच्चे पिकअप करते हैं चीजें। तो वो जो आप 5 बच्चे पैदा किए हैं 10 किए हैं वो आगे 10-12 की और जिंदगी बर्बाद करेंगे, तो उससे बेहतर नहीं है एक जोड़ा सी बच जाए।
3: ठीक है, सही हो गया। ओके,
5: मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई है, बातें तो और भी थी, मगर किसी और को भी वक्त देना चाहिए।
3: अच्छा हाँ, नहीं मैं इस चीज़ को समराइज करूँगा कि बहुत सारे मर्दों के लिए लेसन इन बातों से कि अगर आप ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो यकीनन आपके जो हैं वो ताल्लुक बेहतर होगा। लेकिन अगेन हम जनरलाइज नहीं करें, हर इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ है, लेकिन ये जो मेन चीज़ें हैं इनको ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अच्छा एक और जल्दी से बात करूँगा क्योंकि ब्रेक भी आ गई है, कि ये क्या हुआ कि मतलब बड़ा मतलब मसले मसाइल हुए हैं। लास्ट टाइम भी आपने बात की थी कि मेरी शायरी जो है वो लोग चोरी करके टिकटॉक पे लगा रहे हैं, ये क्या हो रहा है
5: यार, बड़े गम की बात है
3: ना।
5: काम मेरा तो दिल जला हुआ है और मैं अब क्या बोलूं यार। मैं चलो शायरी मैं नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी शायर हूँ, मगर सम टाइम मेरे जहन में कोई अच्छे अल्फाज आ जाते हैं तो मैं शायरी लिख लेती हूँ। ये नहीं कि मैं दुखी आत्मा हूँ, ऐसी नहीं है। मुझे शायरी में जज्बात ना हो या एहसास ना डाले जाए तो वो शायरी की मीनिंग खत्म हो जाती
3: है। सही है।
5: तो मैं शायरी लिखती हूँ तो मैं जब ऑनलाइन शायरी सुनाती हूँ तो जब 4-6 कहते हैं कि माशाल्लाह ये शायरी बहुत अच्छी है, तो मैं समझती हूँ कि जो मेरा वर्क था वो क्या कम हो गया है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो मैं शायरी सुनाती थी तो कुछ लोगों ने मर्दों को तो मैं नहीं कहती थी क्योंकि मर्द वो रिस्क पे सोचते हैं, इन बातों में मर्द नहीं पड़ते, वो वक्री होती है। किसी औरत ने किया होगा तो कोई किधर की वीडियो लगी है, कोई किधर की तस्वीर लगी है, तो मेरी शायरी ऊपर, तो मैं तो टिकटॉक पे तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा आइंदा तो नहीं सुनाऊ। मैं देखो आपके प्रोग्राम में हमेशा शायरी सुनाती हूँ, तो जब लोग अप्रिशिएट करते हैं आप अप्रिशिएट करते हो तो मैं सोची हूँ कि मेरे जो अल्फाज लिखे थे उनको मीनिंग एक मीनिंग मिल गया है।
3: सही है, ठीक
5: है। तो अब ये हुआ है तो फिर मेरा तो दिल आपस ही हो गया है ना, वो बीवी मियां वाला फिर बात आ गया।
3: चलो जो का पार्ट, लेकिन मेरा से ये सीरियस बात है, मेरा से पहले भी उन्होंने मेंशन की थी कि अगर आप शायरी किसी की चोरी भी करते भी हैं तो प्लीज उसका नाम जरूर मेंशन कर दिया करें। ये
5: मैं तो शायरी अपनी का शायरी में नाम शाम तो नहीं डालती, वैसे मेरी मैं प्रॉपर शायर तो नहीं हूँ ना, अच्छे अल्फाज लिखती हूँ तो सुना देती हूँ, तो आप लोग अप्रिशिएट भी करते थे और मुझे भी लगता था कि चलो मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, मेरी मेरी शायरी को कोई मिनी किस तरह सुन रहा है,
3: सही हो गया, चलिए
5: साथ दे रहा है, मगर वो लोगों ने चोरी करना शुरू कर दी और टिकटॉक पे लेके बस देखो स्पार्क की तस्वीर लगी है, कभी किसकी तस्वीर लगी है, कभी किसकी तस्वीर लगी
3: है, कहीं बतके भागते जा रही है, कहीं पे कलबूतर उड़ रहे हैं। चलिए ये तो है मजाक की बात है, लेकिन सीरियस नोट
5: बंदे पता है व्यू लेने के लिए, क्योंकि जब शायरी कोई पसंद करता है तो वो लाइक और अनलाइक व्यू भेजता है ना, तो अपने लोग तो फिर इससे मैं बेहतर है मैं अपना अकाउंट बना लूँ और अपनी शायरी का खुद मैं व्यू लूँ ना, मगर मैं टिकटॉक पे इन चीजों पे नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं इस चीज की इन चीजों को नहीं मैं पढ़नी पड़ती, मगर ये अच्छी बात तो नहीं है ना।
3: सही हो गया, बिल्कुल जी ना, बिल्कुल सीरियस नोट पे कि बिल्कुल बतखें और कबूतरों की तस्वीरें और वीडियोस मत लगाएं, और अगर आप किसी की शायरी करते भी अप्रिशिएट करते भी हैं तो प्लीज़ उसको चाहे नाम मेंशन ना करें, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये किसी और की शायरी है जो कि मैं अप्रिशिएट करने के लिए मैंने इसकी वीडियो बनाई है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच आयशा जी, आई एम सो सॉरी, अभी ब्रेक का टाइम आ रहा है, उसके बाद अयूब चौहान साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, आपके कॉल का बेहद शुक्रिया, हमेशा की तरह आपकी खूबसूरत बातें हमारे सुनने वालों तक पहुँची हैं, तो इंशाल्लाह अगर टाइम मिले तो अगले आवर में आप हमें दोबारा से कॉल कीजिएगा, ठीक है?
5: थैंक यू कामरान, मेरा दिल हजारी किसी का करने का, जो जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं इधर या पाकिस्तान में, मैं अगर किसी ने मेरी इस तरह की शायरी चोरी की है तो मैं रंजीदा जरूर रही हूँ, मगर मेरा शिकवा नहीं है, चलो उनको अच्छी लगी, इसमें भी उनकी मोहब्बत है, अच्छी लगी तो चलो लगा लिया है, मगर यह है कि मेरी जितनी भी बातें थी इसमें किसी की पर्सनल अटैक नहीं है ना, किसी की दिल आजारी करने का मतलब, मैं तो सिर्फ अपने इल्म के मुताबिक जो मेरे जहन में बातें आई हैं उस पर मैंने डिस्कस की है कि अगर ये बातें हम करें ये बातें हम छोड़ें तो हम लोगों की जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं, तो एक ऐसे सबक के तौर पे मैंने जो बातें की हैं मैंने पर्सनल अटैक किसी को नहीं किया, तो अगर फिर भी किसी को मेरी बात चुभी है या बुरी लगी है तो मैं माफी चाहती हूँ कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है और सब ने जाना है।
3: सो स्वीट ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, थैंक यू सो मच आपकी खूबसूरत बातों का, जज़ाकअल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
6: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई, चूड़ियाँ कांटे अंगूठियाँ हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
7: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
8: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
7: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
8: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across

0: network page at www.sunriseradio. That is www.sunriseradio. अगर आप हैं ठीक ठाक लाइव पे आप स्ट्रीम करते हैं और आप जो हैं वो सपोर्ट चाहते हैं, आप अपने अकाउंट को जो है वो ग्रो करना चाहते हैं, अपने जो भी आप कंटेंट बनाते हैं वो उसके लिए आप मज़ीद फॉलोअर चाहते हैं अपने अकाउंट पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सनराइज क्रिएटर नेटवर्क. आपने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू गो ऑन द सनराइज रेडियो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज www.sunriseradio, और वहाँ पे क्रिएटर नेटवर्क पेज पे जाके जो है वो आप अपने आपको रजिस्टर करवाइए. एंड दैट्स इट, यू डोंट नो, यू नेवर गोना नो, यू नो व्हाट्स हैपनिंग अनलेस यू गो अप देयर एंड साइन अप. कुड बी अ ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटी. जी जितने भी टिकटॉकर हैं, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. राइट जनाब, जल्दी से चल रहे अपनी अगली कॉल की जानब, देखते हैं हमारे साथ इस लाइन पे कौन सी हस्ती मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम कमरान साहब, आप कैसे हैं?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अजीब चौहान साहब, आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक ठाक हूँ. मुझे एक गाना याद आ गया है, आप कह रहे थे ना.
0: जी जी.
1: बोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर कहीं शर्म आए, हाय हाय
0: हाय हाय. आगे आगे आगे
1: नहीं आता. आगे
0: हाय हाय के मेरे हाय हाय पे हाय होगी बस.
1: तो एक और है, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, देखते देखते क्या हो गया. बस इतना याद
0: बस इतना याद है. मतलब गाने आप माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं, गाने सभी अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा और भी गाया करें ना, ताकि हम
1: जैसी याद नहीं ना,
0: हम जैसी
1: याद बहुत सी चीजें मुझे याद नहीं आती. हाँ मुझे दो लतीफे याद है.
0: अच्छा
1: इसमें आज पहली लतीफे सुना देता हूँ. एक दफा ऐसा ये हुआ ना कि एक बहुत औरतों की काफी सारी महफिल जमी हुई थी ना, तो वो कुछ मर्दों के बारे में बात कर रही थी. तो एक औरत बहुत तकरीर करने की काबिल थी ना, बहुत अच्छी तकरीर कर रही थी. तो उसने कहा कि मैं पूछती हूँ इन मर्दों से कि अगर वो औरत ना होती तो आप कहाँ होते.
0: जी.
1: तो पिछले लाइन में एक मर्द बैठा था, वो बोलता हम जन्नत में होते.
0: बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की. सही हो गया. अच्छा दूसरा लतीफा भी सुना.
1: दूसरा लतीफा बस बाद में सुनाऊंगा.
0: अच्छा बाद में कब सुनाएंगे, अगले हफ्ते सुनाएंगे?
1: जी अब नहीं, अभी है, चलो सुना ही देते
0: हैं. कोई बात नहीं, अगर आपने ब्रेक लेनी है आप ब्रेक ले लें, अगर इस
1: दरमियान शायरी बात चलो सुनाते.
0: अच्छा
1: कह रहा, कल रात जब मैं घर लौट रहा था तो शमशान पास मुझे चार खतरनाक भूत मिल गए और मुझे परेशान करने लगे. बीवी बोली फिर क्या हुआ? शोर कहने लगा मैंने उनसे कहा ठहरो अभी मैं अपनी बीवी को बुलाता हूँ, और ये कहकर मैंने जोर से तुम्हारा नाम लिया पुकारा और उस पर चारों भूत भागे.
0: सही हो गया. ठीक है. अच्छा मैं इसके वाले में कोई डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि यू नो इज्जत अपने हाथ में होती है बंदे.
1: एक और है कि एक नवीना की शादी होगी ना.
0: अच्छा
1: तो नवीना वो तो नजर कमजोर थी बेचारी की, नजर नहीं दिन तक.
0: जी जी.
1: तो उसका बीवी कहती है अजी सुनते हो मैं कैसी लगती, मैं आकाश तुम्हारी आंखें होती तो देख सकते मैं कितनी खूबसूरत है. तो बोलता है बेगम झूठ में बोलो, अगर मेरी आंखें होती तो क्या आंखों वाले मुझे तुम्हारे लिए छोड़ देते.
0: चलो सही हो गया. मैं अब कुछ कह नहीं सकता, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता. ठीक है जनाब, लेकिन आपका लतीफे, क्योंकि ये तो लतीफे होते हैं, शगुफे होते हैं, तो इनके इन पे बस आप एंजॉय कर सकते हैं.
1: मेरे पास तो बहुत सारी बुकें पड़ी हैं. एक दफा मैं दुकान में चला गया था, अपने मीरपुर में काफी दुकानों पर फेरा तो कोई मिले नहीं रही थी किसी के पास नहीं, तो एक दुकान पर चला रहा, वो उतनी मशहूर नहीं थी. तो मैंने उन्हें देखा तो उन्होंने एक बुक दिखाई मुझे.
0: ठीक है.
1: तो मैं शाल पर चला गया, वो देखा कोई 15-20 बुकें पड़ी थी.
0: अच्छा.
1: तो कोई 20 रुपए की, कोई 30 रुपए की. तो उन पर वो दो क्या कहते हैं डस्ट भी लगी हुई थी.
0: जी.
1: तो मैंने बोला भाई इन सब को क्लीन करो, तो ये सारी कितने की दोगे? तो उसने कोई 400-500 रुपया बनाया. तो मेरे 400-500 दे के सारी सभी पूरी शाल भी ले ली.

0: ओके जनाब, हम देखते हैं हमारे साथ जो है वो अगली लाइन पे कौन सी हस्ती इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम जावेद मीर साहब। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खैरियत से मेरे भाई। तो टाइम आपके पास कम है।
0: जी जनाब,
1: तो मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मरमुल हराम के हवाले से है।
0: जी जरूर।
1: इलाही बहके बनी फातिमा के बर कौले इमा कुनी फातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल, मोहम्मद गुलस्तो अली भूए गुल, बवद फातिमा अंदरा बर के गुल, चू इतरश बरामद हुसैनो हसन, मोहत्तर शुदज़वे जमीन ओ जमन, बवद गौस गुलदस्ताए पंजतन, मोहम्मद गुलस्तो अली बुए गुल।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: रोशन नबी पे खुद कभी, नो के सना पे सर कभी, इश्क की बारगाह में यूं हुआ सरफराज इश्क, एक पल बस एक पल थी हकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का,
0: बेशक
1: इंसान के दिल में दर्द समाया हुसैन का, एजाज यूं खुदा ने दिखाया हुसैन का, कुदरत ने खुद चराग जलाया हुसैन का, इंसानियत के नाम पे क्या कर गए हुसैन, तारीख के बुलंद ख्यालों से पूछ लो, आए इस शान से सर अपना कटाने वाले, रह गए शस्त्रो हैरान जमाने वाले,
0: बेशक
1: करबला से यही आती है मुसलसल आवाज, इस तरह दीन को बचाते हैं बचाने वाले, याद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो काम आता है, किसी एक लम्हे को सदियों का सलाम आता है,
0: बेशक
1: इनके तस्करे हो तो बढ़ता है शऊर ईमान, इनकी बातें हो तो फिर लुत्फ कलाम आता है,
0: बेशक
1: और आखिरी है सर तो काट सकता है हर दौर का यजीद, सर को तो काट सकता है हर दौर का यजीद, लेकिन वो सर झुका नहीं सकता हुसैन का।
0: वाह वाह, बहुत खूब,
1: शुक्रिया।
0: बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच जावेद मीर साहब।
1: ओके, बहुत शुक्रिया,
0: सलाम लेके आए, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।
1: ओके, अल्लाह
0: हाफिज। जनाब, वक्त है थोड़ा सा मुख्तसर हमारे पास, और इस दौरान ऑफिस मेरी बात हो रही थी, मंसूर साहब से बात हो रही थी, और मैंने उनको, उन्होंने करबला के हवाले से कुछ कलाम नज़र किया, और मैंने कहा अगर आप उन्हें रहना चाहते हैं तो उन्हें इसको आप नज़र करेंगे तो हमारे सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो देखते हैं अगर वो दोबारा से आते हैं, और जावेद मीर साहब आपके, आपका कलाम, थैंक यू सो मच दोबारा से, और फिर जरीना जी से भी मेरी बात हुई है, थैंक यू सो मच जरीना बाजी, आपकी कॉल का काफ़ी उससे बाद आपसे बात हुई, तो मुझे कहती है क्या हाल है वकास, मैंने कहा वकास कौन, कहती मुझे आपका नाम भूल गया, फिर खुद ही याद आ गया, कहती है ओहो कमरान, कमरान क्यूट लग रही थी जब उन्होंने ना कमरान, तो कहती है हमारे गाँव में एक कमरान होता था वो बहुत चलाक था, मैंने कहा है, मैंने कहा मैं चलाक नहीं हूँ, मेरे साथ लोग चलाकियाँ कर जाते हैं, तो कहती हैं मेरे साथ भी लोग धोखे कर जाते हैं, तो मैंने कहा बस देख ले दोनों बहन भाई ऐसी हैं, कैसा चलाकियाँ हो जाती हैं, कैसा धोखे हो जाते हैं, तो खैर ये तो हमारी गप्पें होती हैं, स्वीट स्वीट बातें होती हैं, लेकिन खुश रहें जरीना बाजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अभी जो है वो हमारे पास हो रहा है वक्त कमर्शियल ब्रेक का, और कमर्शियल ब्रेक के उस पर आपसे मुलाकात होगी।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
3: From from the Sky News Centre at 1. The business secretary says the Prime Minister is reflecting on the political realities he now faces. But Peter Kyle insists he has no information to suggest reports are true that Sir Keir Starmer is about to announce his resignation tomorrow.
4: He has been engaging in conversations with a wide range of people, including myself, and that he is, as well as working really hard over this weekend, I think he is making time to reflect on the political realities, challenges and opportunities that he finds himself in.
3: Downing Street insists the Prime Minister intends to fight for his position. However, in another blow to the PM, we understand the Foreign Secretary is among those telling him to resign. Yvette Cooper delivered that news this weekend. Elsewhere, both sides in the mediators are in place in Switzerland for talks on a wider US-Iran peace deal. An intense couple of days of fighting in Lebanon threatened to lead to the cancellation of the discussions. Commuters are being warned of delays and cancellations on the line between Bedford and London. Recovery work and repairs are needed after Friday's crash, which killed the driver and left 9 people in a critical condition. England have been emphatically beaten by 253 runs in the second cricket test with New Zealand at the Oval. The much-changed hosts were blown away by seamer Matt Henry, who picked up 7 wickets in the second innings. Standing captain Joe Root says the players that stepped up for England this week deserve a good bit of credit.
5: I think there was a huge amount of good that happened throughout the 5 days. We just have to do things better for longer. Normally when you make your debut, it's one guy coming into that space, but for a number of guys to be right at the front of their careers and give a really good account of themselves, credit to them as players.
3: Ben Stokes and Gus Atkinson have been withdrawn from county duties and are expected to return for Thursday's final test. And a warning for extreme heat has been extended to 4 days starting tomorrow. The Met Office has issued an amber extreme heat alert for parts of central and southern England and Wales. Temperatures could peak at 38 degrees. That's the latest. I'm Barry Weir.
6: The Classic Flashback is brought to you by Seth Lane & Hire. Visit Seth Lane & Hire, 119 Hall Lane, Bradford 4, or call 01274-744-299. That's 01274-744-299.
0: ऑलराइट जनाब, हम वापस आ चुके हैं अपने लास्ट ओवर में और हमारे साथ लाइन पे कौन मौजूद है, लेकिन उससे पहले
7: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Time on the dial is 2 minutes past one. A very good afternoon. Jee, assalamu alaikum.
8: Assalamu
0: alaikum. Walaikum assalam. Is waqt on air live humse baat kar rahi hain Seema ji. Seema ji, kaisi hain aap?
8: Alhamdulillah, theek thaak. Aap sunaye?
0: Main bilkul theek thaak. Aap sabki duaen. Jee, bataye kaisa din guzar raha hai?
8: दिन माशाल्लाह अच्छा है. एक तो वेदर भी अच्छा हुआ है. आई नो काफी लोगों को कंप्लेन हो जाती है गर्मी है गर्मी है गर्मी है, लेकिन गर्मी भी आई थिंक चाहिए हमें.
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी को भी उतना ही एंजॉय करना चाहिए जितना हम दूसरे
8: सर्दी को. वैसे हम लोग वो बोलते हैं ना, नाशुक्रे हैं, जैसे किसी हाल में हम कुछ नहीं है. सर्दी होती है तो साहब ओ बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, बारिश है बारिश है, लेकिन अगर ये चीजें ना हो तो ये हमारे लिए अच्छी नहीं है ना. तो इसलिए कोशिश करें कि हर मौसम को एंजॉय किया जाए.
0: ये बात बिल्कुल आपने ठीक है, बड़े नाशुक्रे हैं. पहले हम कहते हैं शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, जब शादी हो जाती है
8: शादी हो जाती है फिर बोलते हैं शादी की क्यों है. इससे तो हम कुंवारे ही अच्छे थे.
0: इससे अच्छा तो हम कुंवारे ही ठीक थे.
8: वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए
0: वो भी पछताए. तो ये जो बहस है ना, शादी की जाए ना की जाए, ये मेरा ये चलती रहेगी जब तक सारी.
8: आई थिंक तो सिर्फ शादी नहीं काम ना, हर चीज को लेके हम लोगों को कम्प्लेन होती है, हर चीज को. शादी तो एक बात की चीज है, शादी से पहले बहन भाइयों से कुछ ना कुछ है जी, दोस्तों से शिकायत होगी है जी, ये है दोस्ती ये है, मतलब हर चीज से हम लोग जो है ना कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं.
0: बिल्कुल सही. तो
8: मैं इसी चीज को अच्छा आज लेके आई थी कि हम लोग ये कभी किसी को शुरू कर देते हैं कि उसने ये किया तो उसका ये होगा वो होगा. अब मैंने अपनी अभी का एक्सपीरियंस से यही अगर मैं बोलूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि आप सब कुछ वक्त पे छोड़ दें.
0: सही है, बिल्कुल सही है.
8: वक्त बेस्ट जवाब है सबके लिए.
0: बहुत खूब.
8: बजाय हम लोग गिले शिकवे करें और जो आज आपने टॉपिक रखा था शादी वाला भी, तो वही बात है ना कि हम लोग कंप्लेन नहीं हमारी फिनिश होती. हम किसी हाल में खुश नहीं है, चाहे वो वेदर से लेके सेहत से लेके खाने पीने से लेके किसी भी चीज में हम लोग खुश नहीं है. हम लोगों ने ना अपने आप के लिए ना कोई आगे और कि वो ऐसा है तो हम ऐसे क्यों नहीं है, ये चीजें हमने इतनी कर दी है ना कि जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है।
0: आपने इतनी अच्छी बात की है नसीमा जी, इतनी अच्छी बात की है, यकीन जाने कि मैं 100% उससे एग्री हूँ कि वक्त पे छोड़ दो,
8: वक्त पे छोड़ दो, वक्त बेस्ट जवाब है हर चीज के लिए,
0: हर चीज के लिए।
8: हम लोग जितना मर्जी किसी से कंप्लेन कर लें कि उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ ये हो वो हो, लेकिन उसके साथ होगा जरूर, लेकिन होना उसी टाइम है जिस वक्त अल्लाह ताला ने उसको सबक देना है ना। एक वक्त मकरर किया हुआ है अल्लाह ताला ने हर चीज के लिए।
0: और मैं इस बात पे बहुत ज्यादा यकीन रखता हूँ कि अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा।
8: हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अच्छा भी कर रहे होते हैं ना, लेकिन बुरा हमारे साथ होता है, लेकिन उसके लिए भी वो अल्लाह ताला ने कुछ हमें सबक देना होता है, तो वो हम लोग बोलना एकदम से ना शुक्रे हो जाते हैं कि बेसब्रे हो जाते हैं, मैं बोलूंगी ना शुक्रे भी नहीं बेसब्रे हो जाते हैं कि हमने तो अच्छा किया तो हमारे साथ क्यों नहीं हुआ। तो ये चीजें हैं कि वक्त पे छोड़ दे तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। आज दो चीजें डिस्कस, तीन चीजें डिस्कस करूंगी। एक तो वेडिंग, तो मैं कहती हूँ कि आजकल वही बात है, फिर आ जाती है बेसब्रे पे, बेसब्रेपन पे आ जाती है ना। आजकल मर्दों में सब्र रहा है ना, आजकल औरतों में सब्र रहा है। तो पहले जमाने में रिश्ते निभाने के लिए ना तो एक तो लाजमी करता था कि नहीं चलो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आजकल क्या है कि हम लोग बस बोलते हैं कि हम ही हम हैं, अगले ने ऐसा किया तो किया क्यों।
0: ये जो
8: ईगो हमारी आ गई है,
0: बहुत बड़ी,
8: और वो इस ईगो में हम लोग अपने बच्चे भी भूल जाते हैं कि उनका क्या होगा।
0: True.
8: और बाद में फिर वो पछताना पड़ता है कि हमने क्या कर दिया, लेकिन उस टाइम फिर सब कुछ हाथ से निकल जाता है। तो मैं बेस्ट यही है कि मर्दों को भी बोलूंगी औरतों को भी बोलूंगी कि प्लीज सबर का दामन मत हाथ से जाने दें, रिश्तों को देखें, क्योंकि रिश्ते बार बार नहीं मिलते।
0: बहुत खूबसूरत।
8: मेरे हिसाब से पहला रिश्ता जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए चुना होता है ना, वो ही बेस्ट है। हम उसकी जगह किसी को नहीं दे सकते, तो क्यों ना हम उसी में बर्दाश्त करें, सब्र करें। एक वक्त आता है कि आप फिर समझते हैं कि नहीं वाकई हमारे लिए ये अच्छा था,
0: हमारे लिए अच्छा था। और
8: बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, लेकिन अगर आप देखें अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को देखें, बहन भाइयों को, कि ये रिश्ते भी हमने साथ रखने हैं, तो आई थिंक सो के एक टाइम आता है कि अगला भी समझता है कि वाकई नहीं मैंने गलत किया था, गलत हूँ।
0: चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती है,
8: बेहतर होना शुरू हो जाती है।
0: सही कह रही है। और आपको कोई भरोसा नहीं है, आपको क्या पता जो दूसरा रिश्ता बनाने जा रहे हैं क्या वो भी कामयाब हो?
8: क्योंकि मैं इस चीज में हूँ, मैं बाहर कामों में पड़ी हूँ ना, तो मैंने देखे हैं ये मेरी मतलब जो जिन्होंने ये दूसरे किए हैं ना, वो ज्यादा परेशानी में दूसरी टाइम पे गुजरेंगे। और ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये लोग समझते नहीं है, लेकिन जब दूसरे पे पड़ते हैं फिर वो दूसरे में ज्यादा फंसते हैं कि वो अब कुछ करेंगे भी तो लोगों ने बोलना है कि तुम्हारे लिए तो पहले भी ये था, अब और भी ये है, तो तुम रॉन्ग हो। तो बेस्ट ये है कि बहुत ज्यादा नहीं मैं करूंगी कि कोई आपको इतना डिस्क्रेट कर रहा है तो आप उसको बर्दाश्त करें, नहीं, लेकिन अगर आप कर सकते हैं बर्दाश्त, अगर इतना सीरियस बात नहीं है तो प्लीज प्लीज कोशिश करें कि इसको निभाएं।
0: बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात।
8: और दूसरी, आज फादर डे भी है तो
0: बहुत अच्छा किया आपने मेंशन कर दिया
8: फादर डे। हाँ जी, तो बाप का तो कर्ज, माँ बाप का कर्ज तो हम लोग अदा कर ही
0: नहीं कर सकते।
8: हम लोग उस टाइम समझते हैं जब हम खुद माँ बाप बनते हैं। तो मेरे पापा तो है नहीं है, तो वो जहाँ भी सुन रहे होंगे तो उनके लिए दो लाइनें गाना चाहूंगी।
0: जरूर जरूर।

0: होंगे,
1: जरूर सुन रहे होंगे, बिल्कुल सुन रहे होंगे,
0: को भी देख रहे होंगे, तो मेरी तो दुआ है कि वो जहाँ भी है अल्लाह पाक उनको आला मुकाम अता फरमाए।
1: आमीन।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे थे। कभी उन्होंने मतलब हम लोगों को ये बेटियों बेटों का मसला चलता तो उन्होंने हमेशा हमें बेटा ही बुलाया, कभी नहीं बोला कि बेटी।
1: मैं भी कुछ कहना चाहूँगा, मेरे वालिद साहब भी जो हैं वो हयात नहीं हैं, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला, बल्कि जितने भी लोगों के जो वालिद या वालदैन जो हैं इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और बहुत अच्छा किया सीमा जी आपने ना ये मेंशन कर दिया फादर्स डे के हवाले से। देखिए मैं सुबह उठो ना तो मैंने क्या क्या, हम भूलते तो नहीं है अपने वालिद को या वालदा को जब वो चले जाते हैं,
0: लेकिन हम लोगों को एहसास होता है जब हम लोग उठते हैं मेहनत करते हैं ना, तो फिर हमें एहसास होता है कि हम लोगों ने कितनी अय्याशी में जिंदगी गुजारी। हाँ। है हम लोगों को कुछ परवाह नहीं होती थी हमारे माँ बाप उस टाइम, स्पेशल मेरे अबू तो प्रदेश में रहे सारी जिंदगी, तो मुझे वो चीज ज्यादा होती है कि हम लोग इधर खुशियां मना रहे होते हैं वो अकेले होते थे उधर, तो ये चीजें अभी क्योंकि हम लोग खुद इस चीज से गुजर रहे हैं तो हमें ज्यादा एहसास
1: होता है। और वो जो जमाने थे वो और थे, हमारे जमाने फिर बेहतर है,
0: बेहतर है, हम लोग कॉन्टेक्ट में है। उस टाइम तो कॉन्टेक्ट भी नहीं होता था, साल दो साल के बाद या महीने में एक बार फोन आता होता था, मुझे याद है अभी
1: ऐसे ही
0: है। महीने में एक बार फोन आता होता था कि हर हरियत पता लगती, क्योंकि घर घर में फोन नहीं थे उस टाइम। और मुझे ये भी याद है कि उस टाइम नेबर्स के घर में कभी कभी हम लोग सुनने जाते थे।
1: ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी हिम्मत
0: तो ज्यादा टफ थी, लाइफ
1: बहुत टफ थी, बहुत। उनकी हिम्मत को हम जो है वो दाद देते हैं, उनकी जुरत को, हौसलों को हम दाद देते हैं। वो लोग बहुत अजीम थे, बहुत बड़े थे,
0: बहुत अजीम थे। मुझे याद है कि अबू मेरे आते थे दो साल के बाद, दो सूट सिलवा के लेके जाते थे सिर्फ ईद के लिए, कहते थे मुझे तो चाहिए पहनने ही नहीं होते, फजूल खर्ची नहीं करनी, आते थे वही सूट पकड़ के उठा के लेके आते थे। ये मुझे याद है ये चीजें। हम लोग तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी यासी से जिंदगी गुजारे हैं,
1: ऐसे ही है।
0: लेकिन वो जमाना टफ था, तो अल्लाह पाक उनके सबके दर्जात बुलंद करे और हम लोगों को हिम्मत दे के उनको याद रखे। और कुछ नहीं हम लिखा सकते, लेकिन चले दुआ में हम लोग शामिल कर सकते हैं उन्हें और आगे अपने बच्चे। आजकल के बच्चे तो इतना वही बात है कि कंप्लेन नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चों को भी उनके सर पे जब पड़ेगी तो वो भी उनको भी एहसास होगा कि हाँ हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया।
1: बेशक बेशक, इतनी अच्छी ये बातें हैं।
0: बाकी मुहर्रम का जो महीना है इतना अल्लाह पाक वो भी हम लोगों को उनकी कुर्बानियां याद रख के, तो उनके जैसे तो हम लोग हो ही नहीं सकते, लेकिन कोशिश करें कि जिस मकसद के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी उस दीन की एटलीस्ट हम लोग थोड़ी कदर कर ले।
1: सही सही, क्या बात
0: है। कहते हैं कि हसन और हुसैन और ये गाजी दीन पे वारे हंस हंस के, दीन में कुछ था, दीन के लिए कुछ करना था तो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन
1: इतनी
0: कुर्बानियां
1: निकाले, इतनी कुर्बानियां दी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे
0: ही। चले थैंक यू, आज इस प्रोग्राम के तहत चले थोड़ा टाइम मिला मुझे भी तो अपनी दिल की बातें कर दी।
1: नहीं नहीं इंशाल्लाह,
0: प्रोग्राम आपका अच्छा,
1: थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप बिजी होती हैं, लेकिन थैंक यू सो मच यार, इतनी आपने अच्छी बातें कर दी हैं छोटे से इतने
0: वक्त में। कोशिश यही मेन, मैं प्रोग्राम में भी गिले शिकवे होते रहते हैं, लेकिन मेन यही बोलूंगी कि गिले शिकवे सब सब कहीं ना कहीं जगह पे हम लोग गलत हैं। हम दूसरों को तो ब्लेम करने में फटाफट कर देते हैं कि फलाना ये करता है, ये ना करे, वो ना करे, लेकिन जब आप खुद तक सोचे ना तो हम भी काफी काफी जगह पे गलत होते हैं।
1: बिल्कुल ऐसा ही,
0: हमारे में भी ईगो अक्कड़ आ जाती है कहीं ना कहीं किसी, तो अगर ये अक्कड़ ये ईगो निकाल देना तो आई थिंक सो वक्त पे छोड़ दें तो वक्त सबसे बड़ा मरहम है।
1: बेशक बेशक ऐसा ही है।
0: दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह फिर कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीक।
1: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। इतनी अथेंटिक बातें जो हैं वो सीमा जी ने आज की हैं, इतनी अथेंटिक बातें की हैं, खसूसन जब वो अपने वालद साहब के हवाले से बातें कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी की कहानी वो बता रही हैं। एग्जैक्टली सेम वर्डिंग, सेम उस जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, मेरे वालद साहब भी बिल्कुल ऐसे ही किया करते थे। और मुझे, मैं ऐसे लोगों को मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ जो कि अथेंटिक होते हैं, जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जो जो उनकी ज़िंदगी में हुआ, जो उनके अंदर वो एक वो खालस हैं वो अंदर से, और वो आके वो इतनी उनके अंदर हिम्मत होती है कि वो आके माइक पे वो बात करते हैं। मेरे बहुत सारे लोग देखते हैं इतने बनावटी होते हैं, जी हम तो ये, हम तो वो, हम तो ऐसे हो रहे, सब झूठ, सब झूठ, वाई, क्यों इतनी बनावटी बातें आप लोग करते हैं जब आप दूसरे बेवकूफ नहीं होते हैं, दूसरों को पता होता है. ये होता है ऑथेंटिक. देखें कितना आप जब सुनते हैं आप रिलेट करते हैं इस चीज़ों को और आपको पता है कि ये सच बोल रही हैं. ऑथेंटिक बातें और उन बातों के अलावा भी जो उनके मफहूम थे, जो उन्होंने मैसेजेस दिए. थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत सारी रिस्पेक्ट है आपके लिए. छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, आते हैं लौट के.
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत.
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक. गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं. टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें. मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1. टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303.
4: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
5: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
4: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
5: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
4: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect, and succeed.
1: That's true. Are you streaming on TikTok live or thinking about getting started? Join the Sunrise Creator Network, a UK TikTok live agency helping creators grow their audience, develop their brand, and get promoted on Sunrise Radio. To find out more and apply, visit the Sunrise Creator Network page at www.sunriseradio.radio. That is www.sunriseradio. So I always skip the radio. So that's www.sunrise.radio. Right, janab, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं हमारे एक और कॉलर्स, उनसे भी हम बात करते हैं. अच्छा, मेरे पास अब इतनी सारी बातें जहन में जमा हो रही हैं कि देखिए, हर बंदा मुख्तलिफ है. हर बंदे की प्रोसेस चीज़ों को वो मुख्तलिफ तरीके से करता है. और अगर मैं अपनी बात करता हूँ, क्योंकि मैं दूसरों के हवाले से बात नहीं करना चाहता, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं चीज़ों को इस तरह से प्रोसेस करता हूँ कि जब मुझे पता होता है कि अगला बंदा झूठ बोल रहा है, अगला बंदा जो चीज़ें आपको बता रहा है, मैं उसके मुँह पर जाके उसको नहीं बोलूँगा, ना मैं उसके पीठ पर जाके उसकी बुराइयाँ करूँगा. या अगर किसी ने मेरे पीठ पीछे कोई बात की और किसी और बंदे के थ्रू मुझ तक वो बात पहुँची है, तो मैं जाके उस बंदे को जो है कन्फर्म नहीं करूँगा. मैं सिर्फ अल्लाह पर छोड़ देता हूँ. मैं सिर्फ कर्मा पे यकीन रखता हूँ. मैं सिर्फ वक्त पे, जो सीमा ने बात की थी, मैं वक्त पे यकीन रखता हूँ कि यार अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है ना, तो आपको आपके साथ अच्छा होगा. और जिस जब कोई आपके साथ बुरा करेगा ना, तो उसके साथ वैसा ही होगा. अच्छाई बुराई आपको, ये वही है, ब्लैक एंड वाइट है चीज़ें. ये आप अच्छा करेंगे, आपके साथ अच्छा होगा. मैं किसी के साथ बुरा करूँगा तो मुझे बुरा ही मेरे साथ भी होगा, मेरे पास वो बुराई लौट के आएगी. तो इस मैच्योरिटी पे हमको चला जाना चाहिए. मैं सबको यही तलकीन करूँगा कि जाके लड़ाइयाँ करना, किसी के साथ बातें करना, किसी को सुनाना, ये वो, अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो अल्लाह पे छोड़ दें, बोले अल्लाह उसका भला करे, बाकी देखें अल्लाह की लाठी पे आवाज़ होती है. जनाब चलते हैं अपनी लाइन पर, देखते हैं हमारे साथ कौन सी हस्ती मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम.
6: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: जी वालेकुम अस्सलाम. आयशा जो है दोबारा से हमारे साथ मौजूद है. आयशा कैसी हैं आप?
6: ठीक हूँ मैं कामरान. एक्चुअली मैं पहले जो कॉल पे आई थी, तो मेरा मेन मकसद था मुहर्रम के महीने पे बात करना, टॉप का हमारा कहीं और चला गया, तो वो फिर लंबी कॉल होगी, तो फिर मैं ये ड्रॉप करनी पड़ी. तो आप दोबारा मैं आई हूँ. मुहर्रम का महीना है, गम का महीना है, और ये हम सब के लिए है, ठीक है. और यहाँ तो चलो बंदे कानून को फॉलो करते हैं, यहाँ तो इतना मसला नहीं है, पर फिर भी ये पाकिस्तान में भी सारे सब जगह जिधर जिधर भी ये रेडियो भी नशियात जा रही है, ये सब के लिए पैगाम है कि हम सब मुसलमान हैं, एज ए मुसलमान इस मुहर्रम के महीने में जलसे जुलूस होते हैं, शिया कम्युनिटी बाहर जाते हैं, अगर कोई मिनी गाड़ी की गलत जगह पार्क हो गई है या कोई और मसला है, सब्र करो। एज ए मुसलमान हम सबका फर्ज है कि इस महीने का इकराम करना, ये गम का महीना और हम सब के लिए है। तो वो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो औलाद है वो हम सब के लिए काबिल इत्राम है और उन्होंने दीन के लिए अपनी जाने दी है, ठीक है। ये अल्लाह जज करेगा, अल्लाह का काम है फैसला करना, कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, ये हम सब का काम नहीं है।
1: बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात।
6: अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं ना तो हमारा हक है कि उनकी आलो औलाद पे भी ईमान रखना, और वो हमारी अपनी जाने चाहते दे के हम लोगों को इस्लाम को जिंदा करके जिए। तो इसलिए मिनी की ये नफरत बाजी या डिलाक बाजी या इस तरह के जुमले ना फैलाओ, नफरत ना फैलाओ, इंसान बनो तो कौम बनो।
1: अच्छा, आपने इतनी अच्छी बात कह दी है ना, अब हम यकीनन मैं इसको बड़े ऑब्वियस वर्ड्स में नहीं बयान करूंगा क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हम आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूं, हमें पता है हम क्या बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा जो आपने बात की है ना कि लोग खुदारा ये अल्लाह ताला पे छोड़ दें कि क्या किसने जन्नत में जाना है, कौन क्या है, हम कौन होते हैं ये फैसला
6: करने वाले। मेरे भाई ना पूछो, अब मस्जिदों में बैठ के मिंबर पे बैठ के ना तो ऐसे ऐसे बातें निकल रही है ना और ऐसी ऐसी नफरत फैलाई जा रही है ना कि हम एज ए कौम नहीं बन रहे, एज ए इंसान भी नहीं रहे।
1: शर्म आती है, बिल्कुल सही कह रही हैं,
6: एज ए इंसान भी नहीं रहे। दूसरे पे टारगेट कर रहे हैं मगर अपनी सिमत कोई दुरुस्त, दूसरे को कहते हैं कि वो सच नहीं बोल रहा, दूसरे को कहते हैं कि ईमानदार नहीं है, दूसरों को कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा है मगर खुद झूठ भी बोलते हैं, बेइंसाफी भी करते हैं और माल में मिलावट भी करते हैं। हम सब जो करें वो ठीक है, दूसरा हमको फीसा मिले, जब हम खुद ही अपनी सिमत दुरुस्त करने के हक में नहीं है तो दूसरा हमारे साथ किस तरह से अच्छा रहेगा। कतरे कतरे से तालाब बनता है और तो तालाब से समुद्र बनते हैं, तो हम अपना अपने हिस्से का जो कतरा है वो साफ करें, उसको दुरुस्त करें, अपना कदम सही उठाएं।
1: बेशक बेशक,
6: ये है ना कि हम दूसरे पे टारगेट कर रहे हैं, अपने पे अपनी बुराइयों में नजर ही नहीं आती।
1: अपना
6: हम कहते हैं औलादें बिगड़ी हुई हैं, शोर बिगड़े हुए हैं, बीवियां बिगड़ी हुई हैं, जब हम खुद ही अपने हलाल हराम की किरकिरात नहीं करेंगे तो हमको फरफरीशें तो नहीं मिलेंगी ना। ये दुनिया है, दुनिया में इंसान और इंसान खताकार ही होती है।

0: सा रसूल किस मुश्किलों से गुजरे थे। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए इन लोगों का कि जिन्होंने हमको बताया कि हमारा दीन क्या था।
1: अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत एक चीज़ आपने की कि ये महीना हमें सब्र का जो है दर्स देता है, और आपने बात की कि गाड़ी पार करने के हवाले से एक बात की कि आप यहाँ पे, मैंने ये देखा है कि लोग एक दूसरे को रास्ता नहीं देते, आप रोड पे निकल जाएं और इतना सब्र नहीं है किसी के अंदर कि हम दो सेकंड के लिए जो है वो रुक जाए ताकि एक बंदा जो है वो सड़क पे आना चाह रहा है तो उसको हमें इजाज़त दे दें। पार्किंग की तो बात ही आप छोड़ दें कि लोगों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ दुनिया मर रही है आपस में लड़ लड़ के, मेरे घर के आगे क्यों पार्क की है तुमने गाड़ी।
0: गलत बात है। सब्र का महीना है, सब्र करो और उस चीज को फील करो कि जिस दिन को आप आज हम फॉलो कर रहे हैं, जिस दिन से चल रहे हैं, तो उनका कितनी शहादतें देने का मकसद क्या था।
1: और मैं खसूसन मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, ना मैं टारगेट कर रहा हूँ किसी खास कम्युनिटी को, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी जो हम जिससे शायद कहीं ना कहीं पे जाकर रिलेट कर जाते हैं, उनका मैंने देखा है कि उन्होंने तो रास्ता देना ही नहीं है ना, वो तो बस किंग समझते हैं, रोड पर आ गए हैं, हम हैं किंग और हम जो हैं रोड अब हमारे हैं। ये जो होती है ना सब्र के साथ साथ जो आप कुर्बानी सेक्रीफाइस करते हैं, इसका बहुत बहुत अहमियत है अल्लाह ताला के हुजूर, तो प्लीज आप थोड़ा सा किसी को।
0: चलो मैंने, मेरे भाई तेरी बात में टोक रही हूँ, अगर हम चलो मुहर्रम का महीना, सब्र का, सब्र तो है ही है, इसको बात को भी काट दो, एज इंसान तो हमारा आंख बनता है ना, वो भी नहीं बनता। जब कमरान में बची थी तो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है कि जब ये महीना आता था लोग मंगनियां नहीं करते थे, मेहंदी नहीं लगाते थे, निकाह नहीं करते थे, कोई फालतू बात ऊंची नहीं करते थे, कोई रंजकी नाराजगी होती थी तो कहते थे मुहर्रम का महीना शुरू हो गया, बाद में देखे जाएगी लड़ाई झगड़े, पहले बंदे बड़ा खोरी होते थे, कहते थे कि मुहर्रम का महीना है इसमें कोई ऐसी ऊंची बात नहीं करनी, डोल डमका नहीं करते थे, और क्या सुन्नी क्या शिया, हलवा होता था वो बांटते थे, पानी बांटते, शरबत बना के, गुड़ वाला शरबत, गुड़ वाला भी नींबू डाल के वो शरबत देते थे सबको, पानी, कहते थे इस महीने में कोई ऊंच बात नहीं करनी, ऊंची नहीं करनी। और जो मिनी हमारे महल्ले में भी इस तरह होते थे, तो जब मुहर्रम का महीना होता था लोग मजलिस सुनते थे, चाहे मातम करें या ना करें मजलिस जरूर सुनते थे,
1: ऐसे ही
0: लोगों को खाने देते थे, जो मजलिस मिनी गलियों में उस वक्त कच्ची गलियां होती थी, गलियों में जा रहे हैं उनको पानी दिया करते थे, उन पे पानी गर्मियों में डालते थे, इत्राम करते थे,
1: और
0: मजलिस वाले जा रहे हैं।
1: और एक चीज मुझे
0: हम
1: याद
0: लोगों को क्या हो गया है कि हम छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं।
1: और एक और चीज़ मुझे याद आ रही है कि जब नौवीं दसवीं मुहर्रम होती है तो रोज़ा रखा जाता है, और अभी भी रखते हैं लोग, और
0: हम भी रखते हैं रोज़े,
1: तो ये
0: ऐसे मुसलमान क्या नवासा है रसूल का गम हम पर लाजम नहीं है।
1: बिल्कुल ऐसा ही है,
0: मुझे तो हैरत होती है कि हम किस कीमत जा रहे हैं। तो यहाँ तो चलो फिर भी बंदे इतनी नहीं करते हैं क्योंकि अपने अपने काम से लोग अर्ज रखते हैं, कानून यहाँ का कुछ नहीं करने देता है, मगर हमारे जिधर जिधर भी ये पाकिस्तान में ज्यादा शरारती, खास करके मुहर्रम के महीने में ज्यादा शरारत बनती है, तो अगर इस तरह के अगर कोई नशरियात में टारगेट नहीं कर रही, पर एज ए इंसान मीनिंग एज ए मुसलमान सब्र करो, सब्र से रहो, सिर्फ सब्र का महीना है, गम का महीना है, हम इसको फील करें, अगर हो सकता है तो पढ़ें, दुआ मांगें उनकी कुर्बानियों का, मिली का उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी होती तो हम भी शायद पता नहीं किस लाइन पे चल रहे होते,
1: सही बिल्कुल,
0: शायद हम भी आप कलमा गो ना होते,
1: बिल्कुल सही।
0: अगर हम अपने माँ बाप या बहन भाई या इन प्यारों को याद रखते हैं कि वो जुदा हमसे हुए हैं तो वो तो नवासा रसूल थे, वो तो कुंभा रसूल थे,
1: सही है,
0: तो उससे पहले हम इंसान हैं। तो ये बातें हैं कि यज करना छोड़ दो, आर्गुमेंट करना छोड़ दो कि ये क्या क्या हो रहा है, सब्र करो और वक्त पे छोड़ दो, तो अल्लाह सब जना बेहतर कर देता है। तो ये जड़ने लड़ने झगड़ने से नफरतें ही फैलती हैं, नफरतें ना फैलाओ, दिलों में मोहब्बत पैदा करो, किसी को अगर मोहब्बत को पेश आ रहा है उसकी मोहब्बत को दिल थाम के कबूल करो, ये नहीं कि अगर कोई मोहब्बत दे रहा है या कोई खलूस दे रहा है तो उसे लानत मलामत करना छोड़ दो कि दूसरा उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दो, ये बात ना करो। देखो ये यहाँ इन लोगों ने हम लोगों के दीन को फॉलो किया, तेज जाओ इतने

0: प्यार से खलूस से बात करते हैं, स्माइल देते हैं, बात करने का दिल भी करता है कि हम लोगों में क्यों नहीं है।
1: हम लोगों में एक बड़ी बात है कि आप किसी को मिलते हैं ना, शॉपिंग आप चले जाते हैं, कभी किसी ने सलाम नहीं किया, स्माइल तो करना बहुत दूर की बात है।
0: और इन केस अगर कोई स्माइल कर भी दे तो दूसरे टाइम उस पर टाइटल लगा होगा कि इसमें कोई वो एक ही गंदी बात रहेगी ये जहन में, कोई और बात नहीं है। कोई देख ले किसी की तरफ, कोई सलाम अदा कर दे या कोई शुक्रिया अदा कर दे, हाँ कुछ चल रहा होगा, वो क्या चल रहा होगा, क्या हमारे इतनी जहन इतनी सोच पस्त हो चुकी है।
1: मैं बिल्कुल लाजवाब हो जाता हूँ जब ऐसी बातें होती है, मुझे समझ नहीं आती है कि कैसी सोच कहाँ से डेवलप हो गई है चीजें।
0: हम सब इंसान है, हम सब खताकार हैं, फरिश्ते जन्नत में होंगे, यहाँ जन्नत में दुनिया है, इस दुनिया में फरिश्ते नहीं है, तो मगर यह है कि हम अमल तो कर सकते हैं ना।
1: सही,
0: तो ये मेरी भाई बातें हैं कि मैं आगे पीछे मैं बहुत कम कोशिश होती है बाहर निकलूं, फिर जब होता है मैं ताजी हवा शवा पार्क में चली जाती हूँ या बाहर कुछ शॉपिंग जब मैं जाती हूँ या इधर उधर की बातें सुनती हूँ या देखती हूँ, तो मेरा कसम से कामरान मेरा इतना दिल दुखता है कि एज ए मुसलमान इतना दिल दुखता है कि हम किस कीमत जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, हमारे पे ये दुख आया। देखो आप कोई किसी को भी पूछो ना, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, गाड़ियां हैं, घर है, सारा कुछ है, लोगों की जिंदगियों में सुकून नहीं है,
1: सुकून नहीं है।
0: जिससे भी पूछो वो कहेगा कोई पता नहीं है क्या रीजन है, मगर दिल बेचैन है,
1: बेचैन है।
0: नमाजों में भी दिल बेचैन है, मौलवी को पूछो तो वो भी कहेगा पांच वक्त नमाज भी पढ़ेगा, तजद भी पढ़ेगा, कहेगा पता नहीं दिल खोया खोया है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये अजाब है। दिल का सुकून खुदा के हाथ में है, जब हमारी सिम्मत हमारे अमाल दुरुस्त नहीं है तो फिर अल्लाह ताला चेहरे का नूर भी छीन लेता है और दिल का सुकून भी छीन लेता है।
1: बेशक,
0: और मैं मेरी बात थोड़ी लंबी हो रही है, मैं किसी को मौका आज नहीं दे रही मुझे कामरान नहीं मिलेगा, कामरान का प्रोग्राम नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि मैंने टिकटॉक पे देखा है, तो एक मैंने बड़े दीनदार बुजुर्ग वो पाकिस्तान के हैं, तो मैं नाम नहीं मेंशन करूंगी, मगर वो बड़े, तो मैंने एक मसला था तो मैंने उस मसले के हिसाब से फोन किया, मैंने कहा पाकिस्तान में ज्यादा लोग दीनदार होते हैं तो चलो फोन मसला की, तो वो कहते हैं कि ये इस मसले का हल जिन्नात और मिनिक वो करेंगे ना, वो मोकल जो है उनसे पूछना पड़ेगा। मुझे गुस्सा आ गया, आप अपना नाम माँ बाप का नाम बताओ तो वो मसला उनसे पूछना पड़ेगा। मैंने कहा ये दीन का सीधा सीधा मसला है तो ये कमलात कहाँ से आ गए, कमलात वो जिन्नात कहाँ से आ गए, मुझे डर गया गुस्सा।
1: सही,
0: मैंने फिर करी करी वो आगे से मुझे धमकियां देना शुरू हो गए मौलाना कि मैं जिन्नात भेजूंगा तो रात को तेरे वो मरोड़ देंगे। मैंने फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने कहा जिन्नात शैतान की मुश्तरिका औलाद,
1: जिन्नात और शैतान की मुश्तरिका औलाद।
0: मैंने कहा ये दीन किस किस्म का सिखा रहे हो, अगर कोई मैं तो चलो मुझे थोड़ी नॉलेज है तो मैं तो आगे से फाइट बैक कर सकती हूँ, तो जो अगर सीधी साधी औरत है तो वो क्या करेगी, वो तो सोचेगी कि ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं ये तो दुरुस्त फरमा रहे हैं, तो
1: ऐसे लोग
0: सिखाना ही का
1: तो सीधे। आप सभी ने, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप सभी ने ऐसी स्टोरी सुनी होंगी कि ऐसे जो होते हैं मौलाना साहब वो देखे क्या क्या क्या करती है खवातीन के साथ, आप सभी को पता है, मुझे एक मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये जो ऐसे होते हैं जो काम सके करते हैं वो बहुत नुकसान करते हैं ख़वातीन का।
0: तो मेरे भाई में मेरे बात करने का मैं स्टोरी ये कभी ना सुनाती, इसलिए सुना रही हूँ कि लोगों ने दीन का उबादा पहन के वो लोगों के ईमान को खराब कर रहे हैं। तो अगर खास करके इधर तो बंदे फिर भी नॉलेज रखते हैं, टिकटॉक पे देखते हैं सारा कुछ, कुछ पढ़े लिखे भी हैं तो इधर तो इतना नहीं है, मगर पाकिस्तान में हमारी गांव की औरतें हैं जो ज्यादातर 97% औरतें मिनी पुरानी जो औरतें हैं वो दीन की उनको समझ नहीं होती, तो वो इन आमलों कामलों के चक्कर में पड़ जाती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अपनी इज्जत भी
0: कर जाता है, ईमान भी जाता है,
1: बिल्कुल इज्जत और ईमान दोनों बिल्कुल ऐसे ही है।
0: हाँ, और ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोगों का ईमान मिनी इज्जत तो खराब कर ही रही है ना, साथ पैसे भी लूट भी रहे हैं और नाल साथ ईमान भी खराब कर रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे जो भी बातें सुन रहे हैं ऐसे लोगों से बचो।
1: पता क्या, मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे टॉपिक्स मेरे जहन में आ रहे हैं ना कि एक एक टॉपिक को उठा के हम डिस्कस करें, एक प्रोग्राम करें, तो मतलब ये बातें होनी चाहिए, है ना।
0: सामी मेरे भाई, हम दुनिया को नहीं सुधार देते, हम चले जाएंगे।
1: डियर ओ डियर,
0: मैं तो दुखदा प्रबंधक करे क्या, तो फिर मेरा वो मुझे दम किया, मैं जिन्नात बेचूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैंने कहा मुश्तरी का औलाद जिन्नात और शैतान की, तुम सारे जिन बेच, मैं जिन्नों की माँ हूँ।
1: मैं जिन्नों की माँ
0: हूँ, आज जिन जीते हैं या मैं जीती हूँ।
1: मैं जीती हूँ या जिन जीते हैं तुम्हारे, वाह।
0: फिर बात कर गया तो मैंने बड़ा कसम से उसे स्नील किया, तो मैंने कहा आज दो चार हाथ हो गिरे, तो वो फिर उसका मेरा असर ये हुआ कि उसे मैंने जो फाइट बैक की है उसका असर ये, मैंने कहा मैं तेरा बंदोबस्त करती हूँ। तो वो फिर अब टिकटॉक पे दीन की बातें बताना शुरू हो गया है। जो पहले करता था वो वजीफे ये कर लो वो कर लो, पहले जो मालूमात वो ठीक नहीं दुरुस्त दे रहा था, अब उसने पता नहीं अंदर हो सकता है वो वही काम कर रहा हूँ, मगर ये है कि अब वो बगैर उसका मैं टिकटॉक देखा वो दुरुस्त हो गया है। तो ये है कि वो पहला कतरा बनो, कोशिश करो वो साफ पानी का पहला कतरा बनो, तो बाकी पता के रस्ते अल्लाह बनाता है। बंदा एक अच्छा कदम उठाए तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है।
1: सही हो गया, बहुत खूब।
0: तो यह है कि कोशिश करो अपनी तरफ से किसी का दिल जारी रहा हो, आपके मुसलमान अच्छा वो ही है जिसके अमल से, जिसके अल्फाज से, किसी के अल्फाज से किसी को, किसी के हाथ से किसी मुसलमान दूसरे इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। तो बाकी अगर जो दूसरा करता है तो वो तेरे वाली बात है कि सब्र करो, अल्लाह सब मामला तय कर लेगा,
1: अल्लाह मामला तय कर लेगा, बेशक ऐसे ही है।
0: तो बस मेरा कहने का यही मकसद था कि जो मैंने सुन रहे हैं, मैं प्रकट नहीं कर रही, फिर मेरी वही बात है कि मैं एज ए मिनी के सबक देने आई हूँ कि अगर कोई मेरी बात से अगर कोई किसी को समझ आ जाए तो मैं समझूंगी कि मेरा भी कुछ नेकी में हिस्सा हो गया है।
1: सही हो गया, नहीं अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, हमारे पास बातें करने को बहुत ज्यादा है लेकिन हमारे पास वक्त भी मुख्तसर है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई और ये आपने बात इस हवाले से की, क्योंकि ये बातें मैं खसूसन ऐसी बातों को मैं टाइम मैं खुद देता हूँ। सो थैंक यू सो मच
0: आपका, तुम खुद भी इस बात में क्योंकि तेरी बात लोग हैं, तुम खुद बोलो कि ये सब्र का महीना है और सब्र करो, ठीक है, कोई गाड़ी पार हो गई है, कोई इधर से मुंडा मार के गुजर गया है, इधर से गुजर गया है, सब्र करो, ये नहीं है कि पलट के बार जवाब देना है।
1: ठीक है, सही हो गया, आपका मैसेज पहुंच गया, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है, शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
4: दिस इज सनराइज रेडियो ऑन FM, DAB, ऑनलाइन एंड मोबाइल।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
2: All right, everyone, the time on the dial is 1:41. A very, very good afternoon. और जनाब जल्दी से एक कॉल लेते हैं और देखते हैं कौन सी हस्ती हमारे साथ मौजूद है इस लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या हाल है मेरे भाई
2: जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बाजी, आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक हैं? गजाला जो भी हमारे साथ ऑन एयर बात कर रही हैं।
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बस मैं वेट कर रही थी, सब्र से कर रही थी कि मेरी कहीं जगह फिट होती है कि नहीं होती।
2: नहीं नहीं, जरूर आपकी जगह जनाब हर वक्त मौजूद हैं हम यहाँ पे, आपकी जगह ही जगह, हर जगह पे सनराइज के जो प्लेटफॉर्म है
3: वो फिट हो गई। मैंने कहा चले कर ही देते हैं बात।
2: कैसी है तबीयत आपकी?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम, उसकी बड़ी मेहरबानी,
2: माशाल्लाह
3: उसने इतने ज्यादा कर्म किए हुए हैं कि हम लोग उनका शुक्र भी नहीं अदा करते।
2: बेशक, बहुत खूबसूरत बात की है आपने।
3: और पाक सबको अपने अपनी जगह पे अपने अपने हिज्जो मान में रखे, और अल्लाह पाक जो है ना वही सारे दस्ते बनाते ही वो।
2: बेशक बेशक ऐसा ही है,
3: बंदा तो हमेशा गलत रहेगा, तो गलत रास्तों में चलना तो कोई रास्ता नहीं है ना।
2: नहीं है ना, क्या बात।
3: और वो शैतान का काम है।
2: खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
3: मैंने कहा आपकी एक टॉपिक है
2: जी,
3: कि मैंने भी अपनी जिंदगी में यही देखा है कि जिन आदमियों ने अपनी बीवी और बच्चों के साथ धोखा किया है ना, उनका एंड बहुत बुरा होता है।
2: सही, ठीक।
3: एंड इतना बुरा होता है कि कहना नहीं चाहिए कि वो पहले इतना शेर बना होता है और ये होता है, और आखिर में वो बुरी बात ही है कि माइंड ना करें, लेकिन उन मर्दों के लिए है कि आखिर में ऐसे होते हैं जैसे कुत्ते के सर में कीड़े नहीं पड़े होते।
2: अल्लाह माफी, अल्लाह माफी।
3: नहीं, उन मर्दों, उन गंदे मर्दों का हाल है।
2: सही कह रही हैं आप, एक्सपीरियंस।
3: और मैंने अपनी आंखों से देखा है,
2: दुनिया देखी है आपने, बिल्कुल सही है, सही।
3: मैं कोई ये गलत बात जो है ना, मैं उनके लिए नहीं, जो गलत मर्द है ना, जो अपनी बीवी और बच्चों को टाइम नहीं देते या उनका ख्याल नहीं रखते, बाहर रखते हैं, उनका एंड सबका ये होता है।
2: बिल्कुल, आप जनरलाइज नहीं करिए यहाँ पे, ना आप किसी का नाम लेके बात करिए।
3: नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे किसी, मैं किसी को इतना जानने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये समझ लो कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ।
2: एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बिल्कुल सही है, ठीक है, सही हो गया।
3: क्योंकि जो जो मैंने दुनिया में देखा हुआ है ना,
2: सही है,
3: वो ये है। और ये जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, थोड़ा सा टाइम होता है, उसको अच्छा गुजारेंगे तो आपका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा गुजरेगा।
2: अच्छा,
3: अगर उसको बुरा गुजारेंगे तो आपके बुढ़ापे में सब कुछ आपको रिटर्न बैक होता है।
2: बिल्कुल सही है। अच्छा, मर्दों के हवाले से बातचीत हो रही है अब, चूंकि मैं भी ऑब्वियसली, लेकिन मैं किसी के हवाले से बात नहीं करना चाहता, मैं अपनी सोच की अगर मैं बात करता हूँ, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ की एक वक्त होता है, एक उम्र होती है, जब आप उस उम्र से जब आप आगे आ जाते हैं तो फिर इंसान को अपनी सोच शायद बदल लेनी चाहिए। और जब आप अपनी सोच बदल लेते हैं, यकीन जाने अभी सब्र की बातें हो रही थी और अब मामलात अल्लाह के सुपुर्द करने की बातें हो रही थी, तो यकीन जाने आपको एक सुकून आ जाता है, आपके अंदर ठहराव आ जाता है, आप रुक जाते हो। और मैं समझता हूँ ये बहुत समझने वाली बात है कि वो ठहराव आपकी तबीयत में, खासतौर से मर्दों के हवाले से, एक ठहराव आना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे मसलों का हल निकल आता है खुद ब खुद ही।
3: ये एक ना थोड़ा सा टाइम होता है, और अगर बंदा उस वक्त अपने अहकाम और अपने रब के अहकाम की पैरवी करे ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वक्त तो बहुत जल्दी गुजर जाता है।
2: सही कह रही है, सही कह रही है।
3: और उस वक्त वो जो बंदा संभला होगा ना, उसने अपनी पूरी लाइफ संभाल ली होती है और अपना बुढ़ापा सुकेयर कर लिया होता है।
2: हाँ, देखिए गलतियां हम सब करते हैं, हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अपनी गलतियों से आप सीख लें और अपने आप को संभाल लें।
3: लेकिन यही है कि बस ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो दीन से और अल्लाह के अहकाम से दूर होते हैं।
2: ठीक है,
3: अदरवाइज नहीं होता। बड़े अच्छे अच्छे मर्द है, हमने अपने बाप को देखा, भाइयों को देख रहे हैं, बच्चों को देख रही हूँ,
2: माशाल्लाह माशाल्लाह
3: अल्हम्दुलिल्लाह। एक वो कहते हैं ना, एक मच्छी दाग नु गंदा कर देंगी।
2: हाँ अच्छा, नहीं ये आपने बड़ी अच्छी बात की।
3: हाँ
2: आपने बड़ी अच्छी बात की। मैंने जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन मुशाहदात है, मैंने ये देखा है कि अब मर्दों की सोच में भी बहुत सारी चेंजिंग आ रही है। हम देखिए, मैं फिर वही बात आती है, अटैक नहीं हम कर रहे हैं, जनरेशंस पे हम बात करते हैं कि एक अल्फा, एक होता जी अल्फा मर्द है, माचो मैन है, यू नो डोमिनेंट है। लेकिन अब जो जो जनरेशन अब आगे आ रही है वो बड़ी मॉडर्नाइज हो रही है, उनकी सोच बड़ी मॉडर्न हो गई आज के मर्द की। मैंने ये चीज़ देखी है। मैं बल्कि अपनी बात करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता हूँ जब हम औरत के हवाले से हम बात करते हैं, क्योंकि औरत हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, ठीक है, हमारे घरों में औरतें मौजूद हैं। तो हम जब बाहर, मैं अगेन मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जब बाहर किसी औरत को देखता हूँ तो मैंने कभी इस नज़र से नहीं देखा, उस नज़र से कि यार ये औरत है, मैं ये नहीं देखता हूँ। ये जब ये चीज़ जब आपके जहन से निकल जाएगी ना कि यार ये औरत है, फिर आपको खुद बहुत चीज़ें आपकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आप औरत की रिस्पेक्ट भी करोगे, औरत आपकी दोस्त भी बनेगी, आपको रास्ता भी दिखाएगी, आपकी हेल्प भी करेगी, ये सब चीज़ें फिर खुद बहुत होना शुरू हो जाएंगी।
3: ये जो बार मुंह मारने वाली बीमारी है ना, ये मर्दों में नहीं औरतों में भी है।
2: फिर सही बात है कि हर जगह पे है।
3: और हमेशा हमेशा ये दोनों वही लोग होते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ फ्रॉड करते हैं और अपने अल्लाह को याद नहीं रखते और उसके अहकाम को अपने ऊपर लागू नहीं करते। ये वही दो औरत और मर्द होते हैं जो कि उनका सबका दोनों का बड़ा पैसा ही होता है।
2: सही,
3: ये नहीं कि औरत को कोई छूट मिल जाती है, नहीं,
2: ऐसे ही
3: उन दोनों के बुढ़ापे में बंदा ये सोच ले ना, ये चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है।
2: हाँ।
3: तो उसमें जरा इंसान संभल के चले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, सब कुछ है अल्लाह का। मैं कहती हूँ जितना शुक्र अदा करूँ मैं कर ही नहीं सकती।
2: सही सही।
3: और अल्लाह पाक ने माइंड भी बहुत नाइस दिया है
2: जी, ठीक है,
3: सबके लिए अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छा करना, ये अल्लाह की करम नवाजी है। मेरे में क्या खूबी है, ये उसकी अगर करम नवाजी ना होती तो शायद मैं ऐसा ना करती।
2: खूबसूरत बात, खूबसूरत बात।
3: तो बंदे को इस हिसाब में चलना चाहिए, रखना चाहिए, मियां हो बीवी हो दोनों को।
2: सही हो गया, बहुत खूबसूरत बातें हैं आपकी, लेकिन वक्त
3: और जो एक नस्ल नस्ल की हम परवरिश करते हैं ना, उसकी इस तरह इधर उधर मुंह मारने से नहीं होती, उसकी उस वक्त ही होती है जब वो एक लाइन पे चल रहे होते हैं और घर का माहौल सही रखते हैं।
2: बेशक सही है, बेशक सही है।
3: अल्लाह पाक सबको ये अच्छी अच्छी ड्यूटी अदा करने की तौफीक दे।
2: आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। वक्त कम है लेकिन बातें बहुत ज्यादा हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर है। लेकिन
3: कोई बात नहीं, मेरी जगह कोई और भी आए ना, अच्छी बात है, अभी जितने मिनट हैं कोई और भी आए ठीक है।
2: नहीं चले, सही हो गया, अपना ख्याल रखिए।
3: मैं तो खुद स्पेस बनाने के चक्कर में थी, मैंने कहा कोई बनेगी तो मैं जाऊँ, नहीं तो नहीं जाऊँ।
2: नहीं नहीं आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया।
3: मैं सुन रही थी, अब उनका नाम आशय है या कमल है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करती
2: बहुत अच्छी है। बातें की उन्होंने,
3: और उनका अंदाजे गुफ्तगू बहुत अच्छा होता है।
2: चलिए आपने उनके हौसला अफजाई की है, थैंक यू सो मच। आपकी बातें भी बहुत अच्छी।
3: तमाम बहन भाइयों को जो आए, जावेद मीर साहब, लाला फरियाल, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम।
2: वालेकुम सलाम।
3: और अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे और खुदा ताला राह रास्त पे रहो।
2: आपकी ऐसी ही बातें हमेशा हमारे लिए लेके आते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।
3: ओके
2: अल्लाह हाफिज।
4: दिस इज सनराइज रेडियो ऑन FM, DAB, ऑनलाइन एंड मोबाइल।
5: Looking for a quality home to rent?
6: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
5: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord Lord, you can trust.
4: This is Sunrise Radio on FM, DAB, online and mobile.
7: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewellers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewellers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.
8: यहां में है रकाबत तो इसी से, तस्खीर है मकसूदे तिजारत तो इसी से, खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से, कमजोर का घर होता है गारत तो इसी से, अकवाम में मखलूक के खुदा बढ़ती है इससे, कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है इससे।

ऑलराइट जनाब, अभी वक्त जो है वो मुझे आपसे इजाज़त लेने का हो चला है। आप सभी का बेहद बेहद शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, प्रोग्राम में शामिल हुए, और आप सब की जो बातें थीं और उन बातों के और मौजूआत के हवाले से मुख्तलिफ मौजूआत हमने डिस्कस कर लिया। आज एक दो तीन चार एक ही शो में जो है वो मौजूआत डिस्कस हो गए। आप सभी का बेहद शुक्रिया। मेरे भाई यहाँ पे मौजूद होंगे काशिफ, और स्टूडियो में आ चुके हैं, उसकी तैयारियाँ श्यारियाँ कर रहे हैं वो, और कभी मुझे वो ऐसे घूर के देखते हैं, कभी वो मुझे ऐसे मुक्का बुक्का ऐसे मुक्का बना के दिखाते हैं। ना ना ना ना, रहन दो हूँ तुझे। सही, मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है। काशिफ भाई जो हैं वो आ चुके हैं स्टूडियो में, आपके साथ मौजूद होंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगर ज़िंदगी ने वफा की इंशाल्लाह फिर कभी ना कहीं पे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।

जी जनाब, घर में है, मकान में, सड़क पे, खुले मैदान में। हमारी तरह कलम कल्ले बैठे हैं या बैठे हैं अपनों के दरमियान में। सलाम, नमस्ते, सस्री अकाल, जी एनु वेलकम, खुश आमदीद। कबूल कीजिए काशिफ की तरफ से जी हाँ, मैं हूँ आपका अपना काशिफ और आपके अपने सनराइज रेडियो पे आप हमें सुनते हैं आज के दिन 2 से लेके 5 बजे तक। और जनाब, सनराइज रेडियो को आप सुनते हैं यॉर्कशायर की वादियों में 103.2 एफएम और 100.6 एफएम। और जनाब, गूगल और एप्पल ऐप स्टोर के जरिए आप दुनिया भर में सनराइज रेडियो .fm के जरिए हमें सुन रहे हैं। And if you are streaming on TikTok Live or thinking about getting started, join the Sunrise Creator Network, a UK TikTok Live agency helping creators grow their audience, develop their brand and get promoted on Sunrise Radio. To find out more and apply, visit the Sunrise Creator Network page at www.sunrise.radio. That's www.sunrise.radio. और जनाब, मुझसे पहले यहाँ पे थे कमरान भाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त सा। जी जनाब, जबरदस्त सा साथ था बना हुआ आपका और उनका, और खूब महफिल सजी रही और उन्होंने सजाए रखी, इसके लिए आपका और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब, अब बारी है हमारी। जी जनाब, बारी है हमारी और आपकी, आपकी और हमारी। गपशप रहेगी जनाब, गीत होंगे मजे मजे के, आज के मौसम के हिसाब से, जैसा मौसम है चंचल सा, खूबसूरत सा, मस्ती वाला। जनाब बिल्कुल, मौसम का असर हम पे तो हुआ है, अगर आप पे हुआ है तो जरूर बताइएगा कि आज मौसम के लिए आप क्या कहेंगे, दिल का मौसम हो या आसमान की तरफ देख के, आपको क्या लगता है आज। और अगर कुछ कुछ होता है आपको हमें सुनने के बाद, सांसें तेज चलने लगती हैं, धड़कने बढ़ने लगती हैं, चेहरे पे आपके एक मुस्कुराहट मचलने लगती है, तो जरूर कॉल कीजिएगा अगर आपका दिल चाहे, अगर मसरूफियत में से टाइम निकाल सकें। हमने तो निकाले 3 घंटे आपके लिए, हमेशा निकालते हैं, हर वीक यहाँ पे आते हैं आपके लिए, अगर आपके पास टाइम हुआ। 01274306666 मीन टाइम

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ी के साथ टाइम मिला लें। टाइम हो चुका है जनाब दिन के 2:20।
2: थैंक यू फॉर मेकिंग सनराइज रेडियो योर फेवरेट एशियन रेडियो स्टेशन।
3: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुसले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
5: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
6: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
5: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
6: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
5: The Sunrise Creator Network.

0: जी जनाब, जबरदस्त गीत आप अभी सुनेंगे और ये गीत हमें ब्रेक की तरफ लेके जाएगा। लेकिन जनाब कॉलर हमारे साथ जो रहे, उनकी खूबसूरत खूबसूरत मीठी मीठी बातें इस गर्मी में, जनाब कलेजे में ठंड पड़ गई और क्या कहूँ, कहना पड़ेगा ना। ढेर सारी कॉल्स हैं और कुछ नाम पहले के भी पड़े हुए हैं हमारे सामने लिखे हुए हैं। और फैसल भाई जान, हर एक के नाम के साथ आपका काशिफ जान नहीं लगाता, और जिस नाम के साथ जान लगाता है वो इसलिए लगाता है कि जिनसे बात करने के बाद जान में जान आए जनाब, उनके नाम के साथ हम जान लगाते हैं। और फैसल भाई जान बहुत बहुत शुक्रिया बड़े अरसे के बाद। अच्छा, आपसे बात कर रहा हूँ, आपका चेहरा हाय ऐसे मुस करता हुआ चेहरा आपका हमारी आंखों के सामने है, और बहुत शुक्रिया बड़े अरसे के बाद जनाब आपने हमारे साथ जो है ना वो राबता किया, अच्छा लगा, दिन बना दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दिल के तार खड़के, और जब भी कहते हैं किसी किसी की याद आए, किसी की तरफ आपका ध्यान जाए, जब किसी की तरफ दिल, जी हाँ जनाब, थोड़ा थोड़ा सा झुके तो कॉल करनी चाहिए, उसको याद करना चाहिए। जैसे बात हो रही थी जिंदगानी की, जिंदगानी का पता नहीं होता। जी जनाब, जिंदगी गुजर जाती है अपनी अना में, ईगो में इंसान गुम रहते हैं, बारियों में, बारी उसकी है पहले या मेरी, इसमें गुम रहते हैं। जनाब जरा रोमांटिक सा गीत है, और बस ऐसे ही बातें कुछ दोस्तों ने आके कॉल पे इस तरह की कि हमें बहुत कुछ याद आया। वो कहते हैं ना, तुमसे कितनी मोहब्बत है मुझे, तुमसे कितनी मोहब्बत है मुझे नहीं मालूम, मगर लोग तो आज भी तेरी कसम देकर काशिफ को मना लेते हैं। मगर तुमसे कितनी मोहब्बत है मुझे ये नहीं मालूम। जनाब हमारे आसम भाई आए, आसम भाई ने बड़ी खुल के बातें की, दिल की बातें की, बहुत कुछ शेयर करते हैं जिंदगी के बारे में, और बहुत कुछ कहना चाहते हैं मजीद, लेकिन हमारे वक्त का ख्याल रखते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आप हमारे जो है ना हिस्से की दुआओं का वो ख्याल रखते हैं, हमें दुआएं देते रहते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि हमारी दुआओं में आपकी जगह बनी रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा हमारे साथ हैं, आयशा ये गीत खास आपके लिए होगा, मजीद आपसे बातें होंगी, आप होल्ड पे हैं हमारे साथ, इंतज़ार आपको कराना हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता, और जो आपको अच्छा नहीं लगता वो हमें कैसे अच्छा लगेगा। ये गीत आपके लिए होगा, और जनाब गीत आप शायद सुन नहीं पाएंगे क्योंकि हमसे बातें कर रही होंगी जब ये गीत ऑन एयर जाएगा। हुण की करिए। अच्छा फिर इस गाने को रोकते हैं ना, फिर गाना आयशा सुन नहीं पाएंगी तो फिर की फायदा। और इसके अलावा सायरा हमारे साथ ही कॉल पे, उन्होंने बातें की बहुत सारी, उन्होंने कहा काशिफ आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी, और कुछ देर पहले मैंने आपको सुनना शुरू किया और पहली बार आपसे बात हुई हमारी और खुल खला के बातें हुई। जनाब आपने दिल में कोई बात नहीं रखी, और रब की तारीफ, और रब आपको अजर दे इस हौसला अफजाई का जो बातें आपने हमारे साथ की। जिंदगी को बड़ी बारीकी से आपने देखा है हमें लगता है, आपकी बातें सुन के ऐसा लगा कि आपने इंसानों को बड़ा अच्छा और बड़े करीब से देखा है, परखा है, आपने हमारी बातों को भी परखा और तोला। और जो हिम्मत आपको मिली हमारी बातों से कि डर के जिंदगी ना जिए, सोच के ना जिए, लोगों के लिए ना जिए, हमारे डैडी की बातें याद आती हैं। डैडी कहा करते थे, यार लोकी सानू महीने दा राशन पा के देंदे ने, जिस वेले वेखो हर ही गल च तू इको गल करना है काशिव, अब्बा जी लोकी की कहणगे, ना ना ना लोकी की कहणगे, तो जनाब वो गुस्से से दो चार आगे पीछे तोल के ना खास किस्म के जुमले अल्फाज, और बीच में उनकी बात होती थी, यार काशिव वो लोकी तनु महीने दा राशन पा के देंदे ने तो जनाब लोगों का मत सोचा करें कि लोग क्या कहेंगे, ये जिंदगी की सबसे बड़ी खामी। पर सायरा आपसे बात करके आप पता नहीं कहती हैं कि हम हमारी बातों से आपने बहुत कुछ सीखा, समझा, परखा, लेकिन हमने यकीन माने थोड़ी सी देर आपसे बात की, बहुत कुछ सीखा समझा, और आइंदा भी आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। मीन टाइम जनाब एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं मुड़ के वापस। ये गाना होगा फैसल भाई आपके लिए, आयशा जी आपके लिए, सायरा आपका दिल किया हमारी तरफ जनाब झुका थोड़ा सा, हमारी बातें आपके कलेजे को दिल को लगी ठा करके, तो आपने बताया भी ये बात, हमें जान के अच्छा लगा। तो ये गाना फिर आपके लिए भी होगा। अली राई भाई हैं जनाब कॉल पे होल्ड पे, उनके नाम होगा जनाब, और मेजर यूसुफ साहब ने इंतज़ार नहीं किया, वो चले गए हिम्मत हार के, पर उनके लिए हम तो इंतज़ार नहीं करवाएंगे, गाना आपके लिए होगा, सभी दोस्तों के लिए, प्यारे भाई आसम के लिए, दुआओं का ढेर हमारे लिए उन्होंने वो लेके तोहफा आए हैं, उनके लिए गाना होगा। और जनाब हलीमा, आपको रोमांटिक गाने बड़े अच्छे लगते हैं, एक लंबी सी लिस्ट भेजती हैं वो मुझे हर हफ्ते गानों की, और वो सारे के सारे रोमांटिक गाने होते हैं। हलीमा जी, वैसे मुझे नहीं पता था कि इतना रोमांटिक भी कोई इंसान होता है जी। आप मेरे साथ थोड़ा सा हमारे जज्बात के साथ खेलती हैं, या वैसे भी आप जो है ना, आपको बाकी के हफ्ते के 6 दिन भी रोमांटिक गाने सुनने, याद करने, समझना अच्छा लगता है, या फिर ये खाली हमारे जो है ना वो दुखती रगें और बटन प्रेस करने का आपको शौक है। लेकिन जनाब कोई बात नहीं, हम आपके लिए रोमांटिक गाने जितने भी आज के शो में लगेंगे वो हलीमा के लिए भी होंगे। बाकी जो लंबी सी लिस्ट आपकी हलीमा जी गानों की है, उसमें ऐसे अधे गाने हमारे पास नहीं है। गुंडा राज फिल्म का गाने हमारे पास नहीं है, उसके अलावा मत पूछ मेरे महबूब ये गाना भी हमारे पास नहीं है, और उसके अलावा जो गाने आपने बताए, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, इस तरह का कोई गाना है वो भी नहीं है, हम तेरी मोहब्बत में दीवाने वो भी नहीं है, और आपने इतनी बारी मुझे वो उसको उन गानों के बारे में लिस्ट भेजी है तो मुझे बताना पड़ा ऑन एयर। जनाब कुछ आधे गाने हैं, आधे गाने नहीं हैं, तो जो गाने हैं वो मैं वक्तन फवक्तन आप ही की लिस्ट में से लगाऊंगा, ठीक है। कुछ बातें कहना करना ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब आप कॉल करते हैं, टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, तो जैसे सायरा ने कहा, गाने तो हम सुनते ही रहते हैं, जब चाहे सुन सकते हैं, एक क्लिक करेंगे अपने मोबाइल पे, टच स्क्रीन पे, तो गाना सुन लेंगे। मेन काम बातों का होता है, और बातें वो जो कोई दिल से करे और दिल को लग जाए तो बातें वो होती हैं। बनावट ना हो, बनाओ रख रखाव ना हो, जिसमें वो कोई मेकअप वाली कोई बनाओ श्रृंगार ना हो, बस बातें हो, और कोई किए जा रहा है और आप सुने जा रहे हैं, और कोई किए जा रहा है और आप सुने जा रहे हैं। ऐसे आजकल के दौर में बागम बाग, नफसा नफसी, पाउंड्स, पैसा, दौलत, प्रॉपर्टी है ना सायरा, इस दौर में जिसमें जैसा सायरा ने कहा, अपनों का भी खून सफेद हो गया, तो गैरों से क्या उम्मीद, गैर तो फिर गैर होते हैं। तो इस तरह के दौर में जब हम जी रहे हों, तो वहां पे कोई आके दो मीठे बोल दिल से अगर आपके लिए कहे, तो वो समझने वाले, सायरा की तरह, आयशा की तरह, और आंटी दीपा की तरह, आसम भाई की तरह, फैसल भाई की तरह, आरफ भाई की तरह, साइमा की तरह, सामिया की तरह, यूसुफ भाई की तरह, अली अराई भाई की तरह, तो जनाब इस तरह के दोस्त फिर समझ जाते हैं, क्योंकि पागल दिल से बातें कर रहा है। आज के जमाने में जहां दिल की कदर नहीं रही, दिल की बातों की क्या औकात, तो कुछ लोग अभी भी जनाब दिल और दिल की बातों और उनमें छुपे जज्बात की कदर करना जानते हैं। वो आप हैं जनाब, आप सब जो हमें सुन रहे हैं, ना कोई रिश्ता खून का, ना कोई मजबूरी आपकी, ना कोई जोर जबरदस्ती, ना कस्में, ना वादे आपसे हमने लिए, ना आपने हमको दिए, लेकिन आप सुन रहे हैं और बस सुन रहे हैं, और हम किए जा रहे हैं बातें और बस किए जा रहे हैं।
1: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
4: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
5: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
4: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
5: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
6: Official media partner, Sunrise Radio.

0: जी जनाब, प्यार तो होना ही था और जब होना था तो हो गया और अब और क्या हो सकता है। और बहुत बहुत शुक्रिया समीना आपका। आप कहती हैं मैंने शॉपिंग के लिए निकलना था लेकिन आपकी कॉल मिल ही नहीं रही थी, बहुत बिजी लाइंस मिल रही थी और मैंने 3-4 बार ट्राई और करना था और अगर कॉल मिल जाती तो ठीक है वरना मेरा दिमाग जो है ना वो ख़राब हो जाता। और मैंने फिर आपको और आपकी बातों को कॉल को सबको, मेरे पास कोई टाइम नहीं था कि मैं आपको अपने दिमाग में मज़ीद रखती आपको कॉल करने के लिए। तो शुक्र है कि आपने कॉल पिक कर ली और मैं बड़ी बिजी हूँ, मैंने शॉपिंग पे भी जाना है, आगे ही मैं आपकी वजह से लेट हो गई हूँ और दूसरा मैंने शाम को बारबेक्यू भी करना है। आपको पता नहीं है मौसम बारबेक्यू वाला है तो मैं आपकी वजह से लेट हो गई हूँ। तो समीना हम जल्दी से, इससे पहले कि आपके जो क्या कहते हैं उसको, नखरे कहते हैं क्या कहते हैं, गुस्सा कहते हैं क्या कहते हैं, मतलब वो ज़्यादा उन पे वो ज़्यादा बढ़ जाएं या आपको ज़्यादा गुस्सा आ जाए, तो जनाब आपके सबके नखरे हम सारा आंखों पे उठाने के लिए तैयार हैं और हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा जनाब आपके नखरे, है ना। आपके नखरे तो सर आंखों में जनाब, आप गुस्से से बात करें तो भी हमें प्यार लगता है, आप प्यार से बात करें तो भी हमें गुस्सा लगता है। आसम भाई, खास तौर पे आपको आज बड़ी आखर आई हुई है। आखर का मतलब पता ना आपको, आप कहते हैं मुझे बड़ा दिल कर रहा है ये गाना सुनने का, मौसम कोई ऐसा बेईमान हो चुका है कि आसम भाई जैसा शरीफ बंदा भी थोड़ी बेईमानी पे उतर आया उनका दिल। तो आपका दिल अगर बेईमानियां जानता है तो हम तो रहते इस बेईमान जमाने में है जनाब। तो बेईमान जमाना रज रज के बेईमानियां ही दिखाता रहा है, सिखाता रहा है हमें, तो ये तो हम हैं कि बच गए हैं। आपकी दुआएं काम आ गई जी हाँ समीना, आपकी दुआएं काम आ गई मेरे, आपके काम हम आए ना आए, आपकी दुआएं हमारे काम जरूर आएंगी जनाब। सोनी दे नखरे, नखरे ही ना, विच गल कोई नहीं खास कोई अड्डी, एवें ही जनाब हूं तुसी गुस्सा कर जाओ आयशा जी की तरह, तुसी एवें तुहानू गर्मी धुप छुप लग गई है सिर नू, तुसी छावें बवो कोई ठंडा पानी पियो, सिर ते पखा लाओ, तुहानू जनाब थोड़ा सुकून आए। और कॉल्स जो बिजी थी जनाब समीना जी, हाँ साडा की कसूर है, साडा तो कोई कसूर नहीं, साडी नीयत च कसम है कोई फतूर नहीं, तो जनाब तुसी गाना सुनोगे ब्रेक दे बाद फ्लैशबैक दे विच क्लासिक हिट ऑफ द आवर होएगा जनाब ताडे वास्ते। आसम भाई तुहानू साडी जबानी पंजाबी बड़ी सोहनी लगती है ते जरूर जनाब, अली राय भाई तुहाड़ियां फुर्तियां मार गई मैनू, चक्कर चाड़ गई मैनू। और मॉर्निंग मो दोबारा से आप आए और आपने कहा जो है वो है, इट इज व्हाट इट इज, मैं मॉर्निंग करता नहीं हूं हो जाती है, सो आई कांट प्रिटेंड काशिव, इट इज व्हाट इट इज। ठीक है जनाब, मॉर्निंग मो, बस हमने भी आपका नाम मॉर्निंग मो रख दिया। मॉर्निंग मो, थैंक यू वेरी मच फॉर रिंगिंग बैक एंड शॉर्ट एंड स्वीट कॉल वंस अगेन। दिस ट्रैक इज कमिंग आउट टू यू, होपफुली आफ्टर लिसनिंग दिस ट्रैक यू वोंट बी मॉर्निंग एनी मोर, फॉर जस्ट फॉर टुडे प्लीज, जस्ट फॉर अ डे गिव अ ब्रेक टू योर सेल्फ प्लीज मैन, कम ऑन। Anyways guys, everybody else out there listening Sunrise Radio with Kashif Jannab, this song is definitely going to cheer you up. If this song doesn't cheer you up, then I don't know what to do.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Jinaab, time ho gaya hai, 3:50, milte hain ek break ke baad.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 7444 62 or 07 07 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: हाँ जल्दी लगाना जल्दी, मुझे फिर जाना है कहीं। ये क्या चक्कर है, सारे आ रहे हैं, कोई शॉपिंग के लिए जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। आयशा जी ने भी धमकी लगा दी, उन्होंने कहा जल्दी गाना लगाओ, मैंने कहीं जाना है। एड्डी लम्मी तुसी कॉल की, एड्डे कॉलर मेरे नाल आए, वो सारे नाराज हो गए, ते तुहाडा दिल हाले भी नहीं रजिया। तीन शायरियां तुसी मैनू सुनाइया, तीन शिकवे भी किते, तीन वारी मेरी तारीफ की, सारा कुछ तीन तीन वारी तुसी करदे हो, रोटी भी दिहाड़ी तुसी तीन वारी खांदे होणे हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपको पंजाबी समझ नहीं आती है इसलिए मैं उर्दू में कर लूं बात आपके लिए। ये गाना अब आपके लिए दोबारा से, और जनाब किसी ने हमें कॉल की और उन्होंने इतने बड़े प्यार से सर सर सर कह के बात की।
1: आपको देख के
0: हाय,
1: देख देख के रास गया।
0: इतने क्यूट अंदाज से आपने सर कहा, जिन्होंने कहा उनको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये गाना आपके लिए है।

0: gotta stop.
1: Sunrise Music. Sunrise Radio. Your soundtrack, your time check.
2: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि जनाब टाइम हो चुका है इस वक्त 4:06 हो गए जनाब, 4:06। और जनाब हमें आपको जनाब एक बात बतानी है कि इस वक्त आप आन पहुंचे हैं हमारे आज के शो के, आज की इस महफिल के लास्ट आवर में, यानी कि आपकी जान छूटने वाली है हमसे। और अगर आप हमारा इंतजार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमें याद करते हैं, तो फिर आपके और हमारे दरमियान जुदाइयों का टाइम आने का ये आखिरी आवर शुरू हो चुका है। आपको ढेर सारे गाने आखिरी हाफ एन आवर में हम रज के सुनाते हैं, जो बातें करते हैं ना ढेर सारी, 2.5 hours शो के, 3 घंटों में हम 2.5 घंटे गाने और बातें आप ही की बातें होती हैं ज़्यादा, जो आप हमसे कॉल्स पे आके करते हैं। लेकिन जनाब आखिरी आधे घंटे में हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाने हों, तकरीबन बैक टू बैक भी गाने हों, ताकि जो गाने सुनने वाले हैं, जिनको दिल की बातें, अच्छी अच्छी बातें समझ नहीं अभी आती हैं, अभी उनके दिल को हाथ नहीं पड़े हैं जमाने के, अभी वो किसी और हवा में हैं, जिंदगी गुजार दी है उन्होंने, लेकिन जिंदगी की समझ जिनको अभी नहीं आई है, उनको हमारी बातें कहाँ समझ आएंगी, है ना। और जिनको हाथ लग चुके हैं जमाने के और जिंदगी की समझ कुछ हद तक आ गई है, उनको हमारी बातों में कुछ कुछ, जी हाँ, काम की बातें समझ आती हैं, मिलती हैं काम की बातें, कि बातें काम की हैं, सुननी चाहिए, गाने तो सुनते ही रहते हैं। एनीवेज जनाब, आई एम योर होस्ट दोस्त बिल्कुल जनाब काशिव, 01274306666 इज द नंबर फॉर योर डेडिकेशंस, फॉर योर सॉन्ग रिक्वेस्ट। जी जनाब, सनराइज रेडियो .fm के जरिए दुनिया भर में आप हमें सुन रहे हैं, 103.2 FM एंड ऑफ कोर्स 100.6 FM के जरिए आप हमें यॉर्कशायर की वादियों में सुनते हैं। और जनाब हमें कोई और भी सुन रहा है, पर उनका नाम मेंशन करने से पहले जनाब आपको बताएं, इफ यू आर स्ट्रीमिंग ऑन टिकटॉक लाइव और थिंकिंग अबाउट गेटिंग स्टार्टेड, जॉइन द सनराइज क्रिएटर नेटवर्क, यूके टिकटॉक लाइव एजेंसी, हेल्पिंग क्रिएटर्स ग्रो देयर ऑडियंस, डेवलप देयर ब्रांड एंड गेट प्रमोटेड ऑन सनराइज रेडियो। टू फाइंड आउट मोर एंड अप्लाई, विजिट द सनराइज क्रिएटर नेटवर्क पेज एट www.sunrise.radio, दैट्स www.sunrise.radio। जनाब एंड जनाब कुछ कॉलर्स हमारे साथ रहे, जरीना जी थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और आप कहती हैं कि मैं फ्रीजर साफ करनी पसंद है, फ्रीजर उन साफ हो ही गया तो फिर मिकी वेल लगी है, तो मैं तुसा की कॉल की थी, तो मैं शो बुझनी पियाँ। बिल्कुल आप बुझ रही हैं शो, आप कॉल पे बात कर रही थी और बैकग्राउंड में मुझे गाना सुनाई दे रहा था, जो हमने लास्ट आवर का आखिरी गाना लगाया जब हमारी बात आपसे शुरू हुई। थैंक यू वेरी मच जरीना जी, आपका एक अपना अंदाज है। और फ्रीजर चंगा किया है, साफ करी छोड़े हैं, फिर मौसम अगर गर्म हो जासी थोड़ा जहा तो चंगा ना, फिर फ्रीजर तो फ्रिज नहीं तो बड़ी लोड़ पैसी अगर आने वाले दिहाड़ियों में। बहुत बहुत शुक्रिया जरीना जी, तुसा ना कॉल करने ना, असि दसने ना, इंजॉय करने पे, असा तुसा को बहुत पूछा को गाना बाई छोड़ो अपनी पसंद ना, तो तुसा आख्या कोई भी गाना लाई छोड़ो ना, तो मैं रहा सादा, मैं दोहरी बारी पूछी छोड़िया जरीना रगे भी फ्रिज साफ, फ्रीजर साफ, सॉरी फ्रिज नहीं, फ्रिज आले बाकी रहनी ना साफ करने जोगी, फ्रीजर साफ करी तो वो अके तो थके वे से, तो मैं दोहरी बारी पूछी छोड़िया माड़ा कसूर जरीना जी, मैं आख्या लाका गाना बाई छोड़ो ना, केरा लावा ने आने, मैं आख्या ना तू की कोई भी गाना लाई छोड़, मैं तो एक बार दब तुसा ए जी दब कराई ना ते मैं ते यकीन करो ते डरी गया ते सहमी गया ते मैं गाना फिर ए उन राइट इट गाना अंग्रेजी ना वे एंड ऑफ कोर्स दिस सॉन्ग जे शोन वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर एंड ऑफ कोर्स दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग कमिंग आउट टू ईच एंड एवरीवन आउट देयर लिसनिंग सनराइज रेडियो एंड ऑफ कोर्स टू जेंटलमैन लिसनिंग माय शो मैथ्यू एंड मार्टिन Thank you so much, guys. You have tuned in Sunrise Radio and you're doing your job. And two officers. Ji janab, I can't give more details about that. But anyways, two officers looking after the community and protecting communities, all of the communities. And you guys are doing a great job. Let me tell you guys, police officers, koi bhi care workers, fire services wale ho, ya doctors, nurses, कोई भी जनाब आप जॉब कर रहे हैं या अपने घर के लिए जनाब रोजी रोटी कमा रहे हैं इफ आउट देयर यू आर वर्किंग हार्ड लाइक मैथ्यू एंड मार्टिन दिस सॉन्ग इज कमिंग आउट टू यू आई होप यू गाइस आर गोना एंजॉय दिस ट्रैक एंड दिस इज द ओनली इंग्लिश ट्रैक आई कैन थिंक ऑफ बिकॉज इट इज बॉलीवुड लॉलीवुड बिट ऑफ पाकिस्तानी एंड इंडियन सॉन्ग्स आई कैन प्ले इन दिस शो बट राइट नाउ जस्ट फॉर यू टू जेंटलमैन Working hard out there, and anybody else out there working hard. This song is coming out to you from your host, those
0: playing silly games.
2: RJ Kashif on Sunrise.

जी जनाब, आज हमने सोचा कि खैर हो सही, आज एक बहुत सारे जो रेगुलर कॉलर्स आते हैं उसमें से एक कॉलर की जो है ना वो कमी थी, बहुत सारे कॉलर्स की कमी थी, लेकिन हमने सोचा कि खैर हो सही, आज सोनिया नहीं आई अभी तक, रब खैर करे। लेकिन सोनिया आई और अच्छा लगा जनाब ये गाना सोनिया आपके लिए। और जनाब लास्ट आवर में आ चुके हैं और अब मैं जानबूझ के थोड़ा थोड़ा आपका माहौल, आपका जहन, आपका मूड, आपके इरादे, आपका अंदाज, आपकी सोच जुदाई वाला बनाता हूं, आपके दिल को हाथ ना पड़ जाए मेरे एकदम से जाने से। एकदम से किसी का बिछड़ना ज्यादा तकलीफ देता है। अच्छा, बिछड़ने के लिए भी एक अंदाज होता है, वो है ना वो बिछड़ा इस अदा से के हाय रुतने क्या बदलना, हम खुद बदल गए जनाब उसके लिए, उसकी जुदाई में। तो कुछ इस तरह सा का हाल होगा जनाब अभी हमारा भी, आपकी जुदाई में आपका क्या होगा हाल ये मुझे पता लग जाएगा नेक्स्ट जनाब शो में जब मैं आऊंगा तो। हाय, लेकिन तब तक जनाब आपके लिए दुआएं रहे।

ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਛੋੜ ਦਈਏ ਜੋ ਹਮਨੇ ਦੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੇ ਅੰਜਾਮ ਥੇ ਗੰਦੇ ਅਬ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਆ ਕਰੇ ਹਮਨੇ ਤੋਂ ਛੋੜ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ छोड़ दी हमने ओनर कॉल्स आंटी दीबा इसी वजह से छोड़ी आंटी दीबा हमने ओनर कॉल्स यही वजह यही ऐसे आपा ए एला जदी तुसी गल कर रहे सो ना हाँ असी ओ स्यापा अपने गल तू ला दिता हुण नहीं मैं किसी दी गल्लां चाणा हुण मैं सियाणा हो गया थोड़ा जिहा ए मेरा वहम है मैनू लगता वहम अच्छी चीज नहीं होती है लेकिन कुछ वहम ऐसे ही जिंदगी की रफ्तार को बरकरार रखते हैं तो कुछ वहम अच्छे भी होते हैं जैसे मुझे वहम है ना कि आपको मुझसे प्यार है हे जनाब और रब करे अगर नहीं भी आपको मुझसे प्यार आए तो अगर मुझे आपसे प्यार है तो रब करे फिर आपको भी मुझसे

0: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुसले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303 Zero.
3: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
4: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
3: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
4: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application.

ये खूबसूरत सा गीत आप सब दोस्तों के नाम होगा। जाते जाते जनाब दिल तो नहीं करता, लेकिन अभी नहीं जा रहे, अभी कुछ टाइम है। आना बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा कॉल की और आप जहां भी हैं एंजॉय कर रही हैं लेकिन हमें सुन रही हैं और आप कहती हैं कि हम पहले घर पे थे जब आपको कॉल की, अब हम एंजॉय कर रहे हैं लेकिन सोचा नहीं था कि हाय क्या बात है, सोचा नहीं था कि आपको हम इस तरह से सुनना छोड़ नहीं सकते हैं। एक बार हमने कॉल करने की कोशिश की आपको पहले, लेकिन हमारी कॉल कट गई, आपने हेलो कहा। सिर्फ यही बताना चाहती थी आप हमें कि आप बाहर कहीं घूमने के लिए आई हैं लेकिन अभी भी आप हमें सुन रही हैं, तो जनाब बताने का बहुत शुक्रिया। आगाह किया आपने, अपना ख्याल रखिएगा जहां कहीं भी आप हैं, एंजॉय कर रही हैं साथ में हमें सुन रही हैं, थैंक यू सो मच। और साथ निभाने वालों में से हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब बिल्कुल ये गीत एक और ब्रेक की तरफ लेके जाएगा। दिल नहीं चाहता कि आप से जुदा हो और जुदा हो के फिर 6 दिन की जुदाई हो, 1 हफ्ते की जुदाई हो। बिल्कुल जनाब दिल चाहता है कि आपसे हर रोज मुलाकात हो, आज मिले हैं, काश ऐसा हो सकता कल फिर मिल

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
3: जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब दोस्तों का जिन्होंने कॉल्स की। सोनिया, आखिरी कॉल आपकी रही, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक बार बात हुई, दोबारा आपसे बात हो सकती है अगर आप इंतज़ार करेंगी तो। ज़रूर, जाने से पहले आपसे हमारी बात ज़रूर होगी और बिल्कुल आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जिंदगी रही तो फिर सही, कोई बड़ी बात नहीं। आपके कौन से दिन रात गुजारना मुश्किल हो जाएंगे हमारी जुदाई में जैसे हमारे मुश्किल हो जाते हैं आपकी जुदाई में। चले तो जाते हैं हम यहाँ से, आपसे दूर, लेकिन खुद को आपके पास ही छोड़ जाते हैं। ऐसा लगता है आप नहीं समझ पाएंगे, अभी नहीं। कहते हैं जिंदगी में इंसान की कदर तब तक नहीं आती जब तक कोई चला ना जाए। जब कोई चला जाता है कभी भी वापस ना आने के लिए तो कदर आती है। जब पता हो कि कोई वापस आएगा तो कदर नहीं आती। जिंदगी में हमेशा उसी की कदर होती है जो एक तो आपको मुयस्सर ना हो, कभी मिल ना पाए, या मिले और मिलने के बाद खो जाए हमेशा के लिए। बस ये दो ही टाइम आते हैं जिंदगी में जब कभी किसी की कदर देखी है हमने इस दुनिया में, जिंदगी में। दुनिया वालों ने जो हमें समझाया सिखाया, इस दुनिया के इरादे रस्में रवाज समाज ने जो रहन सहन और फहम की बातें समझाई हमें, उससे यही लगा कि कदर तभी आती है जब कोई हमेशा के लिए चला जाता है। अभी आपको पता है आपका काशिफ आएगा लौट के, इसलिए आपको समझ नहीं आएगी कि कदर क्या होती है किसी की। चले जनाब, हमें तो आपकी कदर है, आपके हर एक सेकंड की, हर एक लम्हे की, हर एक लफ्ज की, हर एक बोल की, हर एक अंदाज की, हर एक अल्फाज की जो आपने हमें हमारे कानों में रस घोल के यादगार बना दिया, उस लम्हे को हमसे बात करके जिन्होंने कॉल्स की, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त निकाला आपने अपनी मसरूफ जिंदगी में से, हमें इस काबिल समझा, रब आपकी इज्जतों में इजाफा करे, आपकी जिंदगी में रंग लगाए ढेर सारे, क्योंकि आपने आज के हमारे दिन को और ज्यादा रंगदार और खूबसूरत बना दिया हमसे बात करने के बाद। और जिन्होंने बात नहीं की हालात के मारे, हालात के हाथों मजबूर, और मुझे पता है इसमें आपका जरा भी कोई नहीं कसूर कि आप हमें कॉल नहीं कर सके। सुनते तो रहे आप, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपनी समातों का, अपना जो ध्यान है अपनी समातों का, अपने दिलो दिमाग को हमारे साथ लगाए रखा 3 घंटे, इसके लिए आपका ज्यादा ज्यादा शुक्रिया। ढेर सारी दुआएं आपके लिए भी जनाब। आपको कैसे बोल सकते हैं जिन्होंने कॉल्स नहीं की, उनका डबल शुक्रिया मैं अदा करता हूं। और एक जादू की जोरदार जफी, जादू की जफी आप सबके लिए जो मुझे सुनते रहे ढेर सारी दुआओं के साथ। सभी बहन भाई दोस्त अपने बड़े छोटे हमेशा कहता हूं, कोशिश कीजिएगा किसी की आंख में आंसू ना आए आपकी वजह से, किसी का दिल ना टूटे आपकी वजह से। मैं भी कोशिश ही करता हूं हमेशा कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। आप भी कोशिश कीजिएगा कि दूसरों के चेहरों पे आपकी वजह से मुस्कुराहट आए, दूसरों की जिंदगियों में आपकी वजह से कोई मुश्किल नहीं तो आसानी ही आसानी आए, और अगर आसानी नहीं आ सकती तो मुश्किल ना खड़ी कीजिएगा। कोई रागीर चलते हुए, कोई गाड़ी ड्राइव करते हुए दूसरे ड्राइवर सड़क पे, अपने पड़ोसी, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपना हस्बैंड, अपने जीवन साथी, अपने दोस्त अहबाब जिनसे आपका तल्लक वास्ता बिलवास्ता हो, अपने जान पहचान वाले, अपने शहर वाले, अपनी गली मोहल्ले वाले, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, बहन भाई, सबका मैंने बार बार कहा, क्योंकि उनका ख्याल रखिएगा, उनकी जिंदगी में आसानी लाइएगा, अपने प्यारों की जिंदगी में आसानी लाइएगा, गैरों की जिंदगी में आसानी लाइएगा, मुश्किल ना किसी की जिंदगी में खड़ी कीजिएगा। आप रब के बंदों की जिंदगी में आसानी लाइएगा, फिर देखिएगा कि आपकी जिंदगी में रब मौजज़े दिखाएगा, आपको आसानियां लाएगा। रब के बनाए हुए बंदे की जिंदगी में जब आप सोचें, जब एक माँ के बच्चे को कोई प्यार करता है, दिलासा देता है, हिम्मत बढ़ाता है, कोई आसानी करता है किसी बच्चे या बच्ची की जिंदगी में, तो उस बच्चे और बच्ची की माँ जोलियां उठा उठा के दुआएं करती है उस इंसान के लिए जिसकी वजह से उसके बेटे या बेटी की जिंदगी में कोई आसानियां आए। तो जब माँ जोलियां उठा उठा के दुआएं करती है उस इंसान के लिए जो उसके बच्चे या बच्ची के लिए आसानी पैदा करे जिंदगी में, तो जिस इंसान को रब ने बनाया हो, हाय हाय हाय, आप उस इंसान की जिंदगी में आसानी लाएंगे तो वो रब क्या करेगा आपके साथ, सोचे। मुझसे होंगे, ये मेरा चैलेंज है, आसानियां होंगी आपकी जिंदगी में इस तरह से भी, सजदे भी जिंदगियां बदलते हैं, इबादतें भी जिंदगियां बदलती हैं, दुआएं भी जिंदगियां बदलती हैं, मगर मेरा ये यकीन है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि बंदों, रब के बंदों, कोई भी जात पात, रंग, नस्ल, मजहब, किसी भी इलाके से किसी का तल्लक हो, आप रब के बंदों की जिंदगी में आसानियां ला के देखिए, मेरा चैलेंज है, मौजज़े देखेंगे आप अपनी जिंदगियों में, ठीक है। अब बात याद रह जाएगी ना, बड़े प्यार से समझाई, रिपीट करके समझाई, क्योंकि बात अहम है। बंदा बड़ा नाचीज है, बड़ा हकीर फकीर, बड़ा ही ना समझ सा इंसान हूं, लेकिन जो जिंदगी ने मुझे दिखाया, मेरे रब ने ऐसे हालात दिखाए, मुझे जो कुछ समझाया इस जिंदगानी ने, मुझ पे फर्ज है कि मैं ये आपके हवाले करूं, जिससे आपकी जिंदगियों में भी रौनक आए मजीद। बहरहाल जनाब, अभी के लिए इतना ही काफी है। घड़ी आन पहुंची जुदाइयों की, व छोड़ों की, आपसे दूर जाके आपके पास, आपके दिल में रहने की घड़ी आन पहुंची। अपनी यादों, बातों, चाहतों और सबसे बढ़ के जनाब अपनी दुआओं में, मुझ नाचीज हकीर फकीर, मुझ काशिफ को जरूर याद रखिएगा अपनी दुआओं में, जगह दीजिएगा। अगली मुलाकात आपके साथ होगी इंशाल्लाह से फिर दोबारा, तब तक के लिए अपना बड़ा खास ख्याल रखिएगा, आपका और मेरा, मेरा और आपका। अल्लाह निगहबान।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

एक शेर तुहाड़ी नजर करदा हजूर। अज दी रात दी खबर दसा, अज दी रात दी खबर दसा, ख्वाब विच सोने आए हुए सन, बड़ी अदा नाल दिता जनाब बोसा, मस्ती विच आज खूब छाए हुए सन, दुख सुख दिया गल्लां खूब होइयां, बड़े अरसे दे दिल घबराए हुए सन, तको तकी अफजल अख खुल गई, जाम कौसर दे लबा नाल।

0: गलियां गलियां घूमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्हाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio Yorkshire.
1: From the Sky News Centre at 8. Donald Trump is preempting what could be Keir Starmer's departure, claiming he is going to resign. The US president hasn't given evidence for the social media post, but has slated his immigration and energy policies. Downing Street insists the prime minister's hanging on, even though it's known he's spending the weekend reflecting. Labour MP Samantha Niblett says he should go nowhere.
2: I think he just has to say, I want to remain the prime minister and fight tooth and nail if there is a leadership challenge. He has got swathes of support within the parliamentary Labour Party. And what I really hope is this weekend, some more of my colleagues who are supporting the Prime Minister start to become a little bit more vocal.
1: Temperatures could reach 38 degrees in parts of the UK as a four-day extreme heat warning has been issued. The first amber alert for Monday and Tuesday covers central and southern England and parts of Wales. Three young teenagers have been arrested over the death of a 17-year-old boy in southwest London. Jamal Coombs was stabbed during an argument in Battersea in the early hours of yesterday morning. It's believed the investigation into last Friday's fatal train crash near Bedford could take several months to complete. The driver who died has been named as 60-year-old Sean Burton. His family say they're devastated by his loss. Dozens of swimmers have taken to the chilly waters at Sydney's Coogee Beach to reclaim the sea following a shark attack. 35-year-old Leah Stewart was swimming with friends when she was bitten by a great white. She's in hospital fighting for her life. Rob Harcourt is a professor of marine ecology based in Sydney.
3: It's a season when white sharks come in close to shore chasing salmon, which migrate up the coast, and we have large schools of Australian salmon. And those sharks, as they get bigger, they eat dolphins and seals, and people are around about the same size.
1: At the World Cup, Spain eased to their first win of the tournament with a 4-0 victory against Saudi Arabia. Teenager Lamine Yamal opened the scoring for the holders in Atlanta. That's the latest. I'm Jenny Barsby.
4: Sunrise Music. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته You're listening to Sunrise Radio 103.2 FM on 100.6 FM across the West Yorkshire and not forgetting on DAB Plus Bradford, Keighley, Ilkley, Skipton, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington, Milton Keynes में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा and also you can download this one already up on Apple Play Store and Google Play Store and yes definitely and also on www.sunriseradio.fm and online on www.sunrise.radio. That is all about and today is a very special program which I'm going to be doing from now till 11 o'clock or sab doston ke liye kyunki aapko pata hai ki muharram ka ye jo ayyam chal rahe hain aur ye dukh bhare hain aur hum jo na yahan pe badi adab adab se badi प्यार के साथ बड़े खलू के साथ एक हम यहाँ पे पेश करेंगे आपके लिए नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे कुछ कसीदे पेश करेंगे कुछ नशीद पेश करेंगे यहाँ पे और अपनी अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं 01274306 पे और हमेशा मैं बात करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि ये जो माह महरम है जो महरम है और इसमें जो ना महरम में अदब अदाब बहुत ही ज़रूरी है इत्राम जो ना बहुत ही ज़रूरी है और आप कुछ भी नहीं कर सकते इत्राम करें और एक दूसरे के साथ इनवाइट करें एक दूसरे को बताएं ये मरम क्या क्या है और जो ने कुर्बानी दी है क्यों दी है कैसे दी है वो भी अपने बच्चों को अपने औलाद को अपने जो नेबर्स हैं उनके लिए बताएं उनको और यहाँ मरम क्यों मनाते हैं ये मरम क्यों है और ये भी बहुत ही ज़रूरी है और ये भी हम सब दोस्तों के लिए है क्योंकि उनकी बदौलत और यहाँ पे जो हमारा जो इस्लाम जिंदा है और उनकी और जितनी भी उनकी हम तारीफ करें और कम है और उनमें शरीक हम दुख में क्योंकि ये जो दिन चल रहे हैं हर रोज़ के दिन चल रहे हैं जो महरम के हैं और इसमें जो ना वो एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है, दर्द भरी स्टोरीज हैं और जो वाकिया हैं और उसमें भी आप मजलिस में जाएं, मजलिस में बैठें और नियाज वगैरह लें भी दें भी और एक दूजे के साथ जो ना ये हमेशा मैं बात करना चाहता हूँ और एवरी ईयर मैं एक बात करता हूँ और माह क्योंकि जो महरम है और महरम के बारे में क्योंकि हमें माह रमज़ान के भी प्रोग्राम करता हूँ और यहाँ पे खुसूसन प्रोग्राम होते हैं माह रमज़ान के भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और बहुत ही खूबसूरत है वो भी माह रमज़ान के प्रोग्राम होते हैं और यहाँ पे हमने महरम का भी प्रोग्राम करना है आप सब दोस्तों के लिए करना है क्योंकि अब मेरा फ़र्ज़ है और मेरा हक है क्योंकि मैं भी एक चाहने वाला हूँ, मैं भी एक दीवाना हुई, मैं भी एक शदाई हूँ उनका और पंत पाक मानने वाला हूँ और आप दोस्तों के लिए प्रोग्राम होगा और काफ़ी मुझे कॉल्स आ रही हैं नज़र यहाँ पर आ रहा है माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे पेश करना है आप सब दोस्तों के लिए ये जो कलाम होगा आप दोस्तों के कलाम होगा बहुत बहुत शुक्रिया अब मैं शुक्रगुजार हूँ ममनून हूँ आपका भी कि जिन्होंने मेरा जो हौसला अफजाई कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि जो जो दर्द है ना ये दर्द ये हमारा भी दर्द है बिलीव करें किसी के घर में फौदगी होना तो उनको पता होता है कि फौदगी किसको कहते हैं क्यों क्या होता है फौदगी के घर में क्या होता है और ये इत्राम जो ना बहुत ही ज़रूरी है बहुत ही ज़रूरी है आप कोशिश किया करें कि इस दिन इन दिनों में कोशिश करें कि या तो कोई किसी शादी पर ना जाएँ या शादी पर जा रहे हैं इत्राम जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं ना किसी के बर्थडे मनाते हैं ना किसी की शादी में शिरकत करते हैं क्योंकि ये हमें चल रहे हैं ये दिन चल रहे हैं ये एक बहुत ही ख़ास दिन है बिलीव करें और बहुत ही ख़ास दिन है और ये जो करबला का वाकया हुआ है आपको पता है और वो भी ज़रूरी है और दोबारा मैं कहना चाहता हूँ कि इत्राम जो ना बहुत ज़रूरी है इत्राम करें रिस्पेक्ट करें और एक दूजे को दावत दें दावत भी बहुत ही ज़रूरी है और ज़रूरी देनी चाहिए अपनी औलाद को अपने बच्चों को और बिलीव करें कि मैं आज किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे वाकया सुनाया कहते हैं कि मेरा बेटा जो ना वहाँ पे माशाल्लाह वो बैठा हुआ था तो वो उसने नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुन रहा था माशाल्लाह और नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान मुबारक को पेश हो रही थी वहाँ पे तो उन्होंने वाले साहब ने पूछा कि आप क्या कह रहे हैं तो माशाल्लाह क्योंकि छोटा बच्चा है तो उन्होंने कहा बाबा आपको नहीं पता है कि महरम के दिन चल रहे हैं महरम हो रहा है देखो ये होती है खूबसूरती यही वो बात होती है खूबसूरती होती है कि देखो महरम में क्योंकि अपने बच्चों को बताएं महरम के बारे में उनको बताना चाहिए उनके जो फ्रेंड्स हैं फैमिलीज़ हैं उनको भी बताना चाहिए कि यार ये महरम है क्यों है अदब अदाब इत्राम हमेशा में कहते कुछ ना करें रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट होनी भी चाहिए और यहाँ पे हमने ये कलाम पेश करना है आप दोस्तों के लिए होगा आज बॉलीवुड के वैसे मैं बॉलीवुड शो करता हूँ प्रोग्राम होता है गानों का प्रोग्राम होता है तो आज मैं कोई गाना पेश नहीं करूँगा और यहाँ पे कोई गाना पेश नहीं होगा आपसे लेके 11 o'clock तक कि आपने गाने सुनते रहते हैं दिन में आपने पूरे गाने सुने होंगे और आज जो प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे एक कव्वाली का प्रोग्राम होगा एक नादानी का प्रोग्राम होगा एक कलाम का प्रोग्राम होगा और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे सब तो बेहतरीन सब तो आला माशाल्लाह वो अली अली यहाँ पे या अली मदद और यहाँ पे हमने ये पेश करना है
5: Hit of the Hour, brought to you in association with Pakistan Jewelers. 1 Duckworth Lane, Bradford, BD9 5ER. Call now 01274 491 442.

राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर है। काफ़ी दोस्त हमें याद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और मैं तय दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आपका कि आप हमें याद कर रहे हैं। राजा शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद किया है, और बहुत बहुत शुक्रिया जाली मदद, पीर मौला अली मदद, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप भी माशाल्लाह मजलिस में जा रहे हैं, माशाल्लाह आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और काफ़ी दोस्त हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और जो हमारा साथ है शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप ही हमारा साथ दे रहे हैं। जज़ाकअल्लाह खैर आपका भी। वाजिद भाई हैं, आपका भी शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आपका भी, और चौधरी फरियाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने दुआएं मेरे लिए की हैं, और बड़ा ही अच्छा लगा, और माशाल्लाह माशाल्लाह आप इतनी दुआएं दे रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम तो प्रोग्राम में तो करता रहते हैं, आपको पता है ना कि हमेशा मेरा प्रोग्राम बॉलीवुड का होता है, और जैसे माह रमज़ान में प्रोग्राम होते हैं करता हूँ माशाल्लाह, मैं दो प्रोग्राम में तीन प्रोग्राम करता हूँ माह रमज़ान में भी, और माशाल्लाह हमारी कोशिश यही होती है कि कम्यूनिटी को साथ रखें, जो भी कम्यूनिटी है, और मेरा एक ही काम होता है कि सबको रिल मिल के, एक खूबसूरती यही है कि गुल फूलों का गुलदस्ता है कि सबको जमा करें, सबको इकट्ठा करें, और मेरा एक ही मकसद है कि सब आएं, और जैसे वो सुई तो आगे का काम हो रहा है, वो जोड़ने का काम हो रहा है, और मेरे मैं भी एक मानने वाला हूँ माशाल्लाह, पंच पाक के मानने वाला हूँ, उनका मैं एक शदाई हूँ माशाल्लाह, और हम कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम हो जाए माशाल्लाह कि आप आएँ और इसमें प्रोग्राम में शिरकत करें माशाल्लाह, अपने कलाम लेके आएँ माशाल्लाह, और काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं यस आपने नेक्स्ट आवर में आप आएंगे, अपने अपने कलाम लेके आएँ माशाल्लाह, और अपनी खूबसूरत जो है अंदाज माशाल्लाह आपका अंदाज है, और ये ख्याल रखें कि यहाँ पे कोई किसी को मुबारकबाद नहीं देनी है कि ये जो क्योंकि ये जो दिन चल रहे हैं बहुत ही इत्राम के दिन हैं, और क्योंकि आपको पता है ये शो के दिन हैं, और ये दिस इज़ द टाइम वी डोंट आई डोंट एक्सेप्ट एनी थिंग, यू नो आई कांट विश एनी बॉडी एनी थिंग दैट इट वॉज बिकॉज आई एम यू नो बिकॉज रिस्पेक्ट ऑफ महरम महरम इफ़ यू नॉट शो वॉट इज़ महरम इज़ ऑल अबाउट आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑन नेक्स्ट आवर में इंशाल्लाह, और आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि आप हमें याद करते हैं, और ये कुछ ना करें इत्राम जो ना रिस्पेक्ट है ना कुछ करें कि यू नो प्लीज़ यू नो बी यू नो वेरी वेरी हम्बल यू नो दिस कपल ऑफ डेज, वैसे भी करना चाहिए ऑल द वे थ्रू द ईयर, बिकॉज इस्लाम जो है ना वो सब के लिए है, और सब के लिए है, और जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं इस्लाम बचाने के लिए, दीन बचाने के लिए, नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, उनके बच्चों का, उनके ख़ानदान का दीन है, उन्होंने कुर्बानी दे के हमें ये दीन दिया है, तो हम ना शुक्रें बिलीव करें, वी आर यू नो वी डोंट you know we don't be honest with you we don't appreciate it this is what the problem is this is what the issue we have because we don't appreciate because hame deen mila hai free mein mila hai kuch hame nahi karna pada to hame iski qadr karni chahiye aur iska bhi bahut hi qadr karni chahiye bahut hi karni chahiye aur mesha main kehta hu aaj bhi main kahunga please please please please look after each other look after your family friends firqa bazi na kare please for god's sake yeah we all human we all you know hamara ek islam hai aur hamare nabi aqa muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुरान पाक में है कि अले बैत और नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़ानदान उनके बच्चे माशाल्लाह जो पैंतम पाक है और कुरान को गोड़ के रखें साथ में रखें आले बैत को कुरान को दीज आर द थिंग्स उनके आखिर में हमें काम आएगा यू नो वे एवरी चीज डज मैटर वे एवरी हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह को याद करते हैं नमाज फ़र्ज़ है नमाज फ़र्ज है यस इट इज़ फ़र्ज यू शुड डू द आज भी है उमरा भी है हर चीज़ करें वो आले बैत की कदर करें रिस्पेक्ट करें जब आप नमाज पढ़ते हैं जब आप कहते हैं कि आले मोहम्मद वाले मोहम्मद क्यों कहते हैं इसका क्या मायना है आले बैत दस वही चीज़ दस वी शुड बी इज़ वाल आन यहाँ पर हमने ये पेश करना है और इसको जो ना साथ में रखें और साथ में रखना भी चाहिए और यहाँ पर हमने ये कलाम पेश करना है और इंजॉय

बहुत बहुत शुक्रिया जहीर साहब, आपने बीचने से हमें याद करें, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, आपका भी आपने हमें दुआएं दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ने भी याद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर आपका भी, और हमारे शाह जी हैं मजलिस में जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह, हमारा भी सलाम उनको मिल जाना है, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का कि आप आएँ और यहाँ पर सनराइज़ रेडियो में अली अली हो रही है माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया जितनी आपने दुआएँ की हैं, माँ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं, जज़ाकअल्लाह खैर कि आप ही प्रोग्राम को पसंद करें, इंजॉय करें, हमने कोशिश की है कि हमने सब के लिए प्रोग्राम करना है, और प्रोग्राम किया है कि बहुत बहुत शुक्रिया अतिकर साहिबा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मैनचेस्टर से याद कर रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जज़ाकअल्लाह खैर कि आपने भी हमें याद कर रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, ये कलाम मैं आपके लिए पेश करूँगा, अपनी फैमिली के लिए पेश करूँगा, सिमी जी हैं बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर आपका भी, आपने भी दाद दी है माशाल्लाह, और यहाँ पर सुन रहे रेडियो में माशाल्लाह मुहर्रम का प्रोग्राम हो रहा है, आई वॉज ड्राइविंग फ्राम बर्मिंगम से वापस में आया हूँ, और ये खसूसन प्रोग्राम करने के लिए, बिलीव करें कि आई वॉज गोना यू नो मिस द प्रोग्राम, तो आज मैं खसूसन क्योंकि अपनी भी मेरी मजबूरी थी, और क्योंकि हमने भी मजलिस में जाना है, और एक दो चीज़ें हैं जो जो पर्सनल चीज़ें हैं वो भी हैं, तो वो भी बहुत ही ज़रूरी था हमारे लिए, और बहुत ही ज़रूरी है, और जब वैसे भी हम इन दिनों में जो मुहर्रम के दिन हैं, वैसे भी हम जो काफ़ी बिजी हैं, जो जो दिन हैं हमारे लिए, और जो अगला जो हफ्ता है उस दिन में बिज़ी होंगे, क्योंकि हमने जो ना अशूरा के दिन जो रोज़ा भी रखना होता है 9-10 मुहर्रम को भी, और हम 9 के मुहर्रम में रोज़ा रखते हैं, जैसे हमारे मोहतरम माशाल्लाह ने फ़ोन किया शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, वैसे कहते हैं कि रखना चाहिए रोज़ा जो ना बहुत ज़रूरी होता है, और ये बहुत ही कोशिश किया करें, और कोशिश करें कि उसमें जो ना जो अशूरा के दिन हैं 9 मुहर्रम जो है उसमें रोज़ा रखें, कोशिश करें, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इसमें किस वो आपका काम है, देखो कि वो जो दिन हैं और उसमें जो ना वो थर्सडे फ्राइडे या सैटरडे उसमें जो ना वो उसमें रोज़ा रखें, और कोशिश किया करें कि या एक रखें या दो रखें, और ऐसे ही होना चाहिए, दो मिला के रखें तो ये अच्छी चीज़ हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, हम कोशिश करते हैं सबको जो ना ये बताना, और इहतराम जो मैं हमेशा में कहता हूँ कि इहतराम करें, प्लीज़ मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, और कि वैसे ऐसी वैसी बात ना करें जो इस मुहर्रम में ना, और जिस मत अपनी कोशिश करें, ये ना कहें कि यार वो उसने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने, जिस मत वो अपना जो काम करेगा, वो अपनी बात करेगा, जब वो टाइम आएगा, वक्त आएगा, वो अपना ही, वो उसका जो ना वो जो भी उसने किया है करेगा, वो हकदार वो है, आप नहीं हैं, जो भी जिसने भी जिस कर रहा है, जो भी कर रहा है, जिस मत इस वह भी चीज़ है, क्योंकि ये जो कहते हैं ना जब एग्ज़ाम पेपर होते हैं ना, तो वो हर आदमी के हर बंदे के अपने एग्ज़ाम होते हैं, अपने अमाल होते हैं, अपने अमाल देखते हैं, और वो कहते हमेशा ही हमारे मुर्शिद कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि कहते हैं कि यार हम खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाना है, नहीं, खाली हाथ आएँ अच्छे अमाल लेके जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि खाली हाथ हम आएँ और अमाल जो है ना आपके ने लेके जाना है, वो अच्छे अमाल होंगे, दुनिया आपको याद करेगी, दुनिया आपके रोएगी, दुनिया आपकी बात करेगी, यार ये बंदा ये बंदी जो भी अल्लाह के हम बंदे हैं जो भी हैं, और यहाँ पे कोई फरिश्ता तो कोई भी नहीं है, हम सब गुनहगार हैं, मैं एक गुनहगार यहाँ पर बैठा हूँ, मैं अपनी बात करूँ कि मैं एक गुनहगार बैठा हूँ, और वही बात हो रही है, मैं अपनी बात करूँ, मैं किसी और की बात नहीं करना भी नहीं चाहता, ना मैं करूँगा किसी का, क्योंकि इट इज़ मैटर मेरे लिए मैं कौन हूँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं खुद में कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये वो बात हो रही है, और अपनी बात हो रही है कि जब दुनिया के जाएंगे अल्लाह ताला आपसे

0: इम्तहान होगा, सब ने ये जो जो पास करना है या फेल करना है जो भी होगा वहाँ देखा जाएगा जिस दिन वो होगा, क्योंकि सब ने जाना है, जो दुनिया में आया है उसने जाना ही जाना है। हाँ ये है कि थोड़ा सा अदब अदाब इत्तराम, मैं हमेशा कहता हूँ कि इत्तराम जो ना पहले मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक प्लीज़ कोशिश किया करें, ये 10 दिन हैं, 10 दिनों में जो भी हैं इत्तराम बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ के कहना लगाएं, हंसे ना, ये ना करें, वो ना करें, क्योंकि देखो कि किसी के मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि लंबी बात हो जाएगी, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं ज़्यादा एक बात करूँ, क्योंकि मैं क्या कहते हैं कि और भी काम होते हैं यहाँ पर। और देखो कि आपके घर में अल्लाह ना करे कि फौतगी हो, अल्लाह ना करे, चलो मेरे घर में, अपने मेरे घर में कोई फौतगी हो तो नेक्स्ट डोर में वहाँ पे कोई तमाशा हो रहा है, तो क्या ख्याल है वो तमाशा होने देंगे हम या कुछ बात होने देंगे या क्या, क्योंकि अपने अपना एक होगा यार देखो कि यहाँ पे फौतगी हो चुकी है, हमने इत्तराम करना है, हमने रिस्पेक्ट करना है। ये जो चीज़ें होती हैं ये आप आगे पीछे देखें, सुने आगे पीछे देखें यार ये कैसे दिन जा रहे हैं, अपने औलाद को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को बताएं, ये जो जो बड़े ही इत्तराम वाले दिन हैं, अदब वाले दिन हैं, उनको बताएं ये मरहम क्या है, क्यों हुआ है, जो कबला का वाक़िया हुआ है कैसे हुआ है, जो नन्हे मुन्ने बच्चा जो अली असगर छोटा बच्चा 6 माह का बच्चा उसकी क्या गलती थी, तो ये बातें जो होती हैं ये बताएं, क्योंकि हर रोज़ में जो ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ वाक़िया हुए हो रहे हैं, तो ये हर रोज़ में जैसे बातें होती हैं तो करें, क्योंकि जो बातल करबला ये जो एक बातल ऐसी थी कि दुनिया जो ना वो दुनिया की, पहले मैंने ये बात यह है कि यहाँ पे बयान ही नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इतना दिल ही नहीं मेरे पास को मैं बयान करूँ जो जो वाकया हुए हैं, कैसे हुए, वो क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आई कैन डू इट, बिलीव करें कि आई कैन डू इट, क्योंकि वो दिल आपको चाहिए, वो बातें करना, वो जो जो गुफ्तगू करनी, वो जो वाकया हुए हैं कैसे हुए हैं, इट्स इम्पॉसिबल, बिलीव करें इज़ वेरी वेरी वेरी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू इवन टॉक अबाउट इट, फॉरगेट, जब आप सुनेंगे ना कि आपके अंदर दिल है ना तो बिलीव करें यू विल क्राई, यू विल क्राई रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू विल कैन से राइट, जस्ट लुक अ बटल ऑफ करबला, आप देखें उनको, देखें खाली वो सुने कहानी सुने, वो वहाँ बैठ जाएँ सुने कि क्या हुआ था, वो कैसे हुआ था, जस्ट सिट डाउन देयर फॉर 10-15 मिनट्स, यू आई डोंट थिंक यू आर एबल टू इवन लिसन टू इट फॉर 2 मिनट्स, दैट्स हाउ डिफिकल्ट टाइम वाज, हाउ बैड टाइम वाज, और जो कूफे वालों ने क्या किया, कूफे वालों ने कैसे किया, क्या हुआ वहाँ पे, किसने साथ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, वो भी आप सुने देखें, अल्लाह माफ़ करें। एनीवे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, कीप इट लॉक्ड विद सुनाई रेडियो।
1: जुतियां भी कसी गई हैं पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: All right, time in the studio is 8:50 in UK. Good evening to you all. और यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक करनी है. अब ब्रेक के फौरन बाद एक खूबसूरत कलाम आने वाला है आप सब दोस्तों के लिए होगा. और बहुत बहुत शुक्रिया जाकल्ला खैर कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी जिन्होंने हमारा साथ दे रहे हैं, जिन्होंने मुझे फ़ोन कर चुके हैं, जो कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और डॉक्टर सईद एहसान और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप लंदन से हमें याद कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. हम थैंक यू वेरी मच ऑल दोज लवली कॉल फ्रॉम बर्मिंघम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप ही हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आई लाइक आई सेड बिफोर एज़ वेल, आई केम ऑल द वे फ्रॉम बर्मिंघम टुडे एंड जस्ट टू डू दिस प्रोग्राम, बिलीव इट नॉट, एंड जस्ट टू डू दिस प्रोग्राम टुडे. और आपका थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह खैर. और आई वाज ड्राइविंग फ्रॉम हियर टू बर्मिंघम दिस मॉर्निंग एंड देन आई वाज ड्राइविंग बैक फ्रॉम बर्मिंघम. 3 hours it took me, 6 hours altogether, and just to do this program today, believe it or not. And thank you very much, JazakAllah khair, ke aapne hamara saath dene. Bahut bahut shukriya aapka bhi. Thank you very much. Aur jo hamari family hai, hamara program sun rahe hain, JazakAllah khair aap sabka bhi. Aur bahut bahut shukriya ke aapne hame phone kar rahe hain aur zara zai kar rahe hain. Aur ye ek program ho raha hai Muharram ke hawale se ho raha hai. Aur bade hi ehtiram ke saath, bade pyar ke saath hame ye bhi isme hamne bhi hissa dal rahe hain. और अल्लाह ताला हमारी भी हिस्सा को कबूल मंजूर फरमाए. और पंच तफैल माशाल्लाह, पंच पाक के तफैल हमारी भी जो भी मुश्किलें हैं, मुश्किलात हैं, हल करें. और वाजिद भाई आपके खलफुसिन दुआ करेंगे. और माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जाकल्ला खैर के आपने भी हमें याद करें, आपने भी दुआ के लिए रिक्वेस्ट की है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जाकल्ला खैर आपका भी कि आपने हमें साथ दिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फैमिली के लिए, हम दुआ गो हैं. आपके लिए भी, आपके बहन भाई हैं जो साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ हैं, उनके लिए हम दुआ गो हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, जाकल्ला खैर आप सबका भी. और यहाँ पर हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे. ब्रेक के फ़ौरन बाद यहाँ पे खूबसूरत कलाम होगा आप दोस्तों के लिए होगा. एंड देन विल टेक मी टू द 9 o'clock न्यूज़. आफ्टर 9 o'clock के बाद हम आप सब दोस्तों के लिए लाइव कॉल का प्रोग्राम होगा. उसमें आपने शिरकत करनी है और ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे महरम का प्रोग्राम खसूसन प्रोग्राम हो रहा है और इसमें आपने ख्याल रखना है. ये बहुत ही ज़रूरी है. आज कोई गाने नहीं होंगे, कोई बॉलीवुड, कोई लॉलीवुड, कोई गाने नहीं होंगे. और बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि हम जो ना एक रिस्पेक्टेबल प्रोग्राम कर रहे हैं, एक महरम के हवाले से बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम कर रहा हूँ. और मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आप सबका भी. और मैं शुक्रगुजार हूँ सनराइज रेडियो का, मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका कि उन्होंने हमें मौका दिया. माशाल्लाह जाकल्ला खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका.
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: The Hour, brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.
1: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio on 103.2 FM, 100.6 FM across the West Yorkshire, and DAB Plus, Bradford, Keighley, Ilkley, Skipton, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington, Milton Keynes. And you can also, very, very soon, you're going to be launching on Derby, very, very, very soon, and that's going to be happening within days, or Baba Shukriya Kabi. And you can also download the Sunrise app on Apple Play Store, Google Play Store, and not forgetting online www.sunriseradio.fm, www.sunrise.radio. That is all about Sunrise Radio, and we got breaking news for you, as we already mentioned before as well. And are you streaming on TikTok Live or thinking about getting started? Join the Sunrise Radio creative network at the UK TikTok, a live agency helping the creator to grow the audience, development the brand, and get the promotion on Sunrise Radio. To find out more, apply, visit the Sunrise Creative Network page at www.sunriseradio.sunriseradio.com. That is www.sunrise.radio. That is all about. And yes, if you want to become the next superstar of the TikTok as well, and this is the platform, and this is going to be the platform, Sunrise Creative Network, and you want to be a superstar on the TikTok, that's what's going to be. And yes, you have to be in it to be the number one. ठीक है, that was all about. और यहाँ पे हमने क्या करने के लाइव कॉल का सिलसिला है, और जो दोस्त मुझे फ़ोन करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आप फ़ोन करेंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब के भी. और यहाँ पे लाइव कॉल का सिलसिला है, और क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा है, आप दोस्तों की वजह से माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम, मैं कहता हूँ कि ये मुहर्रम का प्रोग्राम है, और क्योंकि मुहर्रम के प्रोग्राम में अदब अदाब ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है. और महरम का प्रोग्राम हो रहा है, और इसमें क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये एहतियात बहुत ही ज़रूरी है, एहतियात करनी चाहिए. जो हमारे बहन भाई साथी दोस्त अहबाब अजीज़ जा रहे हैं मजलिस में, माशाल्लाह, उनको भी हम कहते हैं कि हमारा भी सलाम वहाँ पर देना है, और जो भी शिरनी है, दुआ है करनी है, मेरे लिए दुआ करनी है, हमारे सनराइज रेडी के लिए दुआ करनी है, हमारे जो शमीन बहन भाई हैं जो बीमार हैं उनके लिए खसूस दुआ करें, एंड स्पेशली जो दुआ करनी है कि हमारे वाजिद भाई उनके लिए दुआ करें, हमारे चौधरी फरियाज साहब उनके लिए दुआ करें, हमारी फैमिली के लिए दुआ करें जो दुनिया से पर्दा पोश हो चुके हैं, उनकी खसूस आपने दुआ करनी है. और यहाँ पे लाइव कॉल का सिलसिला होगा, यहाँ पे अतिका साहिबा हैं ऑल द वे फ्राम मैनचेस्टर से हमारे साथ दे रहे हैं, उनको यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु.
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु.
1: या अली मदद,
2: मौला अली मदद. तो सबसे पहले तो ये महफिल जो आपने सजाई है
1: जी,
2: तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक इसकी आपको जज़ा दे.
1: आमीन आमीन.
2: बहुत ही खूबसूरत महफिल है
1: जी,
2: तो इसलिए इसमें मुझे उम्मीद है कि जितनी भी मेरी लिस्ट होती है कि सब लोग आए और इसमें हिस्सा डालें
1: जी.
2: ये बहुत ही खूबसूरत महफिल है. अक्सर हम हर रोज दूसरी महफिलों में आते हैं जब आप रंगे महफिल होती है, और ये महफिल तो बहुत ही खूबसूरत है
1: जी.
2: इसमें हिस्सा डालना
1: जी
2: बहुत जरूरी है, मैं समझती हूँ, इसलिए मैंने कॉल की है कि मैं भी अपना हिस्सा डाल दूँ
1: जी.
2: तो सबको मेरी सारी लिस्ट को सलाम है.
1: वालेकुम सलाम.
2: तो कुछ अशार हैं
1: जी जी.
2: इस गम के महीने की तरह मैं अपने अशार पेश करूंगी सबके लिए
1: जी. और जो आपके भी घर में फौतगी हुई है, अल्लाह की मर्जी, और इनिल्लाहि व इनिल्लाहि राजिऊन, और मैं ज्यादा आपको दुख नहीं करना चाहता हूँ, और हमारी तरफ से भी हम ही आपके दुख में शामिल हैं.
2: थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया
1: जी.
2: ये भी दुख का दुख के दिन है, इसलिए मैं हाजिर हुई हूँ
1: जी जी.
2: तो मैंने कहा ये दुख सब दुख में है
1: जी, ऐसी
2: ऐसा ऐसी कोई मुसलमान नहीं है जो इस दुख में शामिल ना हो, तो इसलिए
1: जी
2: हम भी इसमें शामिल हैं. आपका बहुत शुक्रिया
1: जी.
2: तो कहते हैं कि इनको अपना इमाम लिखती हूँ और आली मकाम लिखती हूँ। इनको अपना इमाम लिखती हूँ और आली मकाम लिखती हूँ। इनकी सीरत की रोशनाई से जिंदगी का निजाम लिखती हूँ। इनका गम रूह में उतरता है, इनका गम रूह में उतरता है, इसी गम को दवाम लिखती हूँ। वो रसालत की आंख के तारे, वो रसालत की आंख के तारे, खुद को इनका गुलाम लिखती हूँ। करबला भूलती नहीं हूँ मैं, सुबह लिखती हूँ शाम लिखती हूँ। मैं ये फिजाने फिक्र शबीरी जुल्म का इख्तिताम लिखती हूँ। इस सादत का शुक्र वाजिब है, इस सादत का शुक्र वाजिब है, मैं भी इनको इन पर सलाम लिखती हूँ। इनको अपना इमाम लिखती हूँ और आला मकाम लिखती हूँ। पहले पहल अजब लगी हिजरत हुसैन की, फिर मुझको याद आ गई निस्बत हुसैन की। पहले पहल अजब लगी हिजरत हुसैन की, फिर मुझको याद आ गई निस्बत हुसैन की। था अजन भी चिराग भी गुल कर दिए गए, छोड़ी नहीं किसी ने रफाकत हुसैन की। छोड़ी नहीं किसी ने रफाकत हुसैन की। किरदार शर्त खास है इनकार के लिए, इसकी खड़ी मिसाल है सीरत हुसैन की। करबल की सुर्ख रेत पे सजदा अदा किया, करबल की सुर्ख रेत पे सजदा अदा किया, बेमिसल हो गई है इबादत हुसैन की। आंखें तो है निगाहें बसीरत कोई नहीं, खुलती किसी पे खाक हकीकत हुसैन की। हर एक लहू की बूंद पे लिखा है इनका नाम, रोशन है मेरे दिल में मोहब्बत हुसैन की। कैसे किसी यजीद की बैत करूं, कैसे किसी यजीद की बैत करूं, मैं कर चुका हूँ कबूल अमामत हुसैन की।
1: हाय हाय
2: पहले पहला जब लगी हिजरत हुसैन की, फिर मुझको याद आ गई निस्बत हुसैन की। किसी की प्यास में लिपटी हयात ढूंढते हैं, हुसैन ऐन ढूंढते हैं, कायनात ढूंढते हैं। यहाँ पे सांस भी तलवार की अना पर है, ये करबला सरे मक्तल हयात ढूंढते हैं। ये तिश्नगी तो अजल से हमारे हिस्से में थी, सो अपने जख्म में खुद ही फिरात ढूंढते हैं। हम अहले दर्द हैं सहरा की खाक ओढ़े हुए, अजल से खैमा सब्रो सबात ढूंढते हैं। हम आंख आंख नहीं एक किताब गिरिया हैं, हम अश्क अश्क में मानी की जात ढूंढते हैं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: शहीद दस्त के सजदे का ये असर है कि हम झुके हुए हैं मगर मुमकनात ढूंढते हैं। ये इश्क आले नबी का कमाल है, ये इश्क आले नबी का कमाल है, चिरागे शाम में सूरज की बात ढूंढते हैं। किसी की प्यास में लिपटी हयात ढूंढते हैं, हुसैन ऐन ढूंढते हैं, कायनात ढूंढते हैं। कुछ इलाज दे नहीं था माँ सवाए करबला, इसलिए आए 72 सर बराए करबला। कुछ इलाज दी नहीं था माँ सवाए करबला, इसलिए आए 72 सर बराए करबला। एक सर है बेरिदा एक सर है बेबदन, एक खुदाए शाम है एक खुदाए करबला। अहले कूफा के खतों में थे वफा के तज़करे, अहले कूफा के खतों में थे वफा के तज़करे, बन गए वो खत ही लेकिन इब्तदाए करबला। पूछा आबिद से किसी ने सुर्ख अशकों का सबब, रो के बोले शाम हाय हाय करबला।
1: हाय हाय करबला, हाय हाय।
2: रो के बोले शाम हाय हाय करबला, जो भी उसके रूबरू था मिट गया है बेनाम, छा गई पूरे जहां में बस सदाए करबला। सरसर दश्ते बला सब कट गए घर लुट गए, हो गई शामे गरीबा इंतहाए करबला, हो गई शामे गरीबा इंतहाए करबला। कब से फितरस कह रहा है अहले अर्शो फर्श से, मैं जैसों की मेरे जैसों की दुआ खाके शफाए करबला, मेरे जैसों की दुआ खाकाए शफाए करबला, कुछ इलाज दी नहीं था माँ सवाए करबला, इसलिए आए 72 सर बराए करबला। बहुत शुक्रिया आपने,
1: बहुत बहुत शुक्रिया जकला, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अंदाज़ वो ज़तीकर साहिबा ऑल द वे मैनचेस्टर से, और यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे और ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्लान पेश किया है, और बहुत बहुत शुक्रिया।
3: ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਓਹੋ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ। ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ? ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 9 3 5।

राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमारा साथ देने और हमारा साथ दे रहे हैं, यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन और कहाँ से, और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हाफिज मोहम्मद यहिया हैं माशाल्लाह, और हाफिज कुरान है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया यंग मान के आपने हमें याद किया। और जी गो हेड विद योर कलाम, आपके हमें सुनाएंगे जी, बिस्मिल्लाह करें।

0: माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आफिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। और हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपके वालिदैन को हम सलाम पेश करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुछ और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, आपने कोई दुआ करनी है दुआ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी गो अहेड, बिस्मिल्लाह करें। जी बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह जी।
1: इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम

दस क्या क्या ये कम है के मेरे खुदा ने मुझे क्या ये कम है के मेरे खुदा ने मुझे अपने

0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया नन्ने मुन्ने साथी हमारे, और ये हाफिज़ या माशाल्लाह, एंड हाउ इज़ इट डूइंग फॉर यू माशाल्लाह, हाउ इज़ योर स्कूल गोइंग ऑन, हाउ इज़ योर एजुकेशन गोइंग ऑन? माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआएं में याद रखें, गिव मी माय सलाम टू यू वालिदैन एज़ वेल टू योर डैड एज़ वेल, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एंड दैट वाज द यंग मैन, माशाल्लाह हमेशा ही हमारा साथ देते हैं जब भी प्रोग्राम में करता हूँ माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया, व्हाट अ लवली जेंटलमैन माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चौधरी फ़रियाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी लाइन टॉप हो चुकी है, आप दोबारा हम फोन करेंगे तो आपकी मैं लाइन ले लूंगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जज़ाकअल्लाह खैर कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम भाई हैं। उससे पहले हमें छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे खूबसूरत और बेमिसाल और माशा जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और ये हमारा साथ दे रहे हैं नदीम मंसूर साहब, हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह खैर कि वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, सईद एहसान है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और यहाँ पे हमने क्या करना है क्योंकि आर्ट ब्रेक नहीं है फॉर सम रीज़न, नॉट टू वरी वी will go on to the next caller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji hazur. Wa alaikum
1: assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Mashallah mashallah, kaisi tabiyat hai mere bhai ki?
1: Ji alhamdulillah, aap kaise
0: hain? Allah pak ka shukr, karam karam aap bhaiyon ka pyar hai aur aap aa rahe hain mashallah, bahut bahut shukriya jazakallah khair ki aapne hame kimti waqt hame de rahe hain.
1: Koi baat nahi, koi baat ye sarkar ki bargah mein
0: ji ji
1: chand ashar hain.
0: Ji ji ashar
1: حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں.
0: جی جی ماشاءاللہ سبحان اللہ.

हुसैन है नबी के नूरे ऐन है, ये कौन हक

हुसैन जिसकी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैन जिसकी सना ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैन जिसकी दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह।

रस्म शाक है के वफा करते हैं, यानी हर हाल में हक अपना अदा करते हैं। हौसला हजरत शब्बीर का अल्लाह अल्लाह, हौसला हजरत शब्बीर का अल्लाह अल्लाह, सर जुदा होता है और शुक्र खुदा करते हैं। हुसैन है हुसैन।

0: ईमान की तौकीर कहा जाता है, कुरान की तफसीर कहा जाता है।
1: सुभान अल्लाह।
0: ईमान की तौकीर कहा जाता है, कुरान की तफसीर कहा जाता है। बातिल के सामने जो कभी ना झुकी, बातिल के सामने जो कभी झुक ना सकी, उस जात को शब्बीर कहा जाता है। हुसैन।

0: जज़ाकअल्लाह खैर, जज़ाकअल्लाह खैर, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर। मैं तो खो गया हूँ इस कलाम में, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ और इसमें सब बयानी हो चुकी हैं, माशाल्लाह सब आ गए इसमें, और बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा जब आप होल्ड करेंगे आपको दोबारा हम लेके आएंगे, और क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसमें आप माशाल्लाह पढ़ चढ़ कर हिस्सा डालते हैं, माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा लगता है। जज़ाकअल्लाह खैर, और हमारे डॉक्टर साहब आपको सलाम पेश कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज़ उनके, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने थोड़ा जो होल्ड करेंगे यहाँ पे तो फिर मैं दोबारा आपको लेके जाऊँगा, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे नदीम मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे गिदन भाई हैं मिल्टन कीन से हैं, हमारी पाबी जान सुमित्रा जी हैं, उन्होंने सलाम पहुँचाया सब सुनने वालों को, और स्पेशली जो उनके जानने वाले हैं उनको उन्होंने सलाम पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, और यहाँ पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जी हजूर, माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी तबीयत है मेरे भाई की?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। आपने ये बहुत नाइस प्रोग्राम शुरू किया है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा।
0: आमीन आमीन।
1: और जो जितना हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अनु से प्यार करे, कहते हैं कि उनको भी उस शहजादे के साथ जन्नत में उठाया
0: जाएगा।
1: अल्लाह पाक आपकी ये कोशिशें कबूल करे।
0: आमीन,
1: और
0: आमीन। जी।
1: मैं इससे इन पाकीज़ा दिनों में ये पेश करने चला हूँ।
0: जी बिस्मिल्लाह।
1: जन सबा जनाबे अली से सलाम कह देना, सबा जनाबे अली से सलाम कह देना, नजफ के शाह से दिल का पयाम कह देना, सबा जनाबे अली से सलाम कह देना, सलाम कह देना। चराग़ दीन है सरताज फातिमा है अली, खुदा के प्यार है दामाद मुस्तफा।

0: अबे अली से सलाम कह देना, सलाम कह देना। अदब से फाता है खैबर के सामने जाना, जो पूछे हाल गरीबा तो अश्क भर लाना, फिर उनसे दुखड़ा हमारा तमाम कह देना। सबा जनाब अली से सलाम कह देना, सलाम कह देना। नजफ के शाह से दिल का पयाम कह देना, सबा जनाब अली से सलाम कह देना, सलाम कह देना, सलाम कह देना। शाय मदीना शाय दो आलम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम, तुम पे निछावर तुम पे फिदा हम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम। नूरे शबे मेराज तुम्ही हो, नबियों के सरे ताज तुम्ही हो, हुसन के पे कर नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम। दी है शजर ने आके गवाई, कंकरियों ने कलमा पढ़ा है। दी है शजर ने आके गवाई, कंकरियों ने कलमा पढ़ा है। सरवर दी पैगंबर आलम, सरवर दी पैगंबर आलम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम। शाये मदीना शाये दो आलम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम।
1: जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त मुझे दिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बड़ी मेहरबानी,
1: बड़ी मेहरबानी खैर आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह खैर कि आपने हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो हमारे मोहम्मद सलीम साहब हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। जज़ाकअल्लाह खैर कि आपने हमें याद करने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और काफ़ी दोस्तों की लाइन ड्रॉप हो चुकी है, आप जब मुझे दोबारा फ़ोन करेंगे तो नंबर एंडिंग 840 और आपने मुझे दोबारा फ़ोन करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सिमी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप ही दोबारा फोन करेंगे, बहुत शुक्रिया। चौधरी फरियाज साहब हैं, आपकी भी लाइन ड्रॉप हो चुकी है फॉर सम रीजन, तो आप मुझे दोबारा फोन कर सकते हैं जब भी आपको मौका मिले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे वैसे तो होनी चाहिए, यहाँ पे आर्ट ब्रेक होनी चाहिए, तो आर्ट ब्रेक नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने देखते हैं कि यहाँ पे कौन और कहाँ से वो हमारा साथ दे रहे हैं।

बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, और बहुत ही अच्छा लगेगा हमारा साथ देने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमारा साथ दे रहे हैं काफ़ी दोस्त आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं अभी कुछ कॉल नहीं लूँगा, क्योंकि अभी हमें थोड़ी देर के बाद अजान पेश करनी है, वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, सब के लिए ज़रूरी है। मगरिब की अजान हम पेश करने जा रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं कॉल नहीं लूँगा, और जिन दोस्तों की कॉल मिस हो चुकी है आप मुझे दोबारा फ़ोन कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और यहाँ पे कुछ, ये मेरे ख्याल में कि आपकी तरफ से शायद यहाँ पे कुछ नए कॉलर हैं, क्योंकि जब वो फ़ोन करते हैं यहाँ पे खामोशी हो जाती है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि लाइन ड्रॉप हो चुकी है, क्योंकि हमारे सिस्टम में थोड़ा सा मसला है। जब आप होल्ड करेंगे वहाँ पर खामोशी होगी, वहाँ पर ये आपने ख्याल रखना है। आपने जब भी मैं लाइन थ्रू हो जाए तो आपने वहाँ पर क्या करना है कि होल्ड करना है। जब वहाँ पर आप होल्ड करते हैं तो ऐसा लगता है कि लाइन ड्रॉप हो चुकी, क्योंकि वहाँ पे खामोशी है। और ये आपकी गलती नहीं है, यहाँ पे सिस्टम में ये कोई गड़बड़ कर रहे हैं, ये काफ़ी दिनों से गड़बड़ कर रहे हैं। तो आप जब भी आप हमें फ़ोन करें, जब भी आप हमारा साथ दें, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप होल्ड करें, और हमें पता है कि हमें आपकी लाइन जो है ना वो होल्ड पर है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसका ख्याल रखें। और जो ये जो नए कॉलर हैं, जो पुराने हैं माशाल्लाह, उनको तो पता है ये सिस्टम के बारे में, क्योंकि वो भी यूज्ड हो चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जज़ाकल्लाह खैर कि आप हमारा साथ देने। और बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा साथ पाकिस्तान में हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। कनेडा से आपने हमें याद कर रहे हैं, आपकी भी लाइन ड्रॉप हो चुकी है, हमें माजर चाह रहा हूँ आपसे भी, आई डू अपोलोजाइज। डॉक्टर साहब आपने पाकिस्तान से हमें याद किया है, और डॉक्टर शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, पाकिस्तान में कराची से आपने हमें याद किया है, तो आपकी भी लाइन ड्रॉप हो चुकी है, क्योंकि आपने फ़ोन किया है तो मैं वहाँ पे होल्ड किया तो आपने लाइन छोड़ दी है। तो कोई मसला नहीं, अब प्रोग्राम आप सुन रहे हैं तो आपने थोड़ी देर के बाद आप नेक्स्ट आवर में हमें याद करेंगे, तो मैं आपको लेके जाऊँगा हवा के दोष में। और ये यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और जो सुनने वाले हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ। और आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर महरम का हसुसिन हसम खास प्रोग्राम हो रहा है, और वो भी सनराइज़ रेडियो पे, ये भी एक हिस्ट्री बन गई है माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी मैं हर साल में ये प्रोग्राम करता हूँ, माहे रमज़ान का भी करता हूँ, महरम का भी करता हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कोशिश करूँ कि सब जो भी हैं, जो इस्लामिक त्यौहार हैं, जो इस्लामिक प्रोग्राम होते हैं, मैं करता हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है, वी आर वन फैमिली माशाल्लाह, एक यूनिटी है सबके साथ और हमारे के साथ भी, और हम कोशिश करते हैं कि सबको लेके आएं, और हमारे लिए सब सर आँखों पर माशाल्लाह, हम सब को इसलिए एक्सक्लूड करता हूँ। ये एक बहुत ही अदब आदाब, बड़े ही इत्राम, बड़ी ही रिस्पेक्टेबल महरम के दिन हैं, और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ कोशिश किया करें, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र किया करें और प्रेज़ करें। और जो जहाँ पे हंसना जो खुल के, ये जो इन दिनों में कोशिश किया करें कि थोड़ा जो प्रेज़ करें, थोड़ी रिस्पेक्ट करें। और जो बतलब कबला है, इसके बारे में जो महरम है, और आपका ये मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आपका, कि इसमें आपने थोड़ा जो एहतियात करनी है, वो बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि अजान ब्रेक होने वाली है, यहाँ पे मगरब की अजान होने वाली है, तो यहाँ पे हमने पेश करनी है मगरब की अजान ब्रैडफोर्ड यूके में, अपने पे मकामी टाइम टेबल देख के सुन के अपने नमाज अदा करेंगे, मेरे लिए मेरी फैमिली की दुआ करनी की पे लगता है सनराइज़ रेडियो।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया हॉल पे हैं और हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे उस्ताद हैं माशाल्लाह और उस्तादों की कदर करते हैं हम भी माशाल्लाह और शहीद एहसान हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया लंदन से इन्होंने टाइम हमें दे रहे हैं जो कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
1: बहुत बहुत शुक्रिया और सबको सलाम।
0: वालेकुम
1: सबको सलाम आपकी जो ऑडियंस है।
0: जी जी
1: तो बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: तो आप लोगों के लिए मैंने एक एक ही मुझे याद है ये जो
0: हम
1: शरीफ
0: जी जी जी माशाल्लाह बिस्मिल्लाह जी जी
1: आप लोगों के लिए
0: जी जी
1: मे अल्लाह ब्लेस एवरीबॉडी
0: आमीन
1: मे अल्लाह फजील सो आसिन
0: जी आमीन
1: मे अल्लाह ब्लेस एवरीबॉडी
0: बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान जी
1: अल्लाह
0: माशाल्लाह
1: अल्लाह Allahu
0: Wah
1: Malikul Mulk Malikul Mulk
0: Wah
1: La Sharika Lahu

وحده لا إله إلا

0: शम्स
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, इतनी खूबसूरत कलाम आपने सुना रहे हैं माशाल्लाह, और मैं तो इसमें खो गए बिलीव करें, और इट्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। नो नो गो अहेड।
0: शम्स तबरेज़, शम्स तबरेज़, गर खुदा कलाबी खुशबू खाला इल्ला हू।

उठदा है तेरे ही नाम तक, हर इंतहा है तेरी हमदो सना अलहम्दुलिल्लाह के तू

अल्लाह ये जमी जब न थी ये जहां जब न था ये जमी जब न थी ये जहां जब न था चांद सूरज न थे आसमां जब न था चांद सूरज न थे आसमां जब न था राज़े हक भी किसी पर आया जब न था न था कुछ यहाँ तब न था कुछ यहाँ मगर तू ही तू अल्लाहू अल्लाह।

0: बहुत शुक्रिया
1: सर, बहुत अच्छा लगा, इतना खूबसूरत है हमद बताया आपने सुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे जो ना जो आपकी जो उस्ताद मोहतरम है वो मुझे याद आ गए आज, और आपने जो कलाम सुना रहे माशाल्लाह, और बड़ा ही अच्छा लगा। और उन वाकई आप उनके साथ बैठते हैं माशाल्लाह, उनके साथ माशाल्लाह गुफ्तगू होती है, तो वही रंग जो है ना वो आप लेके आए आज, बिलीव करें, वही रंग बिलीव करें कि आई कुडंट इमेजिन, आई थॉट ही वाज डूइंग इट, और आई वॉज अमेज्ड, बिलीव करें, ब्यूटिफुल
0: क्या कहें आपको, मैं तो शुक्रगुजार करता हूँ कि मुझे मौका मिलता है कि मैं अल्लाह का नाम ले सकूं।
1: माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास टाइम हुआ तो नेक्स्ट आवर में आए और कुछ सुनाएं, तो आपकी आपकी मर्जी है कि टाइम हो आपके पास तो कोई बात नहीं, तो इट्स ओके इफ यू वांट टू डू अनदर वन फॉर मी नेक्स्ट आवर, आई विल बी रियली अप्रिशिएटेड इफ यू हैव गॉट टाइम, ठीक है ना?
0: आई विल डू माय बेस्ट,
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत ओके ओके, खुदाफिज़ सर। ये थे हमारे सईद एहसान जो बड़ी ही खूबसूरत, इनकी माशाल्लाह इन्होंने कलाम सुनाया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं कोई कॉल नहीं लेनी क्योंकि अभी यहाँ पे न्यूज़ ब्रेक आने वाली है, न्यूज़ ब्रेक के बाद हमने कॉल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमारा साथ देने, जज़ाकअल्लाह खैर सबका।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
3: From the Sky News Centre at 10, Donald Trump's weighed in on the future of Sir Keir Starmer, writing on social media that he will resign as Prime Minister. The US President's offered no evidence to back that claim up. Sir Keir's said to be taking time to reflect on political realities and challenges ahead of Andy Burnham's return to Westminster tomorrow. Labour MP Barry Gardiner thinks the Prime Minister should go.
4: I want him to be able to go with dignity. I think it should not be in any way a contest that humiliates him, although I do understand why people say it would be good to have a contest so we can be clear about exactly what Andy Burnham is offering.
3: Temperatures could reach 38 degrees in parts of the UK as a four-day extreme heat warning's been issued. The first amber alert for Monday and Tuesday covers central and southern England and parts of Wales. Three young teenagers have been arrested over the death of a 17-year-old boy in southwest London. Jamal Coombs was stabbed during an argument in Battersea in the early hours of yesterday morning. It's believed the investigation into last Friday's fatal train crash near Bedford could take several months to complete. The driver who died has been named as 60-year-old Sean Burton. England forward Ollie Watkins doesn't think there's anything wrong with Jeremy Doku wanting to leave Belgium's World Cup camp for the birth of his first child. The Manchester City wing has been criticised for his intention to return home in the second week of July, even if his country's still in the tournament. As a father himself, Watkins says he understands Doku's thinking.
5: Like he said, it only happens once, you know, your first child, welcoming them to the world is a blessing, and you don't get that opportunity. There's a lot of times where you're away from family and friends during the season, and it's a very difficult period.
3: And Spain eased to their first win of the World Cup with a 4-0 victory against Saudi Arabia. Teenager Lamine Yamal opened the scoring for the holders. That's the latest.
1: Right, welcome back, listener. You're listening to Radio 103.2 FM. और बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह खैर सब दोस्तों का जो इन्होंने हमारा साथ दे रहे हैं, जज़ाकअल्लाह खैर के आपने भी हमारा साथ दे रहे हैं। और मुझे जो ना आज ना थोड़ा सा मलाल हो रहा है, दुख हो रहा है, क्योंकि हमारे एक बहुत ही हासम हार्स कॉलर हैं माशाल्लाह, हमारे अपने हैं, हमारी फैमिली हैं माशाल्लाह, उन्होंने हमें याद किया, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके, आपके लिए हमें दोबारा फ़ोन करेंगे, तो आई विल टेक यू ऑन एयर कॉल्स, और बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह खैर। और अली अब्बास से हमारे ब्रैडफोर्ड के यॉर्कशायर के हमारे माशाल्लाह पीर मुर्शिद हैं, और जज़ाकअल्लाह खैर के आपने भी हमें याद किया है, दो दफ़ा याद किया, तीन दफ़ा याद किया माशाल्लाह, तो आपकी भी लाइन ड्रॉप हो चुकी है। तो मैंने बाद में चेक किया कि यार ये किसका नंबर है, कौन है, कहाँ से हैं, तो मुझे जो है ना पता लगा कि आप हमारे अपने हैं माशाल्लाह, मुझे फ़ोन करने, बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह खैर आपने भी, हमें अच्छा लगा। और थोड़ी देर के बाद आपसे भी हम कलाम होंगे, होंगे क्योंकि आपको पता है कि यहां पे हमने हिट ऑफ द आवर वैसे हम पेश करते हैं उन्होंने पैसे दिए हुए हैं यहां पे तो वो भी उनके लिए जरूरी है और हमने वो हिट ऑफ द आवर पेश करना है क्योंकि जो उनकी जो टग है वो हमने पेश करनी है वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि वो खर्चा करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए तो हमारा भी फर्ज है कि जो भी हमने उनके साथ वादा किया है तो वो वादे के साथ चलें ये भी बहुत जरूरी है।

0: राइट, वेलकम बैक लिसनिंग, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं नदीम मंसूर साहब, हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। इनका भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हजूर। माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर कि आपने हमें टाइम दिया, कीमती वक्त हमें दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया।
1: पंजाबी की एक नाज शरीफ है।
0: जी जी, बिस्मिल्लाह,
1: वो इंशाल्लाह
0: जी जी
1: सरकार के बारे में
0: जी
1: कुछ करूंगा
0: जी।
1: अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह,
0: माशाल्लाह।

जाना नजर चों गजारो सहाबा दी सफते जरा चाती मारो सहाबा दी सफते जरा चाती मारो आका दे मुखड़े नू

0: अला कर दे पया।
1: बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने सुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आपने मुझे कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें हमें भी, और बहुत ही अच्छा लगा मेरे भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे भाई, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं, मैं कैसे शुक्रिया अदा करें आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत
0: शुक्रिया,
1: खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। और ये थे हमारे नदीम मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी खूबसूरत आवाज़ है, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और हमारा साथ दे रहे हैं, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने क्या करना है कि यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मौजूद मेहमान हैं, माशाल्लाह हमारे बड़े ही प्यारे, बड़े ही अच्छे हमारे हैं और मुर्शिद हैं, और इनके लिए हमेशा ही दुआगो हैं, और आज भी हमने दुआएँ की हैं इनके लिए। ये हैं हमारे शकील साहब भी, माशाल्लाह बड़े ही अदब अदार से, बड़े प्यार के साथ उनको यहाँ पे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी हजूर।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी तबीयत है मेरे भाई की?
2: जी अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र शुक्र शुक्र।
2: तो तमाम सुनने वालों की तरफ से अस्सलामु अलैकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
2: ये हजरत इमाम अली, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की
1: शहादत। जी
2: वाकया करबला पर हर साहेब दिल मुसलमान आंसू बहाता है।
1: आए, आए, आए, आए, बेशक।
2: और आंसू बहाना भी चाहिए
1: चाहिए चाहिए, जरूरी
2: है। लेकिन मातमी सूरत और अलहदा चीज है।
1: जी
2: जो दर्जा इमाम आली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जन्नत में मिलना है वो शहादत के बगैर नहीं मिल सकता।
1: वाकई बेशक।
2: आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली की शहादत की पेशीन गोई की है। खुदा की राह में
1: जी
2: मौत की आरजू
1: जी
2: अल्लाह का दोस्त वलीउल्लाह होने की निशानी है।
1: अच्छी निशानी है, माशाल्लाह।
2: हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस है।
1: जी जी।
2: मैं चाहता हूँ कि खुदा की राह में कत्ल किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊं,
1: फिर जिंदा किया जाऊं,
2: फिर कत्ल कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, यहां तक कि 70 बार ऐसा।
1: 70 बार वकी जी।
2: जी हाँ जी, शहीद। सूरत आल इमरान आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं।
1: जी जी बिल्कुल।
2: जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल होते हैं उन्हें मुर्दा न समझो, वो हकीकत में जिंदा है,
1: जिंदा है,
2: अपने रब के पास रिज़्क पा रहे हैं।
1: जी
2: जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया है उस पर वो खुश और खुर्रम हैं और मुतमईन हैं।
1: मुतमईन है। जी जी माशाल्लाह।
2: जो शहीद हैं।
1: जी
2: तो जो अहले ईमान उनके पीछे दुनिया में रह गए हैं वो अभी वहां नहीं पहुंचे, उनके भी खौफ और इंज का मौका नहीं।
1: जी
2: वो अल्लाह के इनाम और उसके फजल पर खुश हैं और खुश और शादा हैं, और उनको मालूम हो चुका है कि अल्लाह मोमनों के अजर को जाया नहीं करते।
1: जी बेशक माशाल्लाह।
2: शहीद अपनी जगह पर अपनी फानी जिंदगी की बजाय अबदी जिंदगी को, उस अबदी जिंदगी के पायदार नेमतों और राहतों पर खुश हैं।
1: जी
2: बल्कि वो अपने पीछे रह जाने वाले मोमनों के हक में भी अपनी नेमतों के मुतवक्के हैं।
1: जी
2: और खुदा उन पर राजी है।
1: जी
2: हमको अगर उनसे कोई तल्लक है तो हमें उनकी खुशी से खुशी होनी चाहिए।
1: माशाल्लाह।
2: इमाम अली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसी हुकूमत के मुकाबले में निकले थे जो बाद मामलात में राय इस्लाम से हट चुके थे। तो बाकी रहा ये जो जाहिरी कामयाबी और नाकामी का सवाल, तो राय हक में जान देते हुए जान देने वाले के सामने
1: जी
2: सिरे से ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जान तक कुर्बान करके भी अपने मिशन में कामयाब ही कामयाब है।
1: जी
2: कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। शेर सुनें आप।
1: जी जी जी जी ऐसी
2: कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद
1: है।
2: इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बला के
1: हर कर्बला के बाद। हाय हाय हाय बेशक बेशक।
2: जिन लोगों ने तेरा गम
1: इख्तियार
2: कर लिया है वो सब के सब शहादत के कूचे में आराम कर चुके हैं। दोनों जहां के अंदर हक को बातल के मार के में फता इश्क एक आख है बावजूद इसके केस की सब फौज शहीद हो जाए। शहीद का दर्जा बहुत ज्यादा है ना,
1: बहुत ही ज्यादा है, हक ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। बाकी जी जी
2: उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम,
1: आहा सुभान अल्लाह,
2: कर लिया नोश जिसने शहादत अंजाम
1: अंजाम, वाह वाह,
2: जिसको धोखे से कूफा बुलाया गया, धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया,
1: आए अल्लाह,
2: जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया
1: गया,
2: जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया
1: गया,
2: हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम,
1: ओए होए होए,
2: जिसका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया,
1: ओए होए होए,
2: दोषे नबी पे बिठाया गया,
1: ओए होए,
2: जहर बाई को जिसके पिलाया गया,
1: ओए,
2: जिसके तीरों पे छलनी कराया गया,
1: वाह,
2: जिसके तीरों से छलनी कराया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम,
1: लाखों सलाम,
2: जिसने हक कर बला में अदा कर दिया, जिसने हक कर बला में अदा कर दिया, अपना नाना का वादा वफा कर दिया, उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, घर घर की सुपुर्दे खुदा
1: कर दिया,
2: उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, कर चुका वो हबीब अपनी उज्जत तमाम, लेके अल्लाह और अपने नामा का नाम, अपने नाना का नाम, कूफियों को सुनाए खुदा का नाम, और पैदा हो गया वही तिश्ना काम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों
1: सलाम, लाखों सलाम।
2: ठीक है, बड़ी मेहरबानी, टाइम
1: बहुत बहुत शुक्रिया, क्या क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं, ये आपकी महफिल है, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना खूबसूरत अंदाज से और बड़े ही सबको समझ आ गई है माशाल्लाह, और आपकी देखो ये आपके पास से इतना इल्म है, नॉलेज है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगता है जब आप प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, नॉलेज से आप शिरकत करते हैं और प्रोग्रामों में माशाल्लाह, और ऐसे ही गुफ्तगू करते हैं जो समझने वाले को समझ आती है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह पाक में शाम को खुश रखे, शाद आबाद रखे, और इसका आज़ाद दे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कुछ और कलाम सुनाना है तो सुना दें, कोई मसला नहीं, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा, ये थे हमारे मोहतरम हमारे शकील साहब जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है, बिलीव करें, और इनके पास इतना नॉलेज है, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, बड़ी इल्मी गुफ्तगू करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और हमें अच्छा लगा कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और इनकी भी जो गुफ्तगू होती है माशाल्लाह हमारे मोहतरम में है, उनके इनके भी पास बड़ा ही नॉलेज है, बड़ा ही इल्म है माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, ये हमारे मोहतरम हैं एम खान जी हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू,
3: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं आपको और जितने शायर या शायरा मुझसे पहले बात में आएंगे अल्लाह सबको आप उम्मीद आपके
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जी जी,
3: और मैं का जो काम है वो ही पढ़ना चाहता हूँ
1: जी जी,
3: उसकी चीजें पसंद थी, वो कुछ सब ऐसे थे कि शायद जिसके कोई काम आ जाए इस सबक से कोई चीज,
1: जी जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी जी ऐसे ही जी माशाल्लाह,
3: इरशाद फरमाते हैं
1: जी जी,
3: तेरी नगाह में ताबुद नहीं खुदा का वजूद,
1: वाह,
3: मेरी नगाह में ताबुद नहीं वजूद तेरा,
1: हाय हाय हाय हाय हाय, वाह,
3: वजूद क्या है,
1: वाह,
3: फकरे खुदी की नमूद,
1: वाह क्या कहने,
3: कर अपनी फिक्र के जोर है बेनमूद तेरा,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने,
3: मियां साहब का एक अपना मकाम है,
1: अपना मकाम है माशाल्लाह सुभानअल्लाह,
3: अपने लोगों के जो ऐसे काम है उनको झंझोड़ा,
1: जी जी,
3: एक ऐसा वक्त आने वाला जो मियां साहब मिसाल देते हैं, जो आदमी शहर में कोई चीज खरीदने जाए
1: जी,
3: तो जिसको खरीद ले तो दुकानदार बोलेगा पैसे दो
1: जी,
3: उसके वो मेरी तो जेब ही कटन गई है,
1: जेब ही कटन गई है,
3: तो मियां साहब फरमाते जिन्ना पैसा पल्ले नाही
1: हाय हाय,
3: खाली मुड़न बसारू,
1: वाह वाह वाह वाह वाह, देखो कितनी गहरी बात है,
3: नगद नसीब मोहम्मद बख्शा
1: वाह
3: बिन किस्मत की दारू
1: हाय हाय हाय वाह
3: आगे मौजूदा आलात आज वहाँ हो रहे हैं यूरोप में जगह से मियां साहब उन कामों का कहा कि आदमी को जो जिस काम के लिए जाए उसकी नीयत साफ वो साफ और दुरुस्त होनी चाहिए
1: जी
3: जिस काम के लिए गया अगर वो नीयत साफ और खाली मुड़ता नहीं मुड़ता
1: जी
3: अब नीयत की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं
1: जी जी
3: आहो हिम्मत मराद वाली आहो हिम्मत मर्दा वाली इो काम करें जी
1: हाय हाय हाय हाय
3: आहो हिम्मत मर्दा वाली यो कम करंदी मर्दा दे डर ठंडे नहीं
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय
3: शामद तदवीर मरंदी जिस जाई विच मतलब होवे
1: जी
3: आज पजामन खलिया
1: हाय हाय हाय हाय
3: मिलन मरादा मिलन मरादा मंगतिया नू मर्दा दे दर मिलिया बंद खलास चेता दी पद पवन जल दामन जैसा पाकिस्तान है स्विट्जरलैंड ईरान के दरमियान
1: जी जी जी जी
3: ओंदी बंद खलास चेता दी
1: जी
3: पद पवन जल दामन नसीब उदे जिस जिस फड़िया मर्दा दा सुंदा दामन
1: हाय हाय हाय वाह
3: मर्द मिले तो दर्द न छोड़े गुण दे गुण करदा
1: वाह
3: आमन लोग मोहम्मद बख्शा
1: वाह जी वाह
3: आज बनान पत्थर दा
1: आज पत्थर दा हाय हाय हाय हाय वाह
3: जदू हसन और जदू हसन मेहंदी खुद दिखा उचा दमिश्क लगा करन तलाश उसकी
1: वाह वाह वाह वाह
3: अंदर जिसके इश्के
1: वाह
3: हर चारा हर तोला करके
1: वाह
3: हिम्मत दा कर हिला
1: हाय हाय हाय हाय
3: बादशाह मजिल बादशाह मजिल पोता
1: वाह
3: मेरे नाल वसीला
1: वसीला हाय हाय हाय हाय वाह
3: एक एक दिन हाल हकीकत अपनी
1: जी
3: अव्वल आखर तोड़ी गोश गुजार शहादत दे के
1: वाह
3: की मतलब दी गल लोड़ी क्या दमिश्क ने फरमाया
1: हाय हाय हाय
3: समाज हुसन दा
1: वाह
3: है एक किस्सा पास साडे आई हुक्म दसन दा
1: हाय हाय हाय वाह वाह वाह बहुत
3: राज ऐसे होते हैं
1: जी जी जी
3: जो पे होते हैं उनको हुकूमत आ के ये आमू के साथ बात नहीं की जाती
1: जी जी
3: इस आज में रखे जो आदमी राज को राज रखता है
1: जी ओके बेशक
3: अल्लाह करीम शाया करम में
1: माशाल्लाह
3: और तू उन मर्दों को
1: जी
3: आगे बढ़ाएगा और पूछे अल्लाह हमारे इतने अच्छे नहीं अल्लाह कहेगा के क्या तुमने वो पर्दा ना रखा था पर्दे रखे कौम मिल्लत में इंसानियत में फसाद होने से तुमने बचाया
1: जी
3: उसकी वजह से राज को राज रखने में आपको ये नियमत मिली है एक बहुत बड़ा फिलासफर था
1: जी जी
3: स्टूडेंटों को तालीम दे रहा था
1: जी
3: एक बच्चा फुटबॉल खेलते खेलते जब आता
1: जी
3: वो खड़े हो जाते या चौथी या पांचवी बारी खड़े हुए
1: जी
3: तो जब जो आला स्टूडेंट है उन्होंने कहा हाजिर जी क्या गल करने हो निक्का बच्चा आया तो खड़े हो इस्तकबाल
1: करने पे हो जी जी
3: इतनी वजह दसो
1: जी
3: आपने फरमाया ये मेरे उस्ताद के साहबजादे का साहबजादा है
1: हाय हाय हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह क्या कहने
3: मुझे अदब ये सिखाता है
1: अदब
3: आपने उस्ताद के लिए नहीं उस्ताद के साहबजादे के साहबजादे के लिए भी खड़ा हो जाओ।
1: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने, बड़ी कृपा की बात की।
3: अगर मुसलमान इसको समझ जाए
1: जी,
3: हमारे आश्रम में बुराइयां सब खत्म हो जाए,
1: बुराइयां सब खत्म हो जाए। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत बात आपने की है। देखो यही होती है इल्मी गुफ्तगू माशाल्लाह। देखो हमारे माशाल्लाह मोहतरम एम खान जी, देखो वरीकी के साथ बहुत बहुत ही खूबसूरत है इल्मी गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह, और आप सब उनको पसंद भी करते हैं, हम भी पसंद करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे, और जो जो जो इल्म इनके पास है और हमारे साथ शेयर करते रहें माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। एम खान जी अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये थे हमारे मोहतरम एम खान जी, और ये उस्ताद हैं हमारे, और हमेशा मैं कहता हूँ कि देखो कि उस्तादों की कदर करनी चाहिए, उस्तादों की इल्मी गुफ्तगू करने वाले की इज्जत हौसला अफजाई करनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए भी और सब के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोजज़ मेहमान हैं, और बड़े ही खूबसूरत मेहमान हैं हमारे, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, और जितनी की मैं तारीफ़ करूं कम है। ये हैं हमारे मोहतरम चौधरी फरियाद साहब हैं, देखो ये पाकिस्तान से हमें याद करते हैं, और इस पहर में इस वक्त पाकिस्तान से फ़ोन करना और ख़र्चा करना और इस नींद छोड़ के आना, और मेरे पास इतने अल्फाज नहीं, मैं कैसे इनका मैं शुक्रिया अदा करूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जी हजूर, बिस्मिल्लाह चौधरी साहब, बिस्मिल्लाह, तुम पहले दसो कि तुम्हें शुक्रिया अदा कैसे करे किए जाए, तो तुम क्योंकि तरीका दसो कि तुम्हें शुक्रिया अदा करें कि तुमको इतना खर्चा करने और नींद छोड़ के आने हो, तो तुम बड़ी मेहरबानी है, तो शुक्रिया। अच्छा मेरे भाई कोई मसला नहीं, तुसा कोई मसला ही नहीं पापे, कि कि भरा आए हैं तो भेजी भी छोड़े दे भी छोड़े, तो क्या फर्क पैसे भरावान क्या।

0: क्योंकि आज आपको पता है कि मुहर्रम का प्रोग्राम है और बड़े ही अदब अदाब बड़ा ही प्यार के साथ हम बड़े ही इत्तेराम के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमसे कोई गलती खताई ना हो जाए। जी
1: मैं इस ख्याल से बड़ा खुश हूँ कि जनाब ये प्रोग्राम पेश करने हो बिलखसूस मुहर्रम ने हवाले नाल।
0: माशाल्लाह।
1: फिर कदे कदे मैं इधर सजा के मैं बड़ा दुख होना कि जो अस छोटे होने या पहले मैं कई दफा गल की है
0: जी जी
1: के इन दिनों ना बड़ा इतराम होना सी।
0: माशाल्लाह बड़ा इतराम बड़ा इतराम जे भी करने से इतराम करने है
1: इतराम होना सी यकीन करो।
0: जी माशाल्लाह।
1: मैं कई बार सोचना रहना मैं सोचना है
0: अच्छे लोग भी हैं माशाल्लाह और इत्राम हम ये हमने सीखा है हमारे वालदेन से सीखा है माँ बाप से सीखा है हमारे बच्चों से सीखा है और इसमें जो है इत्राम करना चाहिए क्योंकि देखो कि यहाँ पे सब देखो दुनिया में इतने बिजी हैं जो 10 दिन मुहर्रम के हैं हर रोज़ यहाँ पे बिजी बिजी मजलिस हो रही है मस्जिद में लोग जा रहे हैं आ रहे हैं यहाँ पे शिबिलें लगा रहे हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान का आपको पता है कि हमारे इलाके में डडियाल में बड़ी और बहुत बड़ी महफिल होती है वहाँ पे आपको पता है ना तो डडियाल में बड़ी एक महफिल होती है और वहाँ पे जो आजकल पता नहीं वहाँ पे जब जहर है वहाँ पे मसला मसाइल है तो शायद ना हो तो वैसे एवरी हर साल में वहाँ पे होते हैं और आपको हमारी प्यारी बहना है सोनिया जी हैं जो बर्मिंगम में वो आपको सलाम पेश करनी वो फ्लश करनी आपकी आवाज़ सुनी उन्होंने तो वो आपको याद करनी है माशाल्लाह बहुत प्यारी बहना है हमारी और हमेशा ही आपके लिए दुआ गो हैं हमारे लिए दुआएं करती हैं तो देखो आपकी आवाज़ सुनिए तो वो माशाल्लाह हमारी बहना आ गई है माशाल्लाह। जी
1: उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया वैसे उन्होंने ऐसे भी कहना चाहते हैं कि जदों से तुम साने के बाकी चाहे हो तो असि कभी सलाम नहीं मिस किया ना
0: माशाल्लाह सही गल
1: है ना उन्होंने लिस्ट च लिखा पे
0: माशाल्लाह सोनिया जी जी माशाल्लाह
1: बहुत बहुत शुक्रिया जनाब
0: माशाल्लाह जी जी माशाल्लाह।
1: असा एक दफा कोई मैं एक मेरे को शेयर भी है कि एक दफा सारे ना कोई सलाम दुआ करे एक दफा
0: जी जी
1: असा ना ख्याल रखे असा फिर असा सारी जिंदगी ख्याल रखे
0: हाय हाय हाय हाय ये अच्छे बंदे ने होनी निशानी होनी है
1: ये काम ना कराना
0: जी
1: फिर असा बेवफा लोगों ने ग्रुप में शामिल हो जाने जिन्हें लोग किसी ने कदर नहीं करने इज्जत नहीं करनी
0: कदर करनी चाहिए कदर करनी चाहिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए बड़ी जरूरी है बड़ी जरूरी है
1: यकीन करो के मैं उन्होंने किस तरह शुक्रिया अदा करा
0: देखो देखो के मेरे भाई के कहने ताड़ी ने दो हाथ नहीं बजनी के हल है और वही बात हो रही है कि माशाल्लाह की देखो कि ये इस प्रोग्राम में माशाल्लाह हमेशा ही और आज भी मैं कह रहा हूँ कि वैसे भी हम मुहर्रम का प्रोग्राम करें एक फैमिली शो है माशाल्लाह जिसमें आप शिरकत करते हैं और सब एक दूसरे के साथ इतना अच्छा तावन करते हैं माशाल्लाह और वही खूबसूरती है इस प्रोग्राम की और आप सबकी माशाल्लाह जाकल्ला खैर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी
1: चलो मैं सलाम जो करा फिर जनाब शायरी शुरू करता
0: हूँ। जी जी जी
1: बिस्मिल्लाह। पूरे जितने भी तुसाने मैनेजमेंट है या तुसाने प्रोग्राम में जितने मेहमान है ने ना
0: जी जी जी
1: सारे की मेरा बहुत बहुत सलाम है स्पेशल और
0: जी जी
1: जनाब मुहर्रम ने मुबारकबाद है और ये दिन जड़े ने ना अगर बंदे ने दिल की सही है
0: जी
1: और मैं मेरी शायरी सुन सो ना
0: जी जी
1: तो तुसा उम्मीद है कि मौजूद दसो मेरी सारी शायरी
0: क्यों नहीं मेरे भाई की मुहर्रम का हो और शायरी हो
1: बंदे ना फरियाद कहन वो बंदा नहीं है कि जरा जिसने दिल च आज अपनी झूठी शान और शौकत
0: अपने
1: दिल नाल मोहब्बत नाल काम करने खलूस नाल असा ये खलूस इस खलूस ने बदले असा की उधरों बहु खलूस ला
0: बनावा
1: कोई कोशिश होनी जी असा निके होने ये ना
0: देखो ये देखो ना देखो कितनी खूबसूरती है देखो आंख नींद छोड़ के आना इस वक्त पाकिस्तान से फोन करना बड़ी बात बादरी बात है बड़ी बात है मेरे भाई अल्लाह ताला को इज्जत दे आपको
1: जी
0: जी
1: ने अमा जी ने गजाला बाजी ने अमे कुलसूम जी ने

0: सर जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू
1: सर जी। क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं मेरे भाई, ये आपका प्यार है, माशाल्लाह आप आए, माशाल्लाह इतना खूबसूरत कलाम आपने सुनाया, और शाह जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका कि उन्होंने आपको रिक्वेस्ट की है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली यंग मैन, ठीक है ना, अपना एहतियात करें, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह वेंसडे आपकी मुलाकात होगी अब आके दोस्त में, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे। ये थे हमारे मोहतरम, हमारे छोटे छोटे शहजादे हैं हमारे, माशाल्लाह हमारे लाडले हैं भाई शुक्रान, माशाल्लाह, और अल्लाह ताला हमेशा हमको खुश रखे, शादाबाद रखे, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज, बड़ा ही प्यारा अंदाज, और क्या कहने जी, और हर अल्फाज में ओए होए होए, क्या कहने क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और यहाँ भी हमने क्या करने का, हमारा साथ दे रहे अनीस दाऊद साहब, आपका शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने अजान भी पेश करनी है, वो भी ईशा की अजान पेश करनी है यूके में, ब्रैडफोर्ड में, और यहाँ पे, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त बाबा अजीज़ हैं, कि ये आप दोस्तों के लिए हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे मदद किया है, और आप दोस्तों की वजह से माशाल्लाह, क्योंकि ये प्रोग्राम है, और बहुत बहुत शुक्रिया, महरम का प्रोग्राम हमने यहाँ पर नशर किया है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं खुद एक गुनहगार हूँ, एक मानने वाला हूँ, पंच पाक का मैं नौकर हूँ, और या अली मदद, पीर मौला अली मदद, हमेशा मैं कहता हूँ, आज से नहीं, और हमने ये सीखा है, जो भी पाया है, जो भी हमने पाया है, उनसे बदौलत से पाया है, उनकी वजह से पाया है, और इसलिए हमारे घर में रौनक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और वही बात हो रही है, किसको हम सुनाएं, किसको हम बताएं, और वही बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम टाइम हो चुका है ईशा की अजान ब्रैडफोर्ड में, मकामी टाइम टेबल का देख के सुन के अपने नमाज अदा करेंगे, मेरे लिए, मेरी फैमिली की अपनी दुआ करनी है, मेरे पूरे मुस्लिम के लिए दुआ करनी है, मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ करनी है। कीप इट लॉक्ड टू सनराइज रेडियो।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692378.
3: Official media partner, Sunrise Radio.
4: Sunrise and Music. Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio, 100.6 FM, 103.2 FM across the West Yorkshire, DAB Plus, Bradford, Keighley, Ilkley, Skipton, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington, Milton Keynes. Mein hamara program suna ja raha hai, bahut shukriya sab doston ka. Very, very soon is going to be launching on Derby Midland mein, aur bahut shukriya aap sab ka bhi jo hamara saath dene wale hain aur de chuke hain, bahut shukriya aap ka bhi. Or you can also download the Sun Radio app on Apple Play Store, on Google Play Store, and that's what it's all about. And not forgetting online, it's www.sunriseradio.fm, www.sunrise.radio. That's what it's all about. And not forgetting, it's very, very special announcement here as well. Are you streaming on TikTok live or thinking about getting started? Join the Sunrise Creative Network at UK TikTok. Live agency helping the creator grow the audience and the brand and get the promoted on Sunrise Radio. To find out more, apply, visit Sunrise Creative Network page at www.sunrise.radio. That is www.sunrise.radio. और दैट इज सो क्लियर, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का भी। और आज आपको पता है कि यहाँ पे हमने पेश किया है महरम का स्पेशल प्रोग्राम, और महरम के हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया जिन दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया, उज़्र अफ़ज़ाई की है और उन्होंने कलाम सुना है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। इसका आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इंशाल्लाह जल्द आपके साथ मुलाकात होगी, इंशाल्लाह जल्द वेनसडे की शाम और आपके नाम, और वही माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और थैंक यू वेरी मच, एंड टेल योर फैमिली, टेल योर फ्रेंड, टेल योर कॉलिग्स दैट आई हैव डन महरम का प्रोग्राम कि मैंने किया है और माशाल्लाह, और आपने मेरा साथ भी दिया है। और इत्राम जो ना बहुत ज़रूरी है, बिलीव करें कि इट्स वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। और ये जो दिन है महरम के हैं, और नो फॉरगेटिंग नेक्स्ट वीक एज वेल इज गोना बी द 9th and 10th महरम एज वेल, उसमें भी, क्योंकि ये जो दिन जा रहे हैं, ये भी दिन जा रहे हैं जो आगे दिन आने वाले हैं, उसमें भी इत्राम करें। एंड यू नो बी वेरी वेरी नाइस फॉर पीपल एंड एवरीबॉडी एल्स एज वेल, एंड बी यू नो हम्बल एंड टेल एवरीबॉडी व्हाट इज इस्लाम इज ऑल अबाउट, व्हाट इज महरम इज ऑल अबाउट, एंड दैट वीज विल बी वेरी ग्रेटफुल टू एवरी वन ऑफ यू आउट देयर। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज रेडियो स्टेशन फॉर एवरीबॉडी, डजंट मैटर हूएवर यू आर, जहाँ पे जो भी यहाँ पे होता है हम प्रोग्राम करते हैं, सबके लिए प्रोग्राम करते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि सब के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम सबके साथ आती हैं यहाँ पे। और ये कभी नहीं सोचना कि आप सब अकेले हैं, हम आपके साथ ही, अब हम आपके साथ हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे टाइम दे रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई सी यू ऑन वेनसडे इवनिंग बिटवीन आवर्स 8 and 11, एंड आई विल बी हेडिंग फ्रॉम नाउ टू ऑब्वियसली व्हेन आई फिनिश माय प्रोग्राम आई हैव टू हेड ऑफ टू बर्मिंघम, गोइंग बैक टू बर्मिंघम, और ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और ये मैंने आज प्रोग्राम किया है, खासूसन प्रोग्राम किया है आप दोस्तों की वजह से और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इंशाल्लाह जल्द आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी हवा के दोष में ऑन वेडनेसडे इवनिंग बिटवीन आवर्स 8-11 वेयर वी गोना बी हैविंग टू वेरी स्पेशल प्रोग्राम फॉर यू ऑन टेल योर फैमिली टेल योर फ्रेंड टेल योर कॉलीग टू कॉल इन एज वेल और ये भी बहुत ज़रूरी होगा और मेरी तरफ से मेरे से कोई गलती खताई हुई मुझे भी माफ़ करना कि मैं भी एक इंसान हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच और आपका भी शुक्रिया अदा करना जो मुझे अभी फ़ोन कर रहे हैं आई कांट टेक एनी कॉल्स नाउ क्योंकि घर जाने की तैयारी हो चुकी है और अभी न्यूज़ ब्रेक भी आ रही है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अल्लाह हाफिज़ आन शब खैर
5: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
6: The Sky News Centre at 11. Pressure's mounting on Sir Keir Starmer as the US president's weighed in on his future. With no evidence given, Donald Trump's posted on social media that the British leader will resign as prime minister. He also claims Mr. Starmer failed badly on immigration and energy. Despite the speculation, Downing Street's been batting away suggestions of a resignation. Labour MP Perrin Moon says he'll be supporting the prime minister.
7: We've deliberately left Keir Starmer alone this weekend. He wanted to spend time with his family and think about what he does next. I think that's the right thing to do. He's under a lot of pressure, so I'm sure we'll hear from him early next week.
6: A new weather warning for extreme heat's been issued by the Met Office. UK temperatures could reach as high as 38 degrees this week in some parts. The train driver who died in Friday's rail crash near Bedford's been named as 60-year-old Sean Burton. His family says they're devastated. 100 people were injured in the collision, with 9 still critical in hospital. Benjamin Netanyahu says if Israel hadn't acted, Iran would now have an atomic bomb. The Israeli Prime Minister's told an audience in Jerusalem his country removed an existential danger.
8: Together with our American friends, we carried out the largest airstrike in our history. We destroyed Iran's nuclear infrastructure. We knocked out 20 of their top nuclear scientists. And when you take out the scientists, it's very hard to make a nuclear weapon.
6: The comments were hours after the US Vice President J.D. Vance held talks with Iranian officials in Switzerland. In sports, Spain eased to their first win of the World Cup with a 4-0 victory against Saudi Arabia. Ten-man Belgium made it back-to-back draws to start the tournament after being held 0-0 by Iran. And England cricket captain Ben Stokes will return to lead the hosts in the deciding third test at Trent Bridge. He and teammate Gus Atkinson have been given written warnings for breaking curfew rules at a London nightclub earlier this month. And that's the latest.